सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ हो रही है।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के लिए तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले

0: नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। वंदना सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का श्रोताओं कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और कहा भी जाता है ना कि ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। तो श्रोताओं, आज की इस पावन बेला पर ईश्वर की भक्ति के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और श्रोताओं, सभी देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है। किसी भी मंगल कार्य में इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है, इसलिए क्योंकि इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। ये सभी की परेशानियों को दूर करते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणपति जी के इस प्यारे से भजन के साथ। आवाज है अनूप चलोटा की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की

आवाज में ये कृष्ण भजन। न जाने किस रूप में आकर मेरा काम कर जाता है, न जाने किस रूप में आकर मेरा काम कर जाता है, जो भी मांगूं मैं कान्हा से चुपके से मुझे दे जाता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं भाई समुद सिंह रागी के स्वर में ये शब्द। श्रोताओं, गुरु वो है जो स्वयं चलकर समाज को रोशनी बांटता है। गुरु की शरण में जो भी आता है वो भवसागर से पार हो जाता है। तो आइए कार्यक्रम में गुरु की महिमा का गुणगान करें।

मदीने की फ़ज़ा में एक अजब सा नूर रहता है, वहाँ जाने से हर एक रंजोगम भी दूर रहता है। नबी के दर का जो अदना सा मंगता बन गया एक दिन, नबी के दर का जो अदना सा मंगता बन गया एक दिन, ज़माने भर में फिर उसका बहुत मशहूर रुतबा रहता है। तो श्रोताओं, नबी की दीवानगी और उनके इश्क की रसूल पर आधारित ये नात आपको सुनवा रहे हैं अजीज नजा की आवाज़ में।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का समापन करते हैं जगजीत सिंह और साथियों के गाए राधा माधव भजन से।

0: श्रोताओं, इसी भजन के साथ वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान का आज का ये प्रसंग। गायक कलाकार हैं ए हरिहरन, संगीत सतीश भाटिया का।
1: एपिसोड नंबर 232 232।

चित्रकूट की सभा में गुरुजन, मातृत्रय तथा अयोध्यावासियों की उपस्थिति में भरत श्री राम के सम्मुख अपने अंतरतम के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की प्रतीति है कि अपने हितैषियों, बुद्धिमान जन तथा स्वामी के सामने अधिक नहीं बोलना चाहिए। श्री राम के प्रति भरत का स्नेह और समर्पण देखकर उपस्थित समुदाय प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ जाता है। स्वयं श्री रघुनाथ जी सम्मान भरे वचन के साथ उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठा लेते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का ये प्रसंग। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए चिंतन।
1: निंदा करना मानवीय स्वभाव का एक बड़ा अवगुण है। दूसरों में दोष निकालकर खुद को श्रेष्ठ बताना कुछ लोगों का स्वभाव होता है। ऐसे लोग हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, पर निंदा में प्रारंभ में काफी आनंद मिलता है, किंतु अंततः मन में अशांत

0: शक्ति व्याप्त हो जाती है और व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को दुखों से भर लेता है। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कुछ लोग समय बिताने के लिए निंदा करते हैं तो कुछ लोग स्वयं को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए निंदा को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। निंदकों को संतुष्ट करना संभव नहीं है, अतः समझदार इंसान को उथले लोगों द्वारा की गई टिप्पणी से आहत न होकर अपना कार्य करते रहना चाहिए। अच्छा होगा कि प्रतिवाद में समय नष्ट न करके हम अपने मनोबल को और भी अधिक दृढ़ करके जीवन में प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। मित्रों, संसार में प्रत्येक जीव की रचना ईश्वर ने किसी उद्देश्य से ही की है, अतः किसी को भी ईश्वर की किसी रचना का मखौल उड़ाने का अधिकार नहीं है। किसी की निंदा करना परमात्मा की निंदा करने जैसा ही है। इससे कुछ समय के लिए व्यक्ति अपने अहंकार को सहला तो सकता है, किंतु किसी की काबिलियत, ईमानदारी और सच्चाई को खत्म नहीं कर सकता। वास्तव में व्यक्ति के सद्गुण सूर्य की तरह प्रखर है, अतः निंदा के काले बादल उसकी प्रखरता को क्षीण नहीं कर सकते हैं। निंदा करना और निंदा सुनना और फिर उनका चिंतन करना हानिकारक होता है। जो स्वयं दोषी है उसे दूसरों के दोष देखने का अधिकार नहीं है, और जो निर्दोष है वो कभी किसी का दोष नहीं देखते हैं। और हमें जीवन में स्वयं के विवेक से निर्णय लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की बात पर ध्यान देकर विचलित नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारी गति हवा के झोंके से उड़ने वाले सूखे पत्ते के समान हो सकती है। निंदा का या बुरे शब्दों का नकारात्मक प्रभाव होता है। इससे आपसी विश्वास में कमी बढ़ती है और फिर धीरे धीरे आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। अतः हमें किसी भी व्यक्ति की निंदा करने से बचना चाहिए। संत कबीर दास जी ने इस विषय में ठीक ही कहा है, तिनका कबहू न नींदिए पांव तले जो होए, कभू उड़ी आंखों पड़े पीर घनेरी होए। अर्थात दूसरों के दोष देखकर भी निंदा से बचो, तिनके तक की भी निंदा न करें, क्योंकि पता नहीं वो कब आंखों में गिरकर कष्ट देने लगे। अतः हमें सद्वार्ता करनी चाहिए, साधु प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहना चाहिए, निंदा से बचना चाहिए। यह हमारे शारीरिक और आत्मिक उत्थान दोनों के लिए लाभप्रद होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए काव्यधारा। इसके अंतर्गत काव्य पाठ प्रस्तुत कर रही हैं निशा अग्रवाल।

और आइए अब शहीदों को नमन करते हैं। आजादी के महासमर में हंस हंस शीश चढ़ाए थे, उनके ही दम पर तब हमने केसरिया फहराए थे। आओ नमन करें सब मिलकर उन बलिदानी वीरों को, जिनकी आंखों ने सतरंगी कितने स्वप्न सजाए थे। नन्ही बिटिया की किलकारी, माँ की ममता के वो धारे, जिन्हें रोक ना पाए थे हरी हरी चुड़ियों की खन खन, मीठी सी पायल की छम छम, साथ चलेंगे सात जन्म तक ऐसे स्वप्न सजाए थे। सब कुछ पीछे छूट गया, बस अपने फर्ज निभाए थे, आजादी के महासमर में हंस हंस शीश चढ़ाए थे। जब तक प्राण रहे थे तन में, शीश न झुकने पाए थे, सांसों की अंतिम बेला तक वंदे मातरम गाए थे। नमन करें हम उन वीरों को, जो नया सवेरा लाए थे, उनके ही दम पर भारत ने सूरज नए उगाए थे। ये न्यारा है देश हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा, इसके ही खातिर लालों ने अपने प्राण लुटाए थे, आजादी के महासमर में हंस हंस शीश चढ़ाए थे। शत शत नमन तुम्हें ए वीरों, शत शत तुम्हें प्रणाम है।

ही है ये आजादी, तुमसे हिंदुस्तान है, तुमसे ही है ये आजादी, तुमसे हिंदुस्तान है। और राखी का पर्व नजदीक है, एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। भाई

0: अभी आप सुन रहे थे काव्यधारा में निशा अग्रवाल का काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। 6:55 होने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य प्रसंगे कृत्स्नेहि देशे हर घर तिरंगा इत्यभियानं गतिं भजते। यदि अगस्त मासस्य 17 दिनांकं यावत् अनुवर्तयिष्यते। अस्मिन्नेव वर्षे वंदे मातरम गीतस्य सार्धैक शततमी जयंती पूर्तिः अपि उत्साहं द्विगुणीकरोति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः विकसित भारतस्य संकल्पेन सह गृहेषु ध्वजम् उत्तोलयितुं सादरं प्रोक्तम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक संशोधन विधेयकं 26 इत्यस्मै स्वकीयाम् अनुमतिं दत्तवती। अनेन संशोधनेन राष्ट्रगीतं वंदे मातरम् इत्येतत् राष्ट्रगानेन जनगणमन इत्यनेन सह समानं वैधानिक संरक्षणं लभते। अधुना अस्य गायने बाधोत्पादनं अथवा सभायाः विघटनं

0: विधिकदृष्ट्या दण्डनीयः अपराधो भविष्यति। संसदाधिकरण परिष्कार विधेयकं 26/26 पारितम्। राज्यसभया विधेयकस्यानुमोदनमपि अंगीकृतम्, यत् लोकसभया पूर्वमेव पारितम् आसीत्। विधिन्याय राज्यमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः एतद् विधेयकम् उपस्थापितवान्। अस्य विधेयकस्य मुख्यम् उद्देश्यं तावत् विविधाधिकरणानाम् अध्यक्षानां सदस्यानां च अर्हतासु नियुक्तौ सेवानियमेषु तथा अधिकरणानां प्रशासने कार्यप्रणाल्यां च दक्षतां, स्वायत्ततां, पारदर्शितां, एकरूपतां च आनेतुमस्ति। चर्चायाः प्रत्युत्तरे सति मेघवालेन प्रोदीरितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे सर्वकारेण 25/2000 वर्षे अधिकरणानां युक्तीकरणस्य प्रक्रिया समारब्धा। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्मिन् नूतन विधेयके राष्ट्रिय अधिकरण आयोगस्य स्थापनायाः प्रावधानम् अस्ति, यस्य अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः उत उच्च न्यायालयस्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशः करिष्यति। विधेयक पारणात् परं सदने विशेष उल्लेखानां विषयेभ्यः समयः कल्पितः, यस्मिन् विधिक सदस्यैः लोक महत्वस्य विषयाः उत्थापिताः। कार्यसमाप्त्यनन्तरं पीठासीनाधिकारिण सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 यावत् स्थगितम्। लोकसभया केरल नाम परिवर्तनं विधेयकं पारितम्। अस्मिन् विधेयके संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां राज्यस्य केरल इति नाम परिवर्त्य केरलम् इति कर्तुं प्रावधानम् अस्ति। विधेयकस्यास्य विषये भाषमाणः गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः अवोचत् यत् गतवर्षे केरल विधानसभया राज्यस्य नाम केरलमिति कर्तुं केन्द्रसर्वकाराय अनुरोधप्रस्तावः पारितः आसीत्। तेनोदीरितं यत् मलयालम् भाषायां राज्यस्य नाम केरलमिति अस्ति, परं संविधाने एतत् केरल इति लिखितमासीत्। राज्यसभया राष्ट्रिय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयकमपि पारितम्। सहकारिता राज्यमन्त्री मुरलीधर मोहिल इत्यनेन उपस्थापितं विधेयकं निगमस्य गतिविधीन् औद्योगिकपण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमतिं ददाति। उभे अपि विधेयके नीट विप्रतिपत्तिमधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलमध्ये चर्चां विनैव पारिते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व राजस्थान ओडिशा प्रभृति प्रदेशेषु अतिवृष्टेः पूर्वाभासः प्रकटीकृतः। पंजाब उत्तराखंड गुजरात क्षेत्रेषु अपि अतिवृष्टिः संभाव्यते। आंध्र प्रदेश झारखंड कर्नाटक प्रदेशेषु विद्युतपात झंझावाताभ्यां सह अतिवृष्टि परा संचेतना च प्रसारिता। राष्ट्रीय राजधान्यां तावत् देहल्यां सायंकाले मेघाच्छादनेन सह मंद वृष्टिः संभाव्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा को तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने

0: ने सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देशभर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देशभर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। नागरिकों से अपील करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि देश के हर त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन को बेहतर बनाने का संदेश छिपा होता है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई भी बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है। प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। इसके अंतर्गत जानकारी का विषय है मानव शरीर में कैल्शियम का महत्व।

शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी व उपयोगी होता है और कैल्शियम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। औसतन 1200 ग्राम कैल्शियम हमारे शरीर में पाया जाता है। इसमें से 11% कैल्शियम अस्थि संस्थान में प्रमुख रूप से कैल्शियम फास्फेट नामक लवण के रूप में और शेष 1% नरम ऊतकों व रक्त में विद्यमान रहता है। कैल्शियम का मुख्य कार्य दांतों व अस्थियों का निर्माण करना है। यह फास्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों को बढ़ाने बनाने और ठोस व मजबूत करने में काम आता है। और भाई

0: दांतों की रचना में भी यह ऐसी ही भूमिका निभाता है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर ये कैल्शियम मांसपेशियों के संकुचन प्रसरण करने में सहायक होता है, जिससे हमारे शरीर के हाथ, पैर, गर्दन आदि अंगों में हरकत होती है। कैल्शियम शरीर में विटामिन B12 के शोषण में सहायक होता है। और भी कई प्रकार की प्रक्रियाओं में कैल्शियम शरीर के लिए सहायक होता है। कैल्शियम को सभी प्रकार के दूध, ताजा दूध, दूध पाउडर या मलाई रहित दूध और दूध से बने पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। 1 कप दूध में 15 स्लाइस ब्रेड, 1.5 कप आइसक्रीम, 10 संतरे और 10 अंडों में पाए जाने वाले कैल्शियम की मात्रा के बराबर कैल्शियम पाया जाता है। दूध आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और पचने में भी आसान रहता है। और इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि दूध के बिना कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करना मुश्किल है। कैल्शियम दूध के अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों और तिल में भी पाया जाता है। तिल में कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम की कुछ मात्रा दालों, सूखे मेवों, खजूर आदि में भी पाई जाती है। कैल्शियम की कमी होने से अस्थियों और दांतों के निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। जब शरीर में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस व विटामिन डी की भी कमी हो जाती है तो शरीर में इसकी कमी ज्यादा देखी जाती है। बूढ़ों और बड़ों में आहार की ओर उचित ध्यान न दिए जाने पर शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। अस्थियों में कैल्शियम के जमने की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती, बल्कि हड्डियों में जो कैल्शियम इकट्ठा होता है वह भी निकलने लगता है और इसका परिणाम ये होता है कि हड्डियां जल्दी ही टूटने लगती हैं। खासतौर से टांगों की हड्डियों और मेरुदंड पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। इसके अन्य लक्षणों में सामान्य कमजोरी के साथ साथ पैरों की हड्डियों, पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द, विशेष रूप से चलने फिरने और सीढ़ियां चढ़ने के वक्त देख सकते हैं। सामान्यतः हड्डियों में कैल्शियम के जमा होने पर उनकी ताकत व आकार बना रहता है और जब इसकी कमी की गंभीर स्थिति आ जाती है तो हड्डियों में छेद होने लगते हैं। गर्भकाल में यदि कैल्शियम की कमी हो तो गर्भवती महिला को हड्डियों में दर्द, चलने फिरने और सीढ़ियां चढ़ने में तो कठिनाई होती ही है, साथ ही गंभीर स्थितियों में श्रोणि मेखला संकुचित हो जाती है, जिससे शिशु का जन्म कठिनाई से होता है और कभी कभी तो गर्भपात भी हो सकता है। बच्चों में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, टांगे कमजोर हो जाती हैं, छाती की हड्डियां खोखली होकर सिकुड़ जाती हैं और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से और भी कई रूपों में बच्चों पर कैल्शियम की कमी का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने खान पान का उचित ध्यान रखना चाहिए और शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं आने देनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी, विषय था मानव शरीर में कैल्शियम का महत्व। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। जानकारी का विषय है लौकी और सीताफल की खेती।
2: किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए आज हम चर्चा करेंगे लौकी की खेती के संदर्भ में। किसान भाइयों, देखिए हम वर्षों से खेती कर रहे हैं और वर्षों तक हमें करनी है, तो हमें ये चाहिए कि हम विभिन्न तरह की फसलें उगाएं। हमारे ज़्यादातर किसान भाई भाई गन्ना, गेहूँ और धान की फसल उगाते हैं, लेकिन भैया देखिए कुछ हमारे जो जागरूक किसान भाई हैं वो दलहन की फसल उगाते हैं और जो अच्छे जागरूक किसान भाई हैं या ज़्यादा परिश्रमी किसान भाई हैं उनकी हम अगर बात करें तो भैया वो सब्जी की खेती करके अच्छा उत्पादन लेते हैं। तो किसान भाइयों, देखिए सब्जी की खेती कई मायनों में बहुत महत्व रखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भाई सब्जी की एक तो बिक्री बहुत अच्छी होती है क्योंकि प्रतिदिन उपयोग में आने वाली ये चीज़ है। और सब्जियों में भी अगर हम इस तरह की सब्जी को उगा लें जिसे सभी तरह के लोग खाते हैं तो उससे आमदनी की और उम्मीद बढ़ जाती है। तो भैया देखिए लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसे हमारे किसान भाई और अन्य जो साथी हैं बड़े चाव से खाते हैं। बीमार हो या सामान्य लोग हों, सभी के लिए लौकी

0: बहुत फायदेमंद है। और यह देखिए कई प्रकार के इसके अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। लौकी का जूस बहुत फायदेमंद होता है और कई जगह काम आता है। और लौकी की अगर सब्जी की भी अगर हम बात करें तो भैया कई तरह से इसकी सब्जी बनाई जाती है। इसका रायता बनाया जाता है, इसके कोफ्ते बनाए जाते हैं, अन्य तरीकों से इसका उपयोग किया जाता है, इसको घिस के, और भैया इसकी खिचड़ी भी बना के हमारे किसान भाई खाते हैं। तो कुल मिलाकर लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो भाई देखिए लौकी है और एक है सीताफल। सीताफल को देखिए पहले बुजुर्ग ये कहा करते थे कि भाई अगर हम पूरी खा रहे हैं तो उसके साथ अगर हम सीताफल या कांशी फल की सब्जी खा लें तो भैया इससे जो है भोजन अच्छी तरह से पच जाता है, पाचन शक्ति मजबूत होता है। इसीलिए पुराने समय में जब किसी के यहाँ विशेष त्यौहार या उत्सव होता था तो कांशी फल निश्चित रूप से बनाया जाता था। इसकी एक विशेषता और है कि भाई लौकी हो चाहे सीताफल हो, इसकी एक बेल आप लगा लीजिए और भैया बहुत सारे जो है फल आपको प्राप्त हो जाएंगे या सब्जी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब बात ये आती है कि कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनको हम उगा सकते हैं। तो भैया हम पहले लौकी की बात करते हैं। लौकी की किस्में में भैया कांशी है, गंगा है, अर्का है, बहार है और तृष्णा इसकी एक अच्छी किस्म है। पूसा संतुष्ट एक बहुत अच्छी किस्म है और भाई नरेंद्र बहुत अच्छी किस्म है। रश्मि नाम की भी एक किस्म है जिनको हमारे किसान भाई काफ़ी लगाते हैं। तो किसान भाई ये देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये समय समय पर 3 बार लगाई जाती है। तो इस समय की अगर हम बात करें तो भाई अभी इस समय चल रहा है यानी कि 15 अगस्त तक आप लगा सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि देखिए लौकी में जब दशहरा आती है तो विशेष रूप से लौकी का रायता बनाया जाता है और ये माना जाता है कि उस समय से लौकी का खाना और भाई दही का खाना दोनों का तालमेल अच्छा होता है। तो हमारे किसान भाई भाई अच्छा उत्पादन करके इससे लाभ कमा सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ सीताफल की। देखिए सीताफल एक ऐसी सब्जी है जिसको एक बार लगा दीजिए तो बहुत आमदनी इससे मिलती है भाई। एक तो इसकी वजन के आधार पर बिक्री होती है और काफ़ी वजन और बहुत बड़ा बड़ा होता है। दूसरी एक बात यह है सीताफल अगर पक जाए तो इसे बहुत समय के लिए आप सुरक्षित भी रख सकते हैं, वरना देखिए सब्जी कोई भी हो उसका भंडारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी किसान भाइयों को चाहिए कि वो सीताफल की या काशीफल की खेती करें। और भाई आज़ाद पम्पकिन इसकी एक ऐसी किस्म है जिसको लगा के किसान भाई बहुत अधिक आमदनी ले सकते हैं। बात यह आती है कि भाई किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी और कैसी जलवायु की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए आप किसान भाई जानते ही हैं कि एक थावला बना दीजिएगा, उसमें आप पोषक तत्व के गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दीजिएगा, थोड़ा सा DAP डाल दीजिएगा और समय समय पर सिंचाई करते रहिएगा। और विशेष बात यह है कि बेल को फैलाने की जगह आपके पास होनी चाहिए, जो भी आपकी सब्जी है उसको लटकाने की एक जगह होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप ध्यान करेंगे तो आप सीताफल और लौकी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आज तो हम अपनी खेती की बातें यहीं संपन्न करते हैं, कल आपको अन्य विषयों की जानकारी अवश्य देंगे। किसान भाइयों राम राम।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। जानकारी का विषय था लौकी और सीताफल की खेती। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आज रात्रि 8 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे संसद समीक्षा। रात्रि 9:30 पर सुनेंगे चर्चा का विषय है और रात्रि 10 बजे सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये तीनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। सवेरे 9:15 पर जिले की हलचल और शाम 7:32 पर कानून की बात लखनऊ केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। सुगम संगीत में श्रोताओं आनंद लीजिएगा कुलवंत सिंह के गाए शब्द का आज शाम 7:45 पर। और विविधा के अंतर्गत डॉक्टर नेहा चौहान की वार्ता का विषय रहेगा आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियां। समय रहेगा शाम 6:45 पर। कृषि जगत कार्यक्रम हमारे किसान भाई सुनेंगे शाम 6:05

5 मिनट पर। इसमें आज आप सुनेंगे दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या व समाधान विषय पर भेंटवार्ता। इस विषय पर डॉक्टर शिवशंकर कटियार से हिमांशु रंजन की बातचीत आप सुनेंगे। साथ ही पशुओं का चारा प्रबंधन और EKCC विषय पर जानकारी दी जाएगी। युवाणी कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 5:15 पर। क्रम रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट और मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, नई सोच पुराना आसमान, विश्व युवा दिवस पर। इसमें विशेष चर्चा सुनवाई जाएगी। प्रतिभागी होंगे उज्मा सलोनी, शुमाइला रुमान, प्रमोद सिंह, मोनिका श्रेया, कुमुद सिंघल, मीनाक्षी कुशलेंद्र और विश्वास द्विवेदी। व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। तो ये थी जानकारी कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:18 होने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने पारित किया अधिकरण सुधार विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा। विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। और ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। इससे पहले विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन

0: राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस बीच प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के सभी मदरसे भी भाग लेंगे।
3: इस अभियान से उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे वो भी जुड़ेंगे। हमने मदरसा के तमाम छात्रों से भी अपील की है, अपने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया है, डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है, उत्तर प्रदेश के हर मदरसे इस अभियान से जुड़े, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस अभियान को हम ले जाएं और हर व्यक्ति देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हो। इस अभियान का जो मकसद है उसको हम धरातल पर ले जाएंगे।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया।
4: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की नियुक्ति के लिए कल से साक्षात्कार शुरू हो गया। इस पद के लिए करीब 5,200 आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद 18 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण के लिए चुना गया है।
5: राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए राम मंदिर परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर में 9 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। बाकी बचे 9 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3 सदस्यीय चयन समिति इंटरव्यू के बाद चयनित व्यक्ति की जानकारी ट्रस्ट को सौंपेगी। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल इस एक्सपो का अनौपचारिक शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 684 करोड़ रुपए की लागत वाली 201 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच से खलीलाबाद तक बन रही रेलवे लाइन संत कबीर नगर के विकास का आधार बनेगी।
6: जो सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खल्लाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन

0: और बलरामपुर आदि स्थानों पर जाने वालों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी।
1: अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग चार लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं।
0: सावन माह की शिवरात्रि के पावन अवसर पर कल प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। बागपत के ऐतिहासिक श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर, वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम और हापुड़ के श्री गढ़मुक्तेश्वर मंदिर सहित प्रदेश के कई प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दर्शन पूजन कर जलाभिषेक किया।
2: जनपद हापुड़ में सावन मास की महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे वातावरण शिवमय बना रहा। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणपुर के कल्याणेश्वर महादेव, प्राचीन शिव मंदिर सबली, सरावा के झारखंडी महादेव के अलावा जनपद के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र, आग, धतूरा, चंदन आदि से भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल से जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने पारित किया अधिकरण सुधार विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा। विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। और ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ज्ञान मनोरंजन और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सुहानी हो जाए, हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए कि हर गम की बात पुरानी हो जाए। हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए कि गम की हर बात पुरानी हो जाए। दे जाए इतनी खुशियां ये नया दिन, दे जाए इतनी खुशियां ये नया दिन कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। जी हाँ श्रोताओं, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे श्रोता हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं आपके मनपसंद कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपकी साथी रिमझिम बलूनी, और कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं जानकारियों के साथ। तो श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। ये दिन हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। श्रोताओं, किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है, इसलिए युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें सही दिशा देना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं के महत्व को उजागर करने और उनके अधिकारों, समस्याओं तथा संभावनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये दिन युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और रचनात्मकता को पहचानने का अवसर उन्हें प्रदान करता है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। इसके बाद साल 2000 से ये दिन हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन युवाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होता है, जैसे शिक्षा, रोजगार, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण। जी हाँ, और युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनमें नई सोच, उत्साह और श्रोताओं कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। अगर उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वो देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते भी हैं। आज के युवा विज्ञान, तकनीक, खेल, कला और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वो नए नए विचारों और नवाचारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। हालांकि श्रोताओं, युवाओं के सामने कई चुनौतियां भी हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर अशिक्षा से जुड़ी हुई हो। कई युवा भविष्य की चिंता के कारण तनाव और अवसाद का सामना भी कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जो उद्देश्य है वो इन समस्याओं के समाधान के लिए जागरूकता फैलाना है कि युवाओं को इन समस्याओं से कैसे निजात मिले और वो खुले आसमान में अपने पंख फैला सके। और श्रोताओं, इस दिन सेमिनार, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक आयोजन और जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जाते हैं, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाती है और उन्हें समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया भी युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इसके माध्यम से श्रोता युवा अपने विचारों को दुनिया के सामने रख सकते हैं, लेकिन इसका संतुलित उपयोग करना आवश्यक है। जी हाँ, ये देखना जरूरी है कि कहीं हम इसका उपयोग गलत रास्ते पे तो नहीं कर रहे हैं। और सरकार और समाज की भी श्रोताओं, ये जिम्मेदारी है कि वो युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए, और साथ ही युवाओं को भी, हम तो यही कहेंगे जो हमारे युवा हैं, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एक उत्सव नहीं बल्कि एक जागरूकता अभियान भी है। साथियों, युवा ही राष्ट्र की आशा है, उनकी उन्नति देश की उन्नति है। तो उन्हें आगे बढ़ाने में, समाज के उत्थान में अपनी भागीदारी जरूर दें। और

अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं विश्व हाथी दिवस की। जी हाँ साथियों, आज ही के दिन यानी 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ये दिन हाथियों की नाजुक स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। श्रोताओं, हाथी अपने विशालकाय शरीर और अपनी तेज बुद्धिमत्ता के कारण अपनी अलग पहचान रखता है और कई जगह तो इसे पूजनीय भी माना जाता है, पूजा भी की जाती है। लेकिन इसके बावजूद ये विशालकाय जीव गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं, जिस कारण इनकी आबादी काफी घट गई है। आज का ये दिन यानी कि 12 अगस्त ये याद दिलाता है कि हमें इनकी रक्षा की पहल के लिए आगे आना ही होगा। श्रोताओं, हाथियों की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है। साल 1989 से अफ्रीकी वन हाथियों की आबादी में काफी गिरावट देखने को मिली है, जिसका मुख्य कारण अवैध शिकार और उनके आवास का विनाश है, यानी कि जंगलों का कटान है। इसलिए विश्व हाथी दिवस की स्थापना 2012 में हाथियों के संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी। साथियों, हाथी महज एक प्रतिष्ठित जानवर नहीं है, वो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रजातियां भी हैं। घने जंगलों में रास्ता बनाने से लेकर अपने गोबर के जरिए बीजों को फैलाने तक अपने आवासों का संतुलन बनाए रखने में ये मदद करते हैं। इनकी संख्या में कमी न केवल जैव विविधता में कमी है, बल्कि हमारे ग्रह के सबसे शानदार प्राणी का भी नुकसान है। इस हाथी दिवस पर श्रोताओं संकल्प लें कि हम अपने साथ औरों को भी जागरूक करें और हाथियों की रक्षा करें।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और नजर डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर। तो सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला क्या लिखता है। ये लिखता है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर और चार जगह दबी 1600 मीटर सड़क। मंगलवार को कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन 3 और लखनऊ से कानपुर जाने वाले लेन पर एक स्थान पर सड़क दब गई है। इन चार स्थानों पर कुल 1600 मीटर लंबाई में सड़क दबने से बनी नालियों में तेज रफ्तार से वाहन लहरा रहे हैं और श्रोताओं, इससे चालकों की परेशानी और बढ़ रही है। निर्माण एजेंसी के अधिकारी तेजी से काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस कारण सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे लिखा है अमर उजाला ने कि बायो एनर्जी एक्सपो पेट्रोल की छुट्टी और नए ईंधन का जलवा। ये लिखता है ऑटोमोबाइल जगत की कंपनियां बायो एनर्जी एक्सपो में आई हैं, जहां वो पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक सीएनजी से आगे बढ़कर इथेनॉल वे मैथेनॉल जैसे बायोफ्यूल के वाहनों को प्रदर्शित कर रही है। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में मंगलवार के दिन दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आगाज हुआ। इन वाहनों का संचालन पेट्रोल व डीजल के मुकाबले 20-30% किफायती होगा और भविष्य को देखकर कंपनियां इथेनॉल व मैथेनॉल से चलने वाले वाहन तैयार कर रही है, ताकि पेट्रोल डीजल से निर्भरता कम कर हरित ईंधन को अपनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हिंदुस्तान की ओर। हिंदुस्तान लिखता है कि 15 अगस्त के कार्यक्रमों में उपस्थिति अनिवार्य। डीएम जसजीत कौर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ हर घर तिरंगा 2026 स्वतंत्रता दिवस समारोह तथा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने हर घर तिरंगा 2026 अभियान के अंतर्गत निर्धारित पोर्टल पर अधिक से अधिक लोगों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के साथ फोटो अपलोड करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनपद बिजनौर को प्रदेश में इस कार्य में प्रथम स्थान पर लाने के लिए

सभी कर्मचारी सक्रियता से काम के साथ अपना योगदान देंगे। और इसके साथ उन्होंने और भी आदेश दिए और सभी की उपस्थिति अनिवार्य बताई। आगे लिखता है, हिंदुस्तान की ई दोपहिया वाहन पर सब्सिडी हुई आधी। सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को बढ़ावा देने वाली पीएम ई ड्राइव योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है। हालांकि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को आधा कर दिया गया है। अब पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को बैटरी क्षमता के आधार पर 2,500 रुपए प्रति किलोवाट घंटा का प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो अधिकतम 5,000 रुपए प्रति वाहन होगी। नई व्यवस्था में प्रति किलोवाट घंटा और प्रति वाहन अधिकतम सब्सिडी को घटाकर आधा कर दिया गया है। और अब बढ़ते हैं दैनिक जागरण की ओर। ये लिखता है कि हरिद्वार से 4.80 करोड़ शिव भक्तों ने उठाई आस्था की कांवड़। सावन शिवरात्रि पर मंगलवार को धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। कांवड़ यात्रा शुरू होने से 11 अगस्त तक 4.80 करोड़ से अधिक शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। और अब देखते हैं खेल समाचार। भारतीय खिलाड़ियों ने नाइजीरिया में चल रही अंडर-23 राष्ट्रीय मंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए प्रतियोगिता के दूसरे दिन 7 और पदक अपने नाम किए। भारत ने प्रतियोगिता के पहले दिन 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 17 पदक जीतकर पुरुष और महिला व्यक्तिगत स्पर्धाओं में अपना दबदबा कायम रखा। तो ये थी अखबारों की कुछ सुर्खियां। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे येसुदास और हेमलता की आवाज़ में फिल्म चितचोर का ये गीत। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले सेगमेंट की ओर और देखते हैं कि आज क्या है कुछ खास आज के तिथि विशेषांक में। तो श्रोताओं, 12 अगस्त 1948 में भारतीय हॉकी टीम ने स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक पदक जीता था। ये पदक भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अपने नाम किया था। इससे पहले वर्ष 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक भारत ने अपने नाम किए थे, लेकिन ये अंग्रेजी हुकूमत के शासनकाल में उन्होंने जीते थे। 12 साल तक द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो पाया और 12 साल बाद स्वतंत्र भारत की हॉकी टीम ने चौथा स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और फाइनल में भारत के सामने ग्रेट ब्रिटेन की टीम थी, जिसे 4.0 से हराकर ये तमगा हमारे देश ने अपने नाम किया था और ये खेल लंदन में आयोजित किए गए थे। साल 1981 में 12 अगस्त का दिन कंप्यूटर के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन IBM ने अपने पहले पर्सनल कंप्यूटर को स्टोर्स में पेश किया था। ये कदम तकनीकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ और इसने कंप्यूटिंग को एक नई दिशा दी। IBM का पहला मॉडल 5150 था और आज हम जिसका फायदा उठा रहे हैं और हर काम कंप्यूटर के माध्यम से, कई काम हम बहुत जल्दी और आसानी से कर पा रहे हैं। तो श्रोताओं, आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों में हम बात कर रहे हैं महान भौतिक वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की। इनका जन्म 12 अगस्त साल 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विज्ञान के विकास के लिए कई बड़े बड़े संस्थान भी खोले, जैसे 1962 में अंतरिक्ष कार्य के लिए समिति बनाई जो इसरो के नाम से जानी जाती है। अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जैसे प्रसिद्ध संस्थान बनाए और उनके प्रयासों से भारत ने केरल के थुम्बा से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और उनकी अविस्मरणीय कार्यों के लिए उन्हें 1966 में पद्म भूषण और मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। 12 अगस्त 1945 में भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अंग्रेज व्यक्ति ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। जी हाँ, उनका निधन इसी दिन हुआ था और हम बात कर रहे हैं जॉर्ज सिडनी अरुंडेल की। इन्होंने अपना जीवन शिक्षा, आध्यात्म और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ जिया। जी हाँ, वे एक अंग्रेज थे लेकिन उन्होंने भारत को ही अपनी सच्ची कर्मभूमि माना और अंत तक यहीं रहे। ये साल 1902 में एनी बेसेंट से प्रभावित होकर भारत आए और वाराणसी के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर और प्रधानाचार्य भी रहे। श्रोताओं, उन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं में देशभक्ति व आत्मसम्मान की भावना जगाई। कई युवा क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से उन्होंने सहायता दी। भारत की स्वतंत्रता की मांग उठाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1917 में उन्हें एनी बेसेंट और वीपी वाड़िया के साथ नजरबंद कर दिया। और अब रुक करते हैं फिल्मी सफर की ओर और आज के सफर में बात कर रहे हैं सारा अली खान की, जो एक भारतीय अभिनेत्री हैं और सैफ अली खान और अमृता सिंह की पुत्री हैं। इनका जन्म 12 अगस्त यानी आज ही के दिन साल 1995 में हुआ था। आपने साल 2016 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से स्नातक के साथ अपनी फिल्मी सफर की स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2018 में हिंदी फिल्म केदारनाथ के साथ अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की।

फिर इसी साल सिम्बा, लव आजकल और कूली नंबर वन 2020 में इनकी रिलीज हुई। अतरंगी रे 2021 में इनकी रिलीज हुई और जरा हट के जरा बच के 2023 में और ए वतन मेरे वतन मर्डर मुबारक 2024 में रिलीज हुई। सारा अली को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और उनके अभिनीत इस गीत के साथ कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। 8 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से।

0: गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरतो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
3: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाद

0: दाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
1: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 से 5 के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
4: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की

0: सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं, झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोक सत्य की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sherjin Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing. More from our correspondent.
4: The Kerala Alteration of Name Bill seeks to change the name of State of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The resolution stated that while the state is known as Keralam in Malayalam, its name is recorded as Kerala in the first schedule of the Constitution. Meanwhile, the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 aims to amend the Mines and Mineral Development

0: Quoting the PM, the Asian Age writes, take Viksit Bharat vow on Independence Day. Centre approves 1 billion 10 and 20 rupee polymer bank notes for field trials, headlines the Hindu. A headline in the Indian Express writes, amid pushback from opposition, government ready to refer FCRA bill to JPC. The Economic Times states, Fitch retains India growth outlook at stable. Robust growth and solid external finance fundamentals will balance fiscal and energy risks. Keeps credit rating at BBB. In a major move to deepen US-India bilateral space collaboration, NASA invites ISRO to Moon Base project, reports the Hindustan Times. The Times of India writes about a study stating with global rise in exposure to dangerous humid heat, India is emerging as the most affected country. Another headline in the same paper writes, no more plastic sachets for pan masala. Under the headline, women are second to none in India's skill-building vision. An op-ed in Hindustan Times writes about the fact that women comprise over 56% of certified candidates under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, demonstrating that aspiration for technical mastery is universal. And finally, the Pioneer carries a story under the headline, Delhi unveils four tourism circuits, presenting the national capital as an integrated tourism experience and develop it as a destination city for a transit hub. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan flags off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic, West Bengal today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत के नाम को तब्दील करने वाला केरला तब्दीलीय नाम बिल 2026 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे लोकसभा में कानून और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुताल्लिक तरमीमी बिल को गौर व खोज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुद नविश्त का इजरा करेंगे नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया मशरिकी राजस्थान वस्ती महाराष्ट्र ओडिशा झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया है और नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाजों करण सिंह शर्जिन शैंतिमोल और तनिष्का खत्री ने सोने के तमगे जीते हैं अब खबरें तफसील से मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत नाम तब्दीलीय बिल 2026 को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे लोकसभा ने इस बिल को कल मंजूरी दे दी है राज्यसभा में कौमी इमदाद बहामी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को भी आज बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है लोकसभा में कानों और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को आज गौर खोज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा मजीद तफसील हमारे नामा निगार से
3: केरला तब्दीली नाम बिल 2026 आइन के पहले शेड्यूल में रियासत केरला के नाम को केरलम नाम से तब्दील करेगा इस बारे में कानून साज असेंबली ने जून 2024 में एक करारदाद मंजूर की थी केरला कानून साज असेंबली की 2026 में मंजूर हुई करारदाद में मरकज से केरला रियासत के नाम को केरलम करने की दरखास्त की गई थी करारदाद में कहा गया है कि मलयालम जबान में रियासत का नाम केरलम है जबकि आइन के पहले शेड्यूल में इसे केरला लिखा गया है इस दौरान कानों और मादनियात की तरक्की और इंजिबात से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का मकसद कानों और मादनियात की तरक्की और इंजिबात से मुतालिक 1957 के कानून में तरमीम करना है वहीं इस बिल का

0: अक्सर भारत के कानकनी के शोबे को ज्यादा मौसर, सरमायाकारी के लिए ज्यादा साजगार और अहम मादनियात के लिए मुल्क की बढ़ती जरूरतों से हम आहंग करना भी है। दिल्ली से दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जम्हूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त भारत गणराज्य के विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये खुदनविश्त साबिक सदर जम्हूरिया रामनाथ कोविंद की जिंदगी के सफर, उनके तजुर्बों, जद्दोजहद और हुसूलियाबियों का इंतहाई जाती नौयत का खाका पेश करती है। साथ ही उनकी शुरुआती जिंदगी से लेकर भारत के 14वें सदर जम्हूरिया के तौर पर अवामी जिंदगी में उनकी खिदमात का अहाता करती हैं। ये किताब उन इकदार, तजुर्बों और हालात से भी वाकिफ कराती है जिन्होंने साबिक सदर जम्हूरिया के सफर और अवामी खिदमत को नुमाया किया। वज़ीर आज़म की जानिब से खुदनविश्त का इजरा भारत की सरकर्दा अवामी शख्सियात में से एक की जिंदगी और उनके तआवुन की निशानदही करने का मौका है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली के भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शहरियों से फख्र, ताजीम और अजमत के साथ यौम आज़ादी मनाने और तरक्की याफ्ता भारत का अज़्म करने की अपील की थी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए अपने वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर हर घर पर कौमी परचम लहराने की अपील की। खेलों और नौजवानों के उमूर के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। जनाब मांडविया ने माय भारत रजाकारों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी तक रैली की क्यादत की। मीडिया से बात करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि 1000 से ज्यादा माय भारत रजाकारों ने रैली के जरिए मुल्क तक फिटनेस का पैगाम पहुंचाया है। जनाब मांडविया ने किसी भी मुल्क की तरक्की याफ्ता मुल्क बनने में साइकिल चलाने के फायदों को नुमाया किया।
2: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
1: जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की मशहूर डल झील के किनारे से मुत्तसिल बुलवार्ड रोड पर आज अजीम तिरंगा यात्रा निकाली गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रैली की क्यादत की जिसमें हजारों तलबा, सरकारी मुलाजमीन, सिक्योरिटी अहलकारों और मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के उम्मीदवारों का एहतजाज 19वें दिन में दाखिल हो गया है। तलबा अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं और इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों पर कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। रांची में देर रात जिला इंतजामिया एहतजाजी मुजाहरे की जगह पर पहुंचने के बाद कशीदगी में इजाफा हो गया। पेश है एक रिपोर्ट।
0: तलबा ने कल शाम खामोश मार्च निकाला और कहा कि ये मार्च पुरअमन और जमहूरी तरीके से उनके मुतालबात को उठाने के लिए था। बाद अजा जिला इंतजामिया के अफसरान की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एहतजाज कर रहे तलबा के पास पहुंची और भूख हड़ताल पर बैठे तलबा से बात की। तलबा रहनुमा ने कहा कि इंतजामिया ने कोर कमेटी के मेम्बरान की तफसीलात मांगी हैं और यकीन दहानी कराई कि वो इस अमल में ताउन कर रहे हैं। तलबा लीडर देवेंद्र नाथ महतो मुसलसल 10वें दिन भूख हड़ताल पर हैं और उनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाद में बीजेपी रहनुमा जिनमें रियासती जनरल सेक्रेटरी अमर कुमार बौरी और रियासत के नायब सदर भानु प्रताप शाही एहतजाज के मकाम पर पहुंचे और तलबा के लिए हिमायत का इजहार किया। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुंबई के विले पार्ले इलाके में कल रात आग लगने के हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी हो गए। इंतजामिया के मुताबिक ये आग विले पार्ले वेस्ट में वाके 12वीं मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी। बीएमसी मुंबई फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को रात 10 बजे के करीब वाके की इत्तला मिली। बीएमसी मुंबई फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और दीगर खिदमात को फौरी तौर पर बरूए कार लाया गया। देर रात लगभग 12:25 पर आग पर काबू पाया गया। मजीद जांच जारी है।

0: पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में कश्मीरियों से कल मुजाहिरों का इनेकाद करने की अपील की है। इस तरह इन मुजाहिरों को बैन अल-अक़वामी अहमियत हासिल हो गई है। अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि कई मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारतखानों और सिफारती मिशनों के बाहर मुजाहिरों का इनेकाद करने का मंसूबा है ताकि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल की जानिब बड़े पैमाने पर तवज्जो मबजूल कराई जा सके। कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वह खित्ते में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ बैन अल-अक़वामी तवज्जो रागिब करने के लिए रैलियों का भी इनेकाद करे। अवामी एक्शन कमेटी ने यह भी ऐलान किया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। केरलम के मुख्तलिफ मंदिरों में आज आबा व अजदाद को खराज अकीदत पेश करने से मुतालिक रिवायती रस्म करक्की डाका वावू बली अदा की जा रही है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: केरलम में आज सुबह करक्की डाका वायू बाली की रस्म शुरू हो गई है। बेशतर मंदिरों में ये रसूमात सुबह 3:30 और 5 के दरमियान शुरू हुई। मलयालम माह करक्की डाका नए चांद के दिन को मरहूमीन के लिए रसूमात अदा करने के लिए हिंदू रिवायत में इंतहाई मुकद्दस तसव्वुर किया जाता है। मुख्तलिफ देवास्वोम बोर्ड्स और मंदिरों ने अकीदतमंदों के लिए जबरदस्त तैयारियां की हैं। बारिश के मद्देनजर नदियों के किनारों और साहली इलाकों में सिक्योरिटी का इजाफी बंदोबस्त किया गया है। अनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों सिक्किम, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, मशरकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान और निकोबार जजायर में अगले 2-3 के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कल तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर मानसून की लगातार बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में रखना पड़ने का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थरों के गिरने की वजह से आमो दरख्त मुतासिर है और लोगों को बिजली और पानी फराहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के 6 में अगले 12 के दौरान शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर मकामात पर रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों में मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। मंडी में जिला इंतजामिया ने मूसलाधार बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थर गिरने के खतरे के पेश नजर मंडी और कुल्लू के दरमियान कौमी शाहरा 21 और मंडी और जोगिंदर नगर के दरमियान कौमी शाहरा 154 पर कल रात से मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह मुअत्तल कर दी है। इसके अलावा रियासत की दीगर 204 सड़कों को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान शिमला के महकमे मौसमियात ने 6 कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासती हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें और मकामी इंतजामिया की जानिब से वक्तन फौक्तन जारी होने वाली हिदायत पर अमल करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: इधर ओडिशा में एक बार फिर दूर दराज के मकामात तक बारिश होने का इम्कान है जबकि खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव का हल्का बन रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत के ज्यादातर मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशगोई की है। हालांकि इक्का दुक्का मकामात पर कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। महकमे ने आज अंगुल और क्यूंझार अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक और संबलपुर समेत दीगर कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो समंदर में ऊंची लहरें उठने के मद्देनजर चौकस रहें। ज़िराअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में हरियाली अमावस्या के मौके पर बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क भर में जनाब चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े हजारों कारकुन भी उनकी अपील पर अपने अपने गाँवों और शहरों में इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क में 50,000 से ज्यादा पौधे लगाने का इज्तिमाई अहद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 19 रियासतों और मरकज के दिन इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कैंसर को काबिल इतला मर्ज करार देने पर गौर करें ताकि मर्ज का जल्द पता लगाया जा सके और मरीजों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच ने कल ये हिदायत जारी की। अदालत को बताया गया था कि 36 रियासतों और मरकज के जिले इंतजाम

0: के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, उसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसकी धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज़ है मुकेश की और फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: चंदन का एहसास।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिली में लता मंगेशकर को, और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा एक गीत। संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है अनुरोध। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अनुरोध का ये गीत। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत जो हमने लिया है, फिल्म का नाम है जमाने को दिखाना है, आवाज है शैलेंद्र सिंह की और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने को है। अब आप हमारे लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल सुनेंगे।
1: हलचल आज सुनिए रायबरेली और शाहजहांपुर जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रायबरेली और सहारनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
1: रक्षाबंधन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चंद्र सिंह ने सभी होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों के संचालकों को सख्त निर्देश जारी करते हुए गुणवत्ता और साफ सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। सहायक आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मिठाइयों से भरी ट्रे पर बेस्ट बिफोर और यूज्ड बाय की जानकारी वाले स्टिकर अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। बिना लेवल के मिठाइयों की बिक्री पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली खाद्य दुकानों पर उपभोक्ताओं की शिकायत और फीडबैक के लिए QR बार कोड प्रणाली लागू की गई है, ताकि श्रद्धालु सीधे विभाग तक शिकायत दर्ज करा सकें। होटल और रेस्टोरेंट से निकलने वाले इस्तेमाल किए गए तेल के सुरक्षित निस्तारण और प्रबंधन के संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विभाग ने विशेष सचल दल तैनात किया है, जो लगातार बाजारों, मिठाई दुकानों और भोजनालयों की जाँच कर रहा है। रक्षाबंधन को देखते हुए मिठाइयों के लगातार नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चंद्र सिंह ने बताया,
2: कोई भी पेरिसेबल आइटम हो या नॉन पेरिसेबल आइटम, उनका बेस्ट बिफोर और यह यूज बाई जरूर मेंशन करें। सभी आपके फूड हैंडलर मेडिकल टेस्ट अपना करा ले। जो भी कंज्यूमर आए उनके लिए एक रिडेशन सिस्टम रखें, जिसपे उनसे फीडबैक लें कि क्या सही है क्या गलत है, कि जो भी डिब्बे की क्वालिटी हो उसको इंश्योर करें। इस हिसाब से डिब्बों का भी संचालन रखें, जिससे कि किसी प्रकार की शिकायत न हो। अगर किसी प्रकार की शिकायत या प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ फिर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
1: श्रावण मास में आबकारी विभाग ने कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को कपड़े से ढकवा दिया है। जनपद में लालगंज, डलमऊ, सलोन व ऊंचाहार के मार्ग ऐसे हैं जहां से श्रद्धालु पैदल चलकर गंगा घाट पहुंचते हैं। इन सभी मार्गों में पड़ने वाली शराब की दुकानों को ढकवाने का निर्देश दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया,
3: जिले में कुल 58 दुकानें चिन्हित की गई हैं, जिन्हें कपड़े से ढका गया है। और कपड़े से ढकने का मुख्य कारण यही है कि जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानें लोगों को दिखाई ना

0: उनका ध्यान रखना, कोई किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना। परिक्षेत्र में पड़ने वाले सभी संदिग्ध ग्रामों पर भी हम सतत निगरानी रख रहे हैं और लगातार हमारी प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है।
1: श्रावण मास के पहले सोमवार को जनपद रायबरेली पूरी तरह शिवमय हो उठा। भोर की पहली किरण के साथ ही मंदिरों की घंटियां गूंज उठी और भगवान भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री लेकर मंदिरों की ओर रवाना होने लगे। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए मंदिर पहुंची, युवाओं ने कांवर लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने शांत भाव से शिवलिंग पर जल अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शहर के प्रसिद्ध जगमोहनेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। मंदिर परिसर के बाहर सैकड़ों श्रद्धालु हाथों में जल कलश और पूजा सामग्री लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। मंदिर में प्रवेश के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई थीं ताकि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को असुविधा न हो। रायबरेली के ओई गांव में बारिश के जमीन धंसने से एक सुरंग और पक्की दीवार जैसी संरचना दिखाई दी। इस अनोखी संरचना को देखने के लिए देखते ही देखते पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम महाराजगंज और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई लखनऊ मंडल की टीम मौके पर पहुंची। सहायक पुरातत्वविद डॉक्टर मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में टीम सीढ़ी के सहारे इस रहस्यमय सुरंग के अंदर उतरी। सुरंग के अंदर जांच के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम को कई ऐतिहासिक चीजें मिली हैं। यहां से प्राचीन काल की पुरानी ईंटें, मिट्टी की सुराही और एक हैंडल वाली धूपदानी बरामद की गई है। एक्सपर्ट के शुरुआती आकलन के मुताबिक ये सभी अवशेष कुषाण कालीन बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान गांव के ही रहने वाले अशोक प्रताप मौर्य के पास से भी कई प्राचीन अवशेष मिले हैं जिन्हें वो 1985 से सहेज कर रखे हैं। बताया जा रहा है यह ओई भीट पुरातत्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज एक ऐतिहासिक स्थल है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और ग्रामीणों को गड्ढे के पास जाने से मना किया गया है। एएसआई की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही इस प्राचीन और ऐतिहासिक सुरंग के बारे में और जानकारी मिल सकेगी। हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने और इसमें अधिकाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी सरनीत कौर प्रोगा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापारिक संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, निजी संस्थानों तथा अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग व जन भागीदारी से हर घर तिरंगा अभियान सफल बनाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। अभियान के दौरान जनपद के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, राष्ट्रनायकों की प्रतिमाओं का अलंकरण कराया जाए तथा प्रमुख बाजारों, चौराहों और पार्कों को तिरंगा थीम पर सजाया जाए। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सभी शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों आदि पर ध्वजारोहण, सम्मान और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा नागरिक गण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए।
2: रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत कुमार सैनी का।
3: सहारनपुर में श्रावण कावड़ यात्रा सकुशल ढंग से संपन्न हुई। हरिद्वार से गंगा जल लेकर यहाँ से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए लाखों शिव भक्तों के जयघोष से जिला शिवमय बना रहा। कावड़ मार्ग पर जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशासन और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हर हर महादेव और बोल बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्ति में रहा। मंडलायुक्त डॉक्टर उपेश कुमार एवं डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान, एसएसपी अभिनंदन, नगर आयुक्त शिपुगिरी, सीडीओ सुमित राजेश महाजन के नेतृत्व में यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन ने पूरे कावड़ मार्ग को 3 सुपर जोन, 11 जोन और 23 सेक्टरों में बांटकर 69 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए। 4 नियंत्रण कक्षों में 54 अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहे। 12 प्रमुख मंदिरों पर जलाभिषेक के लिए 14 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। 40 अस्थायी चौकियां, 27 बैरियर, 32 पिकेट, 15 वॉच टावर स्थापित किए गए। कावड़ मार्ग पर स्ट्रीट लाइट, जनरेटर, शौचालय और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई। करीब 148 ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों की नियमित जांच भी की गई। कावड़ियों के स्वागत में मंडलायुक्त डॉक्टर उपेश कुमार और डीआईजी अभिषेक सिंह ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इससे एक दिन पूर्व नगर निगम की ओर से महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने भी नगर आयुक्त शिपुगिरी और योग गुरु भारत भूषण के साथ हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर फूल बरसाए। वहीं गागलहेड़ी में करीब 2,70,000 रुपए के नोटों से सजी कावड़ भी आकर्षण बनी। जिले में युवाओं

0: राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला सलाहकार समिति की बैठक में युवाओं को स्वयं सेवा, कौशल विकास, इंटर्नशिप और नेतृत्व विकास के अवसरों की जानकारी दी गई। ब्लॉक, ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर अधिक से अधिक युवाओं को पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की वार्षिक पत्रिका नवोदय प्रभात का डीएम अरविंद कुमार चौहान ने विमोचन किया। पत्रिका में विद्यार्थियों की मूल रचनाओं और विद्यालय की गतिविधियों को शामिल किया गया है। जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत चयनित 14 महिलाओं और 14 पुरुषों समेत 28 लाभार्थियों को चयन एवं अनुमति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में स्वदेशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी संख्या में तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों के साथ आम लोगों को भी अभियान में शामिल किया जा रहा है। वहीं आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 23 सितंबर तक लागू की गई है। बिना अनुमति जुलूस, सभा और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ और निर्धारित क्षेत्र में फोटो कॉपी स्कैनर संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। चाइनीज और सिंथेटिक मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस सीओ के गनर राहुल ढाका हत्याकांड में अदालत ने मेहताब उर्फ काना उर्फ जीवा और सादर खां को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अभियोजन की ओर से 17 गवाह पेश किए गए। 5 मई 2013 को चिलकाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप लूट के बाद बदमाशों का पीछा करते हुए गनर राहुल ढाका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नानोता स्थित किसान सहकारी चीनी मिल में करीब 68 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। आरोप है कि ठेकेदारों से मिली भगत कर एक ही काम को दो बार भुगतान कराया गया। इस मामले में पुलिस ने अकाउंटेंट चैतन्य राम ठाकुर को गिरफ्तार किया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:25 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं नयन तारा शर्मा और अर्चना त्यागी के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

अभी हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है में नयनतारा शर्मा और अर्चना त्यागी के गाए रुहेलखंडी लोकगीतों का आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे हैं नयन तारा शर्मा और अर्चना त्यागी के गाए रुहेलखंडी लोकगीतों का आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत नयनतारा शर्मा और अर्चना त्यागी के गाए रुहेलखंडी लोकगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

0: श्रोताओं, नयन तारा शर्मा और अर्चना त्यागी के गाए रुहेल खंडी लोकगीतों के साथ कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत नयन तारा शर्मा और अर्चना त्यागी के गाए रुहेल खंडी लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 10 बज रहे हैं। लीजिए पेश है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को रिमझिम बलूनी की ओर से और
1: मेरी तरफ से यानी विश्वास द्विवेदी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। तो श्रोताओं, हम हाजिर हो गए हैं लेकर आपके प्यारे प्यारे पत्रों को और साथ में हम पढ़ेंगे आपके मैसेजेस जो आपने भेजे हैं अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए।
1: और तो, जो हमारे नए श्रोता हैं उनको हम बता देते हैं कि आपको किस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और अपनी फरमाइश हमें भेजनी है। वो नंबर है 9457078288 यानी 9457078288। तो जल्दी से फोन उठाइए और अपनी फरमाइश लिखकर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए।
0: जी,
1: हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। और हमारे पास लगातार यहाँ मैसेज की लाइन लग गई है।
0: जी जी, इधर हमने नंबर बताया नहीं, उधर मैसेजेस आने हमारे श्रोताओं के शुरू हो गए हैं। लेकिन हमारे पास अपने श्रोताओं के पत्र भी हैं और कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है आप सभी की पसंद पर सुनने वाले हैं।
1: ये फरमाइश
0: फरमाइश जी जी फरमाइश भेजिए पहले पत्रों से हम
1: जी पत्र पढ़िएगा।
0: तो ये फरमाइश हमें भेजी है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने।
1: ये मैसेज हमें मिला है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा का।
0: ये मैसेज पत्र के माध्यम से पत्र हमें मिला है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा गीत को सुनना चाहते हैं।
1: ये मैसेज भेजा है हमें मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी ने नई बस्ती गंज ढुंडवारा से।
0: ये पत्र हमें मिला है लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से, भेजने वाले हैं नारायण भाऊ, विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक, ब्रोनो उषा सोरना खर्चे।

0: चर्चे स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी।
1: ये मैसेज हमें भेजा है कालीचरण कृष्णा पार्क नई दिल्ली से
0: जी,
1: सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना का। और एक और मैसेज हमें भेजा है इसी गीत की फरमाइश के लिए जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल।

श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है प्यार झुकता नहीं फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी की पसंद पर।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म किस्मत का। आवाजें हैं आशा भोसले और शमशाद बेगम की, जिसे लिखा है SH बिहारी ने और संगीत है OP नैयर का। इस गीत को पसंद करने वाले हैं आप सभी।
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से हमें ये मैसेज इसी गीत के लिए भेजा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने।
0: और ये पत्र हमें मिला है बक्सर बिहार से। सुनना चाहते हैं इसी गीत को शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अतलाफ अंसारी, डुमराव बिहार से। इसी गीत की फरमाइश भेजी है डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी ने सारिमपुर बक्सर से, आसमा खातून अंसारी, राज SD अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी ने।
1: और ये मैसेज मिला है वारसी क्लब सिंधौली, मीरगंज, बरेली से। जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और मेराज अंसारी का।
0: इसी गीत को पसंद कर रहे हैं आप ग्राम जुजेला, थाना शिवाला कला, बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा आलिया, सायना महविश, मोहम्मद अफान, अदीना नूर और इनके परिवार के सभी लोग।
1: और इसी गीत की सुनने की ख्वाहिशमंद हैं मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लॉर्ड लीनिया और सभी के घर के सभी सदस्य।
0: जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें मिला है सुरीत, रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, सुनीता साहू, हिरेंद्र नीलकंठ साहू, चंद्रहास संजीव, त्रिलोक साहू, रणजीत सिंह साहू और ग्राम भिलोरी छत्तीसगढ़ से रोहिणी डागेश्वरी साहू, खुलाशा देवी, देवव्रत राघवेंद्र राज साहू, हेमंद्र कुमार साहू, विधि दीपिका साहू और कविता सृष्टि साहू ने।
1: और ये मैसेज हमें भेजा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा ने।
0: ये पत्र हमें मिला है मेहरनगर, उमरखेड़, महाराष्ट्र से। भेजने वाले हैं अभिजीत, सरिता, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश, शैलेश, वैशाली ग्वाड़कर, श्वेता सुमित और ध्वनि ग्वाड़कर ने।
1: गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण और मनोज भ्याण।
0: रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें मिला है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का।
1: ये मैसेज है जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद तानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं श्री गंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा।
1: मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और कोपर गांव से सुरेश मलोदे, वर्षा मलोदे, शेवगांव से श्रीराम गोधली और उषा गोधली।
0: इसी गीत को सुनने के लिए ये पत्र हमें भेजा है नाज मंजिल महसौल, सीतामणि बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, नवासी हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज और साजिया शाहीन नाज,

0: नाजिया नूरी नाज और बच्चू शेख और चीना शेख ने।
1: कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय।
0: ये पत्र भेजा है पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली ने।
1: पदमपुर जिला श्री गंगा नगर राजस्थान से हमें ये मैसेज मिला है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का। और एक ये मैसेज है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार।
0: तो आप सभी की पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म किस्मत का ये गीत, आवाज़ है आशा भोसले और शमशाद बेगम की।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो इस गीत के बाद फिर से हाजिर हैं हम आपकी फरमाइश के और ढेर सारे गीत लेकर। आज का ये कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर बता दें, कुछ श्रोता हमारे नए जुड़े होंगे जिन्हें ये नंबर नहीं पता होगा किस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये नंबर है 9457078 9457078288।
5: जी, तो कार्यक्रम का अगला गीत जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे वो हमने लिया है फिल्म गैम्बलर से, क्षमा कीजिए, वो हमने लिया है कुछ कुछ होता है फिल्म से, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीत जतिन ललित का और गीत है समीर का। तो इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे सभी श्रोता।
4: शाही मार्केट सहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, रफात चौधरी, अदीप चौधरी, कादिर चौधरी।
5: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान, जमीर खान।
4: जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो।
5: बहुत सुंदर सा पत्र बहुत सजा कर हमें भेजा है गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से MS फारूक कादरी, फिरासन हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम ने।
4: गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश।
5: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय।
4: ये मैसेज हमें जो मिला है मजनू कटीला दिल्ली से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना MP से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।
5: कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये पत्र हमें मिला है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता का।
4: ज्योति नगर नोखा राजस्थान से ये मैसेज भेजा है पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बॉबी गौरी, हसन सिक्का ने।
5: और ये पत्र हमें मिला है मनकारा मंदिर BDA कॉलोनी करगना बरेली उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, रवनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह।
4: शेरकोट बिजनौर से ये मैसेज हमें भेजा है निजामुद्दीन, रऊफ अहमद, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हन्नान, महक
5: रमश।
4: इसके अलावा ये एक और मैसेज हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार का।
5: और ये अगला मैसेज हमें मिला है चकला बाजार सामाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और इनका पूरा परिवार।
4: और ये मैसेज हमें मिला है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार का, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता।
5: इसी गीत को सुनना चाहते हैं भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की तानिया नारंग।
4: गुमला झारखंड से ये मैसेज भेजा है सैम जावेद, शगुप्ता, अंजुम और नजमुल हुदा ने।
5: अगला मैसेज मिला है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और गौरव मंदूरकर का।
4: पहाड़गंज मुल्तानी ढाडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक।
5: किशोरनगर अमरावती से हीरामन शेंडे, सिद्धार्थ गोंडाने इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
4: ये मैसेज आया है महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रितेश संघई के साथ इनका पूरा परिवार।
5: तो आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है।

0: तो अगले कार्यक्रम की जो फरमाइश हमें भेजी है अगले गीत के लिए, तो वो हम बता देते हैं आपको। ये मैसेज मिला है हमें मोहल्ला हलवाई आनशेर कोड ज़िला बिजनौर से, मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। और एक और मैसेज हमें मिला है,
1: ये मैसेज है कोल सिटी बरका काना से। अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सानी और मोहम्मद अफजल मलिक का।
0: और एक और मैसेज हमें

0: मिला है शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का।
1: ये मैसेज है शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल और माल टेकरी, अमरावती से प्रशांत टेकरे, वर्षा ढेकरे, श्रद्धा टेकरे इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
0: और ये मैसेज है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर तबीरुल हसन, नजमा बेगम नाज, सरिता गौतम, बेगम शबनम अनवार।
1: ये मैसेज है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी और बाबू अंसारी का।
0: दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू।
1: ये मैसेज मिला है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान।
0: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से ये मैसेज भेजा है हमें लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी ने।
1: ये मैसेज मिला है पुराना बस स्टैंड नगर पंचायत बड़ापुर बिजनौर से, गीत सुनना चाहते हैं एम ताहिर और इद्रिश हिलाल, जैन प्लांट देहरादून से।
0: कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षित और अभिषेक।
1: ये गीत सुनना चाहते हैं हिसार हरियाणा से अवधेश मिस्त्री, अखिलेश मिस्त्री, प्रवीण भाई देशराज भाई, शीला, यशोदा, ममता देवी, काजल, करण, अनुष्का, मोहिनी, गोलू, नीरज, राम सिंह, राम, राजा देशराज, बहादुर चक्रवर्ती और इनके परिवार के सभी लोग।
0: और एक और मैसेज हमें मिला है इसी गीत के लिए सनावत से शेख मूसा मोहसिन का।
1: ये मैसेज है गांव पंडार कवड़ा से, गीत सुनना चाहते हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे।
0: ये मैसेज है हमारे पास करणबीर हाउस भूचो कैनचिया बटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणबीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत का।
1: ये मैसेज हमें मिला है गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान और ताबिश खान का। और हम अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि जिनका एक बार कार्यक्रम में मैसेज शामिल हो चुका हो वो दोबारा से कार्यक्रम में मैसेज ना भेजें।
0: तो क्यों ना इनकी फरमाइश का ये गीत सुनवा दिया जाए।
1: जी बिल्कुल, कार्यक्रम का अगला गीत जो आप सभी की फरमाइश पर हम सुनवाने जा रहे हैं वो हमने लिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है गैम्बलर, आरडी बर्मन का संगीत है और गीत है नीरज का।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम गीत तुम्हारे, जो कि व्हाट्सएप मैसेज और आपके पत्रों पर आधारित होता है। और जो भी नए श्रोता कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं

0: उन्हें हम एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए, नंबर है 9457078288। आशा करते हैं कि ये नंबर आपने नोट कर लिया होगा और आप भेज सकते हैं हमें कार्यक्रम में मैसेजेस। तो बिना देर के जल्दी से आप हमें कार्यक्रम में मैसेज भेज दीजिए। और बहुत सारे श्रोताओं के मैसेज हम तक पहुंच चुके हैं, तो कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं उसे पसंद करने वाले हैं आप सभी।
1: मौला अफगानान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और अजीम बाकी। तो इसके बाद हमें ये मैसेज, हमें लगातार कई मैसेज हमें दो बार भी मिल जाते हैं कई बार।
0: जी जी।
1: श्रोताओं इस बात का ध्यान रखिए कि आप हमें मैसेज भेजते हैं, आपका नाम पढ़ा गया उसके बाद मैसेज ना भेजें, जिससे कि और श्रोताओं को भी मौका मिल सके उनकी फरमाइश का गीत सुनने के लिए। तो एक और मैसेज हमें मिला है, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का।
0: और भी मैसेजेस बहुत सारे हमारे पास आए हुए हैं। ये मैसेज हमें मिला है सब्जी मंडी बुलडाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मजू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन का।
1: और ये मैसेज मुंदीचक भागलपुर बिहार से हमें मिला है और भेजने वाले हैं मुंदीचक दिलीप कुमार सोनी। और ये मैसेज हमें मिला है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी
0: जी। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नोमन फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल।
1: और MLB रोड ग्वालियर से ये मैसेज भेजा है हमें सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरफ खुराना और AK पप्पी ने। एक और मैसेज है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा का।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। ये मैसेज हमें मिला है मेन रोड तेलहारा से, भेजने वाले हैं मैसेज प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार।
1: गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दत्तार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। और एक और मैसेज हमें मिला है ये परदेसीपुरा खंडवा से, ये लिखने वाले हैं शेख सईद राही और अनस भाई, बापू कॉलोनी, अब्दुल्ला मस्जिद, खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया खत्री, बेबी हलीमा खत्री, बेबी जिक्रा खत्री, ये लिखने वाले हैं सहेली रेडियो श्रोता संघ से। और एक और मैसेज हमें मिला है ये
0: मैसेज है हिंदुस्तान रेडियो मित्र पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, इसी गीत को सुनना चाहते हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा।
1: फजिल का पंजाब से ये मैसेज भेजा है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा और आरबी खेड़ा ने। इनके साथ है जीवन सिंह बूक और समस्त खेड़ा परिवार।
0: सुनना चाहते हैं इसी गीत को बुलंदशहर से MS अब्बासी और इनका पूरा परिवार कस्बा गुन्नेर UP से, ये मैसेज भेज रहे हैं फारूक।

0: अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और तायरा।
1: ऊपर कोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: गांव हिप्पर सोगा, तहसील ओसा, जिला लातूर से ये मैसेज भेज रहे हैं उस्मान शेख, शायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख।
1: मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांव निमनाबाद, जिला जींद, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर।
1: ये मैसेज है सरगुदा मेनपाट से, रुबीना थापा, सोनम थापा, सोनिया थापा, रेशमा थापा, जुट मिल रायगढ़ से अल्ताफ बेलदार, अदीबा बेलदार, अकरम बेलदार और आसमा बेलदार। परिमहल कासगंज से ये मैसेज भेजा है आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम, सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान।
0: तो श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कालीचरण से। संगीत निर्देशक हैं कल्याण जी आनंद जी और गीत लिखा है इंद्रजीत सिंह तुलसी ने।

0: तो इस गीत के बाद फिर से हाजिर हैं हम आपकी एक और फरमाइश लेकर, और फरमाइश करने वाले हैं मौला धर्मदास नजीबाबाद से ग़ुलाम हसन निषाद बानो मोहम्मद सलमान मोहम्मद फरमान साबरा खातून शहजादी शराफत अली अब्दुल रहमान रानी बिटिया और मदीहा। और ये मैसेज हमें मिला है
1: मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन फिरोजा, मुस्कान और अफसर अली नगमानाज मंसूरी।
0: लक्सर रोड गांव सुवाहेड़ी कस्बापुर काजी जिला मुजफ्फरनगर से हमें ये मैसेज भेजा है मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोएब, कहकशां और पूरा परिवार।
1: ये मैसेज हमें मिला है खेल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का।
0: और इसके बाद ये मैसेज हमें मिला है तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, और ये भेजा है हमें गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। और चंडीगढ़ से मैसेज भेजा है राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना ने।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं एहसान अली बागपत यूपी से, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से ये पत्र हमें मिला है नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम का।
0: लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा।
1: ये मैसेज मिला है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मुकेश मधु आशी शिवन्या और अनु गोस्वामी का।
0: तो साहब ये इनकी फरमाइश है और ये हम आपके लिए पेश कर रहे हैं
1: जी, फिल्म कुर्बानी का एक गीत, आवाज़ कंचन मनहर और आनंद की।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न होता है। और इस कार्यक्रम को संपन्न करने की मुझे यानी रिमझिम बलूनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोता अभी सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सवेरे के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। और ये जो गीत आपने सुना, इसे हमने लिया था फिल्म याराना से। आवाज किशोर कुमार की थी, गीत लिखा था अनजान ने और धुन बनाई राजेश रोशन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, इसे हमने लिया है फिल्म सड़क से। आवाजें हैं अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की। गीत लिखा है समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सड़क फिल्म में अनुराधा मोत, पोडवाल और मनहर उदास को। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है दूर गगन की छांव में। आवाज किशोर कुमार की है और गीत और संगीत भी किशोर कुमार का।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म हसीना मान जाएगी से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, शब्द रचना कमर जलालाबादी की है और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: इस संदेश के बाद फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। आइए सुनते हैं, फिल्म का नाम है आरजू। मोहम्मद रफी की आवाज है, शब्द रचना हसरत जयपुरी की है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। इसे हमने लिया है फिल्म बॉबी से। आवाजें हैं मन्ना डे, शैलेंद्र और साथियों की। गीत लिखा है विट्ठल भाई पटेल ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। 11:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
0: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं, तो श्रोताओं आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
0: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
2: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
0: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
2: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है।

0: और शान है,
1: जी
0: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओ, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
0: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
1: श्रोताओ, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
0: जी।
1: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
0: जी हाँ श्रोताओ, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता, बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
1: तो आइए श्रोताओ, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
0: जी, और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
0: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे, तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊँगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, है? मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
4: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
4: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
3: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
4: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
5: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या खाता तुम?
3: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
5: Is that right? You black monkey?
4: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
5: बात जी बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
3: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
5: You bloody rascal, you are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
3: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
5: तो क्या करेगा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? You scoundrel, you bloody swine, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
3: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
5: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
2: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
6: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
4: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
6: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
4: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
6: और अपने सुभाष बाबू?
4: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया, और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
7: कितनी सजा हुई?
3: नालायक कहीं की सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
6: क्या हुआ सुभाष बाबू?
3: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
2: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने

0: नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
1: कौन? शिशिर?
2: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ। दरवाजा खोलिए।
1: आओ, अंदर आ जाओ। क्या खबर है?
2: सब तैयारी हो गई है। पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे। मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
1: ठीक है, चलो। लेकिन मेरे ये कपड़े?
2: उसका भी प्रबंध हो गया है। आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
1: ठीक है।
2: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी ज़ियाउद्दीन नहीं है।
1: तो फिर ठीक है, आओ चलें।
2: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
1: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
1: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
3: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
1: अच्छा, खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो।
1: ये अखबार कहां गए?
3: हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
4: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
5: जय हिंद,
6: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
5: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानो उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 12 बज रहे हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, रात्रि 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग रिले की जाएगी। रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम रिले किया जाएगा। चर्चा का विषय है संसद समीक्षा। आप सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 7:45 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे कुलवंत सिंह के गाए हुए शब्द। शाम 7:32 पर कानून की बात कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा। शाम 6:45 पर विविधा कार्यक्रम में वार्ता का विषय रहेगा आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियां। वार्ताकार हैं डॉक्टर नेहा चौहान। शाम 6:05 पर कृषि जगत में पशुओं का चारा प्रबंधन विषय पर होगी चर्चा। भेंटवार्ता के अंतर्गत दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या व समाधान विषय पर डॉक्टर शिवशंकर कटियार, पूर्व सह प्राध्यापक पशुपालन एवं डेयरी विभाग RSM महाविद्यालय धामपुर से बातचीत करेंगे हिमांशु रंजन। शाम 5:15 पर युवा श्रोताओं के लिए ज्ञान और मनोरंजन का कार्यक्रम होगा युवाणी, जिसमें क्रम रहेंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, 80वें स्वतंत्रता दिवस के रन अप पर विशेष कार्यक्रम। इसके साथ ही विश्व युवा दिवस पर विशेष परिचर्चा का विषय रहेगा नई सोच पुराना आसमान। शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में पेयजल समस्या को दूर करने हेतु शुरू की गई सरकारी योजना हर घर नल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना की जानकारी दी जाएगी। लोक धारा कार्यक्रम में दिन के 1:45 पर आज आप सुनेंगे अनीता रावत के गाए हुए कड़वाली लोकगीत। दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम होगा घर संसार। घर संसार कार्यक्रम में आज चर्चा अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस पर होगी। भेंट वार्ता के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य में आशा कार्यकर्ताओं का महत्व और दायित्व विषय पर आशा संगिनी नीता रानी से बातचीत करेंगी अंजना। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम होगा शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित ब्रज नारायण का सरोद वादन, राग मुल्तानी, आलाप विलंबित और द्रुतगत 3 ताल में। तबले पर संगत देंगे सुखविंदर सिंह नामधारी। 12:30 पर फिल्मी गीतों का आनंद ले सकते हैं आप कार्यक्रम मिडडे मेलोडी में। शाम 6:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा छाया गीत। श्रोताओं, sandesh.com। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम होगा व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित, दोपहर 2:30। तो ये तो थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 12:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित ब्रज नारायण का सरोदवादन, राग मुल्तानी, आलाप विलंबित और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध। तबले पर संगत कर रहे हैं सुखविंदर सिंह नामधारी।

0: यानी 955 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 12:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिडडे मेलोडी। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के इस मिडडे मेलोडी कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम लेकर विश्वास द्विवेदी। श्रोताओं, कुछ गीत सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक उतर जाते हैं। कुछ नगमे बीते हुए खूबसूरत लम्हों की याद दिला जाते हैं। गीतों की मिठास यानी मेलोडी हमारे दुख भरे जीवन में या स्ट्रेस को दूर करने में बहुत काम करता है। तो इसी तरह से हम ऐसे ही गीत लेकर, सदाबहार नगमे लेकर इस कार्यक्रम में हाजिर होते हैं मिडडे मेलोडी। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम का पहला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म अनुरोध से। आवाज किशोर कुमार की है, गीत लिखा है आनंद पक्षी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।
1: Mm-hmm.

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: इस संदेश के बाद फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मिट्टे मेलोडी। मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो कहानी बन जाती है, गोरा सा मन भी किसी के प्यार की जिंदगानी बन जाता है। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आता है जो हमारे मन के खाली पन्नों पर प्यार के खूबसूरत रंग भर देता है। अनुरोध फिल्म का ये गीत आइए सुनते हैं। आवाजें हैं किशोर कुमार की और आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, घुंघरुओं की छन छन जब कानों में पड़ती है तो ऐसा नहीं कि उससे किसी को परेशानी होती होगी। कानों में रस खोलती है, घुंघरुओं की छन छन अलग अलग तरह से होती है। जब पायलिया बजती है उसकी धुन, जब अभी आप देख रहे थे सावन का महीना चल रहा है, शिवरात्रि पर्व पर लोग कांवड़ लेकर दूर दूर से, यानी हरिद्वार से काफ़ी दूर दूर तक लेकर जा रहे थे, उन्होंने पैरों में घुंघरू बांधकर वो चल रहे थे, और वो जो घुंघरू की आवाज़ कानों में पड़ती थी उसमें श्रद्धा का भाव था। इसी तरह प्रेमी प्रेमिका के लिए इसका अलग अंदाज होता है, अलग अर्थ होता है। आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है अर्पण, आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की, गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है।

अर्पण फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों को। मिड डे मेलोडी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म फर्ज से। आवाज मोहम्मद रफी की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दिल चुराने वाले से कोई शिकायत भी कैसे करे, दिल चुराने वाले से कोई शिकायत भी कैसे करे, वो सामने आए तो फिर मोहब्बत की ही बातें करें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म यादों की बारात से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है मदरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है हरदीप बर्मन ने।

राम राम। नमस्कार बहनों, भाई कैसी हो आप सब? भी उम्मीद करे हूँ अपने घर परिवार और खेती बाड़ी के काम काज के बीच आप सब बढ़िया होवोगी, राजी खुशी होवोगी। तो बहनों, आप सब सुन रही हो अपना प्रिय कार्यक्रम घर संसार, और मैं हूँ आपकी अपनी साथी तनप्रीत। और आज फिर से बहनों, आप सबके खातिर गांव घर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें, कुछ काम की जानकारियां और ढेर सारी अपने मन की बातें। तो बहनों, चूल्हा चौका होवे या खेत खलिहान का काम, थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालना तो बहुत जरूरी होवे ना बहनों। तो रेडियो की आवाज बढ़ाओ बहनों और जुड़ जाओ मेरे साथ, क्योंकि बहनों घर परिवार तो तभी खुशहाल बन सके है कि जब मेरी बहनें स्वस्थ होवेंगी, जागरूक होवेंगी और आत्मनिर्भर होवेंगी। तो चलिए बहनों, शुरू करें हैं आज का अपना घर संसार, लेकिन उससे पहले सुने हैं एक जरूरी संदेश।

0: चंदन का एहसास।
1: बहनों फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम घर संसार में। तो बहनों आज की चर्चा है हमारे देश और समाज की सबसे बड़ी ताकत यानी कि बहनों हमारे युवा, हमारे बच्चे। बहनों हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा है। युवा केवल बहनों उम्र का एक पड़ाव ना है बल्कि जोश, हिम्मत, नई सोच और कुछ कर गुजरने का नाम होवे। तो बहनों गांव की गलियों से लेकर शहरों तक हमारे नौजवान, हमारे बच्चे अपनी मेहनत और हुनर से आज आगे बढ़ रहे। बहनों युवा किसी भी देश की जान और उसकी उम्मीद होवे। गांव का अगर कोई नौजवान बहनों ये ठान लेना कि गांव की तो गांव की तस्वीर बदल सके है। खेत खलिहान हो या पढ़ाई लिखाई होवे, रोजगार होवे या फिर साफ सफाई, हर काम में बहनों आज युवाओं की भागीदारी बहुत ही जरूरी है। तो बहनों हमें कुछ भी काम हो, चाहे घर का काम हो, कुछ भी काम हो, तो हम अपने बच्चों को ही तो बोले हैं। तो ऐसे ही बहनों देश भी तभी तरक्की कर सके है जब उसका युवा, उस देश का युवा जो है वो आगे बढ़े। और बहनों अब तो खेती बाड़ी भी पहले जैसी ना रही, भी नई नई तकनीकें, आधुनिक मशीनें, मौसम की जानकारी और मोबाइल से मिलने वाली कृषि जानकारी, इन सब ने तो खेती के तौर तरीके ही बदल दियो। बहनों भी हमारे पढ़े लिखे बच्चे इन तकनीकों को माता पिता और किसानों तक भी पहुंचावे हैं। तो बहनों आज बहनों युवा नई तकनीक को अपनाकर पशुपालन को व्यवसाय बना रहे, ऑनलाइन के माध्यम से अपने उत्पाद बेच रहे, छोटे छोटे स्वरोजगार शुरू कर रहे। तो युवा हर क्षेत्र में बहनों आज आगे बढ़ रहे। और तो और बहनों आज युवा मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे। ये घर बैठे बच्चे जो हैं वो अब ऑनलाइन मतलब यानी मोबाइल की सहायता से घर बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे और तरह तरह की चीज़ें सीख रहे बहनों। हाँ बस एक

0: जरूर याद रखे बहनों बच्चों मेरे, कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो समझदारी से करें, समय बेकार की चीजों में ना गवाएं। तो बहनों की तरक्की तो तब तक पूरी ना हो सकती जब तक हमारी बेटियां आगे ना बढ़े, है ना बहनों। उनकी भूमिका भी किसी से कम ना है। शिक्षा और हुनर के साथ गांव की बेटियां आत्मनिर्भर बन रही, अपने फैसले खुद ले रही हैं। बहनों भी कोई भी बात हो, अब बहनें जो हैं, मेरी बच्चियां जो हैं, वो आज अपने फैसले खुद ले रही और परिवार व समाज की तरक्की में बराबर की भागीदारी निभा रही। यही तो असली युवा शक्ति हो बहनों। और मेरी बहनों, युवाओं को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ किसका हो बहनों? भी मेरी बहनों का। जी हाँ बहनों, अगर आप ही अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ावेंगी तो कौन बढ़ावेगा? उन्हें हिम्मत दीजिए, उन्हें कहिए कि तुम्हें ही कल का युवा, तुम्हें ही इस देश की पहचान बननी है। तो आज के बच्चों को बहन केवल सिर्फ रोजगार ही ना, बल्कि अच्छे संस्कार, सही मार्गदर्शन और परिवार का साथ भी बहुत जरूरी होवे। मैंने अगर माता पिता बच्चों की बातें जो हैं वो ध्यान से सुने, है ना, और उनको समझें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका दें, तो बच्चे बहुत कुछ कर सके हैं बहनों। बहनों आज ज़रूरत है हमारे युवा जो हैं वो नशे, गलत संगत और निराशा से दूर रहें, और शिक्षा, खेल, हुनर, खेती, स्वरोजगार और समाज सेवा जैसे सकारात्मक रास्तों पर चलें। तो आइए बहनों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को रोकेंगे नहीं, बल्कि उन्हें सही राह दिखाकर आगे बढ़ावेंगे और बेटा बेटी दोनों को बराबर का अवसर देंगे। क्योंकि बहनों, जब युवा जागेगा तब परिवार आगे बढ़ेगा और गांव जो है वो हमारा खुशहाल बनेगा। तो बहनों, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत हो में है ना। तो बहनों, युवा अगर अपने गांव में स्वास्थ्य के संदेश को आगे बढ़ावे ना, तो एक जागरूक और स्वस्थ समाज के भी बनाने में भी हमें मदद मिल सके है। तो चलिए बहनों, इसी विषय पर थोड़ी और जानकारी आपको देने के लिए आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता, और विषय है बहनों ग्रामीण स्वास्थ्य में आशा वर्क कार्यकर्ताओं का महत्व और दायित्व। और जानकारी दे रही हैं हमें नीता रानी और उनसे बातचीत कर रही हैं अंजना। तो चलिए बहनों, मिलकर सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: थारा स्वास्थ्य क्रम के अंतर्गत आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नीता रानी को। आप हैं आशा संगनी। तो नीता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है।
1: तो नीता जी, सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय ही जानना चाहेंगे। आशा संगनी का कार्य होता है वो किस प्रकार से आप संभालती हैं?
2: मेरा केंद्र है जटपुरा बोंडा।
1: तो जैसे आपका जटपुरा बोंडा है, तो केवल वही वही आप इस कार्य को देखती हैं या फिर किस प्रकार से आशाओं को?
2: नहीं, मेरे पास तीन उपकेंद्र हैं। जटपुरा बोंडा है, राहतपुर है और प्रेमपुर है, जिसके अच्छा। अंतर्गत लगभग 12-13 गांव आते हैं और उन गांव में लगभग 22 आशा बहने हैं जिनके ऊपर मैं काम करती हूँ, जिनको मैं देखती हूँ, जिनका रिकॉर्ड देखती हूँ।
1: अच्छा नीता जी, जैसा कि आज हमारा विषय है ग्रामीण स्वास्थ्य में आशा कार्यकर्ताओं का महत्व और दायित्व, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप जैसे कि आशा संगनी हैं, आपका क्या का कार्य है आशाओं के संदर्भ?
2: हमारा बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि हमारी आशा बहनें गांव में करती हैं, क्षेत्र में जाकर के, घर घर जाकर के। जैसे कोई भी प्रोग्राम चलता है, किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम चलता है, तो वो घर घर जाकर के दस्तक देती हैं, लोगों को बताती हैं, उसका प्रचार प्रसार करती हैं।
1: जैसे आशाएं आपके अंडर में कार्य करती हैं, तो आप उनको किस प्रकार से दिशा निर्देश देती हैं कि वो कार्य सुचारू रूप से कर सके?
2: समय समय पर जैसे योजनाएं होती हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। जो भी विभाग से हमें सूचना मिलती है, सीधे आशाओं को वो सूचना नहीं दी जाती, पहले सूचना हमारे पास ही आती है, फिर हम उसका प्रोग्राम बनाते हैं, कार्यक्रम एक तरह से निर्धारित करते हैं, उसके बाद आशाओं को बताते हैं कि आप लोगों को इस तरह से काम करना है।
1: अच्छा, तो उसके लिए मीटिंग वगैरह बुलाते हैं?
2: हाँ जी, उसकी हम उपकेंद्र वाइज मीटिंग बुलाते हैं उपकेंद्रों पर, तो वहीं पर सारी आशा आ जाते हैं। जैसे जटपुरा है, वहाँ 9-10 आशाएं हैं, वहीं पर आ जाती हैं, उनको बताते हैं। राहतपुर है, तो हम उपकेंद्र वाइज ही उनकी मीटिंग रखते हैं और वहीं पर उनको सारा समझाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ट्रेनिंग से उनको देते हैं।
1: अच्छा, ट्रेनिंग के रूप में आप उनको समझाती हैं, और उन्हें किस प्रकार से आप समझाती हैं और उनका क्या कार्य होता है गांव में जाकर के?
2: कार्य जैसे अलग अलग कार्य होता है, जैसे इस समय अभी हमारा पीछे जुलाई में चल रहा था संचारी और दस्तक अभियान, वो हमारा 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चला। तो आशा बहने घर घर जाकर,
1: जी
2: हर घर में जाकर वहाँ बता रही थी, हाथ धोना, साफ सफाई रखना और कूड़ा कचरा देखना,

0: कहीं पड़ा तो नहीं है, इकट्ठा तो नहीं हो रहा, पानी तो नहीं भरा हुआ कहीं।
1: अच्छा, ये सब भी देखती हैं
0: हाँ
1: आशाएं।
0: जी,
1: अच्छा, और जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो हमारे नन्हे शिशु हैं उनके बारे में?
0: हाँ जी, वो उनको भी देखती हैं, जैसे गर्भवती का पता करना, अब वो फील्ड में जा रही हैं संचारी और दस्तक दे रही हैं, घर जाके दस्तक दे रही हैं, तो वहां वो भी पूछ रहे हैं कि कोई गर्भवती तो नहीं है। नवविवाहित महिलाएं होती हैं, उनसे पूछती हैं पूरा कि आखिरी बार तारीख कब थी, क्या था, वो सारी उसकी जानकारी लेकर के और पंजीकरण करती हैं अगर कोई गर्भवती मिलती है तो।
1: यानी आशाओं का कार्य है कि गांव में घूमना, हर जानकारी को आप तक पहुंचाना कि
0: जी
1: साफ सफाई कैसी है, शिशु बीमार है या कुपोषित है, या फिर वहां पर कितनी गर्भवती बहनें हैं, या फिर किशोरियां भी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा
0: हाँ जी,
1: जानकारी।
0: किशोर किशोरियां हैं उनके बारे में भी बताया जाता है, उनको पूरा बताती हैं कि उनको किस तरह से अपनी माहवारी पे तैयारी करनी है, क्या करना है, किस तरह से पैड इस्तेमाल करना है या कपड़ा इस्तेमाल करना है, क्योंकि गांव में तो लगभग कपड़ा ही इस्तेमाल करती थी।
1: अच्छा,
0: तो अब आशा उनको समझाती हैं, तो वो धीरे धीरे रूटीन पे आ रही हैं और वो पैड का ही इस्तेमाल करती हैं।
1: जैसे अभी आपने बताया कि किशोरियों के लिए सारी व्यवस्था वो देखती हैं, तो कभी कभी उनके पास वो सुविधाएं नहीं होती, तो क्या उन सुविधाओं को भी उपलब्ध कराती हैं आप?
0: हाँ जी, उन्हें उपलब्ध करवाती हैं, आशाओं को सैनिटरी नैपकिन मिलता है हॉस्पिटल से।
1: अच्छा, किशोरियों के लिए तो ये आपने बताया कि सैनिटरी पैड वगैरह वो उपलब्ध कराती हैं। गर्भवती महिलाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से वो गर्भवती महिलाओं को समझाती हैं और उनको अस्पताल तक लेकर के आती हैं?
0: हाँ, वो सबसे पहले उनका पंजीकरण करती हैं, पंजीकरण के बाद फिर 6 जांचें होती हैं उनकी ग्राम स्तर पर, जो भी उपकेंद्र पे जहाँ टीकाकरण होता है वहां ले जाकर उनको उनकी जांचें करवाती हैं,
1: अच्छा,
0: और कंपलसरी 1-2 जांचें यहाँ पर भी करवाई जाती हैं, सरकारी अस्पताल में लाके करवाती हैं, और 3 अतिरिक्त जांचें भी होती हैं, जैसे कोई HRP महिला है, हाई
1: अच्छा
0: रिस्क प्रेगनेंसी,
1: जी,
0: तो उसके अतिरिक्त 3 जांचें होती हैं, तो वो अस्पताल में लाकर करवाती हैं आशा।
1: अच्छा, जैसे वो अस्पताल में लाकर के करवाती हैं, तो वो जो वाहन का प्रयोग करती हैं वो सरकारी वाहन होता
0: हाँ,
1: है
0: सरकारी
1: या
0: वाहन का
1: फिर निजी
0: प्रयोग,
1: वाहन?
0: हाँ सरकारी वाहन का प्रयोग करती हैं।
1: जी, अच्छा, निजी।
0: यदि कोई अपनी बाइक वगैरह से आना चाहे तो वो आ सकता है, वैसे वो एम्बुलेंस बुलाती हैं 102 नंबर,
1: जी,
0: और उसके द्वारा वो गर्भवती को लेके आती हैं जांच के लिए।
1: अच्छा, अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए जो क्रिटिकल हो, तो उसके लिए वो किस तरह से उपस्थित होती हैं वहां पर, उनका आशा का क्या दायित्व होता है उस गर्भवती बहन के लिए?
0: उसको वो सबसे पहले तो अपना नंबर देके रखती हैं,
1: अच्छा,
0: फोन नंबर देके रखती हैं कि भाई कोई भी तुम्हें परेशानी होती है, किसी भी तरह की होती है तो मुझे जरूर बता देना
1: अच्छा,
0: और मैं तुरंत आऊंगी। तो वो परेशानी होती है तो फोन कर देते हैं, कई बार फोन नहीं मिलता, आशा गांव में ही रहती है तो उसके घर भी जाकर वो बुला के ले आते हैं कि भाई
1: अच्छा
0: चलो इस तरह से हमें दिक्कतें हो रही हैं,
1: हाँ,
0: तो आशा आती है, एम्बुलेंस को फोन करती है, एम्बुलेंस जाती है और वो एम्बुलेंस के द्वारा ही सरकारी अस्पताल में ला के दिखा देती है।
1: अच्छा, नीता जी, कभी आपके सामने ऐसी समस्या भी आई है कि आशाओं ने आकर के शिकायत की हो कि भाई गांव में तो 3 या 4 महिलाएं हैं जो गर्भवती है और एक साथ उनके साथ में कोई समस्या आ गई है, तो ऐसे समय में क्या करते हैं आप?
0: हाँ, इस तरह की शिकायतें कभी कभी आ जाती हैं कि एक के साथ में कोई परेशानी हुई, बाय चांस वो सरकारी अस्पताल में लेके आई, वहाँ उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई किसी कारण से,
1: अच्छा,
0: तो उसको रेफर कर दिया बिजनौर, तो वो अगले के ऊपर उसका असर पड़ता है कि नहीं, वो तो रेफर कर देते हैं, हमें तो बिजनौर नहीं जाना,
1: अच्छा
0: तो वो हम उनको समझाते हैं, हम
1: अच्छा अच्छा
0: आशाओं के साथ जाते हैं, भाई रेफर तो इसलिए किया कि उसे परेशानी थी, हर एक को तो रेफर भी नहीं किया जाता, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो यहाँ पे हो जाएगी,
1: अच्छा
0: कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो वो समझ जाते हैं। फिर
1: अच्छा
0: आशा के समझाने में और हमारे समझाने में अंतर होता है, एक तो बाहर वाले की बात ज्यादा मानते हैं लोग, गांव वाले की इतनी नहीं मानते,
1: अच्छा,
0: तो वो समझ जाते हैं और फिर आ जाते हैं,
1: मतलब कहना मान लेते हैं।
0: मान लेते।
1: क्या एक ही आशा एक गांव में होती है?
0: नहीं, एक गांव में एक आशा तो नहीं होती, वो आबादी के हिसाब से होती है,
1: अच्छा
0: जितनी वहां की आबादी होती है, मान लो एक गांव की आबादी 4,000 है तो 4 आशा वहां पे होंगी,
1: अच्छा 1,000
0: 1,000 की
1: पर।
0: आबादी पे एक आशा होती है।
1: अच्छा, क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए 4,000 आबादी, आपने 4 गांव बताए कि उसे अगर आवश्यकता पड़े दूसरी आशा की सहायता के लिए, तो वो पुकार सकती है उसको
0: हाँ बिल्कुल, बुला सकती है,
1: कि भाई दूसरे गांव से आप आ जाइए, थोड़ा मुझे परेशानी है?
0: हाँ वो कह देता, हमारा नंबर भी उनके पास है,
1: अच्छा, मरीज को कोई परेशानी नहीं
0: कोई
1: होती?
0: परेशानी मरीज को नहीं होती।
1: शिक्षा का स्तर अगर कहीं कम है तो शायद समस्या आती हो कि भाई हम गांव में ही डिलीवरी कराएंगे, हम
0: हाँ, इस तरह
1: अस्पताल
0: की
1: में नहीं
0: समस्या होती
1: जाएंगे
0: है
1: या
0: जो
1: फिर हम
0: पुरानी,
1: टीकाकरण नहीं
0: हाँ
1: कराएंगे।
0: हाँ हाँ जो पुराने बुजुर्ग महिलाएं हैं जिस परिवार में वो होती हैं वहां पे ये समस्या आती है हमारे साथ,
1: अच्छा,
0: लेकिन

0: कभी कभी ये चुनौती भी आपके सामने खड़ी होती होगी कि अरे हमें दूध नहीं पिलाना, या फिर उस महिला को दूध ना आ रहा हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करती हैं? उन्हें कैसे समझाती कि भाई जो शुरू का गाढ़ा पीला दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, और कुछ बहनों को तो उतर जाता है तो वो पिलाना पसंद नहीं करती, और कुछ बहनों के दूध ही नहीं आता, तो ऐसे में क्या राय देती हैं आप
1: उनको? यही है, एक तो शिशु के जन्म से लेकर और 42 दिन तक शिशु की देखभाल करना आशा का दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसका कार्य भी है, क्योंकि आशा का मेन कार्य है माँ और बच्चे की देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, आशा उसके साथ होती है जब डिलीवरी करवाती है,
0: अच्छा,
1: तो आशा उसको वहीं पर दूध पिलवा देती है कह करके, डॉक्टर भी कहती है उनको, तो वो उस कहने से, डॉक्टर के कहने से, आशा के कहने से मना नहीं कर पाती, अगर कोई मना करने वाली भी होती है तो वो अस्पताल के अंदर ही 1 घंटे के अंदर अंदर उसको स्तनपान करवा देती है।
0: अच्छा, यानी आपकी राय में यह है कि शिशु को माँ का दूध जरूर मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल, सर्वोपरि है, वो ही उत्तम आहार है।
0: के सामने कोई चुनौती ऐसी बड़ी आई हो जिसको हैंडल करना, जिसका सामना करना बहुत मुश्किल पड़ा हो आपको, क्योंकि आप इतनी आशाओं को समझाती हैं, और आशाएं जब गर्भवती महिलाओं को लेकर के आती हैं तो कोई ना कोई समस्या आती होगी, तो उस समय आप कैसे अपना दायित्व निभाती हैं?
1: हाँ, समस्या तो आती है, कई बार हम गांव में जाते हैं, आशा एम्बुलेंस भी बुला लेती है, उस गर्भवती के जो घर वाले होते हैं वो लेके जाने को तैयार नहीं होते कि नहीं हम नहीं जाने के अस्पताल लेके, हम तो घर में ही डिलीवरी करवाएंगे।
0: अच्छा,
1: तो उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ता है, कभी कभी हमें ग्राम प्रधान का भी सहारा लेना पड़ता है,
0: अच्छा,
1: कभी कोई पंचायत सहायक सदस्य है वो, उन सबका किसी ना किसी का हम सहयोग ले लेते हैं तो वो लोग मान जाते हैं।
0: अच्छा, तो इस तरह से आप प्रभावशाली व्यक्ति से उनको समझा करके
1: जी
0: उनको अस्पताल तक जरूर पहुंचाती
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, तो आशाएं गर्भवती स्त्री का भी ध्यान रखती हैं, बच्चों का भी ध्यान रखती हैं। यदि 1 साल से 7-8 साल तक का बच्चा है और वो कुपोषित है, क्या उसका भी ध्यान रखती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, कुपोषित बच्चे का ध्यान रखती है, अगर बच्चा कुपोषित है
0: उसके प्रति क्या जिम्मेदारी होती है आपकी?
1: तो उसको खाने पीने की सलाह तो देती ही देती है कि इस तरह से उसका पोषण करना है, वो सारी बताती है उसको।
0: अच्छा, उसका पता कैसे लगता है, क्या वेट वगैरह लेती हैं?
1: हाँ वेट भी लेती है उसका, आशा
0: अच्छा,
1: वेट तो पहले ही दिन से करती है।
0: अच्छा,
1: जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो अस्पताल में वजन होता है,
0: हाँ,
1: फिर तीसरे दिन विजिट करने जाती है आशा, माँ और बच्चे को चेक करती है कि माँ को कोई खतरे का लक्षण तो नहीं है,
0: अच्छा,
1: अधिक ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या स्तनपान में गांठ तो नहीं हो रही है,
0: अच्छा,
1: या बिवाई तो नहीं फट रही है स्तन में,
0: हाँ,
1: या किसी सिर में दर्द तो नहीं है बहुत तेज,
0: अच्छा,
1: चक्कर तो नहीं आ रहा, धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आमतौर पर लक्षण हो जाते हैं कई बार HRP महिला को,
0: अच्छा,
1: तो इन सब की जांच करती है, अगर किसी को कोई लक्षण मिलता है गंभीर खतरे का तो वो उसको तुरंत रेफर करती है 102 बुला करके, अगर बाय चांस 102 नहीं मिलती है तो 108 को भी बुला लेती है और उसको रेफर करती है अस्पताल, क्योंकि उसे वो खतरे के लक्षण होते हैं, उसमें माँ की जान भी जा सकती है।
0: अच्छा,
1: इसी
0: और
1: तरह
0: यदि
1: से
0: शिशु को कोई परेशानी है तो भी?
1: इसी तरह से शिशु को भी परेशानी होती है बहुत सारी, मान लो उसकी नाभि नाल से ब्लड जा रहा है या मवाद निकल रही है, पस हो रहा है, तो उसको भी रेफर करती है, मान लो बच्चा रोए जा रहा है, चुपी नहीं हो रहा है, उसको माँ स्तनपान भी करा रही है वो कर ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो उसको भी रेफर करना पड़ता है, या उसको कहीं दर्द हो रहा है बच्चे को, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, पेट पे अफारा आ रहा है, या उसके शरीर पे बहुत सारी फुंसी हो रही है, या कमर में एक बड़ा फोड़ा है, मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं, अगर कोई भी एक परेशानी उसको दिखाई देती है कि हाँ भाई ये गंभीर समस्या है तो उसको तुरंत एम्बुलेंस बुला के रेफर कर देती है।
0: जी नीता जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि सरकार की योजनाएं भी बहुत सारी होती हैं, तो ऐसी कौन कौन सी इस समय योजनाएं चल रही हैं जिनको आप उन तक पहुंचाती हैं?
1: हाँ, समुदाय में पहुंचाने के लिए बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सबसे पहली योजना तो आयुष्मान भारत,
0: अच्छा,
1: जो कि आजकल हर एक की जुबान पे होता है,
0: हाँ,
1: कि भाई आयुष्मान का कार्ड बनवाना है
0: जी,
1: जिसमें 5 लाख का इलाज फ्री होता है।
0: अच्छा,
1: हम लोग भी बनाते हैं फील्ड में जाकर के, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो गांव गांव में खुले हुए हैं जिससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है, वहां पे इलाज हो रहा है लोगों का फ्री में, और जननी सुरक्षा योजना हो गया, जननी शिशु सुरक्षा योजना हो गया।
0: जी
1: जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत तो सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाने पर 1400 रुपए का लाभ मिलता है।
0: अच्छा, 1400 रुपए का लाभ मिलता है, ये
1: हाँ,
0: इसलिए मिलता है कि जिससे कि वो
1: उसके
0: धात्री
1: खाने पीने
0: महिला
1: की
0: है
1: हो जाए,
0: तो
1: धात्री
0: वो
1: महिला
0: अपने खाने पीने का वो ध्यान रखे
1: हाँ।
0: और शिशु को स्तनपान अच्छे से करा
1: अच्छे
0: सके।
1: से करा सके
0: जी,
1: शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत होता है, यदि कोई बच्चा बीमार होता है, कुपोषित होता है, या कोई भी समस्या बच्चा को हो जाती है 2 साल तक, तो एम्बुलेंस उसके 2 साल तक

0: साल तक भी एम्बुलेंस उसके लिए बिल्कुल फ्री है।
1: बहुत अच्छी बात।
0: जच्चा बच्चा के लिए 102 नंबर इसीलिए लगाई हुई है सरकार ने कि वो बिल्कुल फ्री है, कोई उसका चार्ज नहीं होता।
1: अच्छा नीता जी, कभी ऐसा महसूस हुआ कि बड़ा फक्र महसूस हुआ कि मैं ये कार्य कर रही हूँ और मेरे कारण इस व्यक्ति की जान बची है, मैंने इसको सही जगह पर पहुँचाया है, उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे जिससे कि आपका ये संदेश जो श्रोता सुन रही है उन तक पहुँचे?
0: बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। मैं एक दिन, अभी एक दो महीने पहले की ही बात है,
1: अच्छा,
0: अपने क्षेत्र में गई हुई थी, आशा के क्षेत्र में, उसको देखने के लिए बच्चों की विजिट करने गई थी। तो जैसे ही मैं घर में पहुंची तो सामने वाले घर से एक बुजुर्ग महिला आई निकल के,
1: हाँ?
0: और कहने लगी, रोज तीसरे दिन ही आ जाती हो,
1: हाँ?
0: शर्म तो ना आ रही?
1: अच्छा
0: भाई, बुजुर्ग महिला थी, अगर हमें गलत भी बोल रही है तो कोई नहीं, हमारा तो काम है सुनने का। तो कहें, हाँ अब आई है यहाँ, क्या करना आई है? मैंने कहा, अम्मा हुआ क्या, आप बताओगी तभी तो हमें पता चलेगा। तो वो कहने लगी कि मेरा आदमी देखो कितना बीमार हो रहा।
1: अच्छा,
0: तो हमने कहा, अम्मा आयुष्मान कार्ड बना?
1: हाँ, अच्छा।
0: मैंने कहा, लाओ आधार कार्ड दो, आज मैं बनाऊंगी। तो मैंने वहीं बैठ के उनका आयुष्मान कार्ड बनाया। वो अम्मा बहुत खुश हुई बाद में,
1: अच्छा,
0: फिर कहने लगी, ये बेटी बड़ा अच्छा काम कर दिया। मैंने कहा, कोई नहीं अम्मा, आपको गुस्सा आ रहा था, कोई बात नहीं, गुस्सा आपका जायज था। मैंने कहा, अम्मा इसको 2 दिन बाद आप निकलवा लेना किसी को भी भेज के, जनसेवा केंद्र से। उन्होंने वो निकलवा लिया, बुजुर्ग जो उसको भर्ती करा, उनका इलाज फ्री में हुआ। और अब जब भी मैं गली से निकलती हूँ, बड़ा ही आशीर्वाद देती हैं, इतनी दुआएं देती हैं, तो मुझे उससे बड़ा सुकून मिला।
1: यानी आप अपने कार्य पर फक्र करती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो नीता जी, आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, अंत में आप हमारी श्रोता बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: बस मैं यही संदेश देना चाहूंगी, बरसात का मौसम चल रहा है, मच्छर मक्खी बहुत पैदा हो रहे हैं, अपने घर में साफ सफाई रखें, अगर कहीं पानी भरा हुआ है, गड्ढा हो रहा है, तो उसमें मिट्टी डलवा दें या उसमें तेल की बूंदे डलवा दें, किसी भी तेल की, चाहे वो देसी हो चाहे किसी भी तरह का तेल हो।
1: अच्छा,
0: आजकल मिट्टी का तेल तो मिल नहीं रहा,
1: हाँ,
0: तो वो डलवा दें, तो उससे भी मच्छर पैदा नहीं होंगे।
1: अच्छा,
0: अपने फ्रिज की प्रतिदिन सफाई करें, और छतों पे देखें, अगर कोई पुराना सामान कबाड़ पड़ा हुआ है, उसमें पानी भर रहा है, तो उसकी साफ सफाई कर दें, जिससे मच्छर पैदा ना हो, क्योंकि ये हमारा अगस्त सितंबर महीना ऐसा होता है, इसमें डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ज्यादा फैलते हैं, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखें, जिससे बीमारी कम।
1: बहुत सुंदर संदेश। तो नीता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी श्रोता बहनों को दी, ग्रामीण बहनों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: बहनों। अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, ग्रामीण स्वास्थ्य में आशा कार्यकर्ताओं का महत्व और दायित्व विषय पर, और जानकारी दे रही थी नीता रानी और उनसे बातचीत कर रही थी अंजना। बहनों कैसी लगी आपको जानकारी? तो बहनों, जिसमें हमने ये जाना कि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी पहुंचाने में हमारी जो आशा कार्यकर्ताएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावें, वे परिवार के स्वास्थ्य की कितनी चिंता करें, बीमारियों से बचाव के खातिर जागरूक करें हैं, और जरूरत पड़ने पर सही समय पर इलाज तक पहुंचाने में भी हमें मदद दे हैं। तो चलिए बहनों, अब बहुत सारी आपसे बातचीत भी हो गई और बहुत सारी आपको जानकारियां दे दी, क्यों ना अब थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। तो चलिए मिलकर सुने एक प्यारा सा लोकगीत।

बहनों, अभी आप सुन रही थी लोकगीत। उम्मीद करे हूँ कि मेरी बहनों को पसंद आया होगा। तो बहनों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और बहनों, आज चर्चा का अगला विषय है हमारा विश्व हाथी दिवस। तो बहनों, हाथी जो है वो हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को हर साल मनाया जाए है। तो बहनों, विश्व हाथी दिवस जो हाथी जो है बहनों के ऐसा विशालकाय जीव है जिसे देखकर बच्चों से लेकर बहनों बड़ों तक सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाए। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं हाथी की। और बहनों, हाथी सिर्फ जंगल का एक बड़ा जानवर ना है, वह जंगल के पर्यावरण को संतुलित रखने में बड़ी भूमिका निभावे है। बहनों, हाथी पेड़ों की डालियों और फल खाता है और बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और इस तरह से बहनों, जंगल में नए पेड़ पौधे उगने में भी मदद मिले है। जंगल और गांव बहनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जंगल सुरक्षित रहेंगे तो पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी और खेती सब पर अच्छा असर होगा। बहनों, जंगल में हाथियों के रहने की जगह कम हुए है होगी तो वे भोजन और पानी की तलाश में गांवों की ओर आ सके हैं। इससे बहनों, हाथी और इंसान दोनों के लिए परेशानी भी खड़ी हो सके है। तो बहनों, जंगल कटेंगे और हाथियों का प्राकृतिक घर छोटा होवेगा तो मानव हाथी संघर्ष बढ़ सके है। तो कभी हाथी खेत में आकर फसल को नुकसान भी पहुंचा सके हैं और कभी डर या गुस्से में इंसान हाथियों को भी नुकसान पहुंचा सके है। तो बहनों, जहां तक हो सके हाथियों से दूर रहें, मतलब किसी भी वन्य जीव से हमें जो है वो दूर रहना चाहिए। और बच्चों को भी समझाएं कि जंगली जानवरों के आसपास ना जाएं। अगर आपके गाँव में हाथियों का झुंड दिखे भी तो बहनों, आप सूचित करें और लेकिन अपने आप उनके ऊपर वार ना करें। और बहनों, ऐसे हम हाथियों को भी बचा सके हैं और अपने वन्य जीवों को भी बचा सके हैं और भी। और ऐसे ही हम बहनों सुरक्षित रह सके हैं। और आज बहनों, अब घड़ी की सुइयां जो हैं वो मुझे इशारा कर रही हैं कार्यक्रम संपन्न करने का। तो बहनों, आपको आज का कार्यक्रम कैसे लगा? आप हमें पत्र जरूर लिखिएगा बहनों। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन 2467-63। इसी के साथ बहनों, अपनी बहन तनप्रीत को दीजिए अनुमति। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार, मीडिया वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल

रहे हैं, 1:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब समय है लोक संगीत के कार्यक्रम लोक धारा का। आज हम लोक धारा कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अनीता रावत के गाए हुए गढ़वाली लोकगीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अनीता रावत के गाए हुए गढ़वाली लोकगीत।

0: इसी के साथ आज का लोकधारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोकधारा। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: The headlines. Home Minister Amit Shah says government ready to discuss all the issues, urges opposition to allow parliament to function. Disruption continues in both houses amid opposition's uproar on several issues. Prime Minister Narendra Modi urges youth to read autobiographies, warns against shortcut culture of

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे

0: लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि

0: मुझ में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं, कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
3: In Tiranga Yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts, each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is a symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
4: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैली

0: निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीति जैन।
1: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर के प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com। श्रोताओं, संदेश.com कार्यक्रम में आप हमें व्हाट्सएप मैसेज

4570782888। तो आगे चलते हैं कार्यक्रम में। सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उसे हमने लिया है फिल्म डर से। डर फिल्म तो आप सभी ने देखी होगी। आवाजें की बात करें तो आवाज उदित नारायण की है। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है शिव हरि ने। अब आप सोच रहे होंगे कि सारी बात तो हमने बता दी, गाने के बारे में भी बता दिया, फिल्म के बारे में भी बता दिया, गायक के बारे में बताया, गीतकार और संगीतकार के बारे में बताया, तो फिर प्रश्न क्या है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हमारा प्रश्न है कि इस फिल्म में ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किस अभिनेता पर फिल्माया गया था, और उस अभिनेता का नाम बताने के साथ आपको ये भी बताना है कि किस अभिनेत्री के लिए ये गीत गाया था। तो आइए सुनते हैं ये गीत और फिर हम आपके जवाब का करेंगे इंतजार।

देखिए गाना पूरा भी नहीं हुआ है और हमारे पास बहुत सारे जवाब पहुंच गए हैं एसएमएस के जरिए, तो श्रोताओं इस गीत के लिए जो हमने प्रश्न पूछा था, यह फिल्म का नाम इसका डर था, डर फिल्म के लिए उदित नारायण ने ये गीत गाया था और आनंद बख्शी के लिखे बोल हैं, शिव हरि ने संगीत दिया है और हमने प्रश्न पूछा था कि ये गाना किस एक्टर पर फिल्माया गया था। तो ये गाना किस एक्टर पर फिल्माया गया था ये हम बता देते हैं आपको, शाहरुख खान ये एक्टर थे, इन पर ये फिल्म गीत फिल्माया गया था और जूही चावला इसमें अभिनेत्री थी जिनके लिए ये गीत पर्दे पर इन्होंने गाया था। और इसके जवाब हमें बहुत सारे प्राप्त हुए हैं और हम आपको बताते हैं, हमारे पास जो इसका सबसे पहला जवाब आया वो हमारे नियमित श्रोता हैं, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और ऋतिक, बलवीर सिंह। तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, शाहरुख खान पर यह गीत फिल्माया गया था और शाहरुख खान ने जूही चावला के लिए ये गीत गाया था। और इसके अलावा हमें बहुत सारे जवाब सही मिले हैं ये हम आपको बताते हैं, मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। और एक और मैसेज हमें मिला है नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ का, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। सरायमीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रवीश अहमद राही, रुएश अहमद राही, रियेश रिशान अहमद राही, रुशेस अहमद राही, रुशमान अहमद राही और समस्त राही परिवार, इन्होंने भी हमें मैसेज भेजा है और सही जवाब दिया है, शाहरुख खान पर फिल्माया गया था और जूही चावला के लिए ये गीत उन्होंने गाया था पर्दे पर। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मैसेज हमें मिले हैं, एक और मैसेज हम पढ़ते हैं, ये है वीरगाम गुजरात से अजीत भावासार, प्रमिला भावासार, भावेश सुन्नी भावासार, तो इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं ये अगला गीत हमने जो लिया है वो है आप आए बहार आई, इस फिल्म से। गीत के बोल हैं मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। आनंद बख्शी ने गीत लिखा था और इसकी धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। श्रोताओं आपको ये बताना है कि ये गाना किन आवाजों में है, यानी इस गाने के लिए किस गायक ने अपनी आवाज दी है, कौन कौन से वो गायक हैं जिन्होंने इस में अपनी आवाज दी। फिल्म का नाम है आप आए बहार आई, तो लीजिए पहले सुन लेते

हैं ये गाना, और फिर आपके जवाब का हम करेंगे इंतजार, और जवाब हम फिर गाने के बाद सभी श्रोताओं के लिए पढ़ेंगे।

0: हमारे पास हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे जवाब भेजे हैं और अधिकांश जवाब सही हैं, हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक संदेश, उसके बाद हम आपको बताएंगे किन किन हमारे श्रोताओं ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। और नए श्रोताओं के लिए हम आपको बता दें कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078289457078, इस नंबर पर अपना मैसेज भेज सकते हैं जो प्रश्न हम करेंगे उसका जवाब देने के लिए। चलिए सुन लेते हैं एक संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: तो फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम संदेश.com में। और हमने आपसे पूछा था कि ये आप आए बाहर आई फिल्म का ये गीत जो हमने आपको सुनवाया, ये गीत गाया किसने था, कौन से गायक थे जिनकी आवाज़ इस फिल्म में इस गीत के लिए थी। हमारे पास बहुत सारे जवाब सही आए हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जवाब आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर का। और एक और मैसेज हमें मिला है, ये ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, साइना महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, मोहम्मद रफ़ी। और जी हां, इनके साथ लता मंगेशकर, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक और हमारे मैसेज मिला है जो है रवि ज्वालिया हरिद्वार उत्तराखंड से, इन्होंने लिखा है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर गायक हैं। मोहल्ला हलवाईदान खेरकोट जिला बिजनौर से हमें मैसेज भेजा है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर, इन्होंने भी सही जवाब दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

आवाज है। चकला बाजार था माना शहर पंजाब से, पप्पू राजा खुश दिल संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्माइल खुश दिल हसमुख लाल जिंदल, पूरा ही खुश दिल परिवार। एक मैसेज हमें मिला है, ये नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साईं गायकवाड़, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। एक और मैसेज हमें मिल रहा है, ये लिखते हैं कि फरमाइशी प्रोग्राम, तो ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, ये संदेश.com कार्यक्रम है, और इसमें हम आपसे गीत जो सुनवाते हैं उसके लिए एक प्रश्न पूछते हैं, बहुत आसान सा, और आपका जवाब जो हमें मिलता है वो हम अपने श्रोताओं को बताते हैं, आपका नाम बताते हैं। आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9457087888 94 570 78 288। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है दीवाना, आवाजें हैं कुमार शानू, अलका याग्निक और साथियों की। गीत लिखा है समीर ने और इसकी धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। अब प्रश्न क्या है, आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न क्या है, सारी चीज तो हमने बता दी, गायक भी बता दिए हमने और आपको गीतकार भी बता दिए, संगीतकार भी बता दिए। तो श्रोताओं, एक आसान सा प्रश्न है, आसान भी कह सकते हैं और कठिन भी कह सकते हैं। इस पे हमने आपको जवाब देना है कि जो नदीम श्रवण की जोड़ी है, इसमें नदीम और श्रवण के पूरे नाम क्या है। पहले सुन लेते हैं गीत, फिर आपका जवाब हमें इंतजार रहेगा, भेजिए अपना जवाब।

बिल्कुल सही जवाब, और इसके अलावा हमें बहुत सारे जवाब सही मिले हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, इन्होंने लिखा है, नदीम अख्तर सैफी और श्रवण कुमार राठौर। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश.com, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बज रहे हैं। आज की दोपहर प्रसारण सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी सायंकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेणु राजपूत का नमस्कार। श्रोताओं, जल हमारे जीवन के लिए अभिन्न और महत्वपूर्ण है। जल हमारे शरीर के लिए ऊर्जा स्रोत है तथा स्वास्थ्य और संतुलित विकास का मूलाधार है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते और न ही कोई जीवन रूपी रचना अस्तित्व में आ सकती है। इसके साथ ही जल हमें स्वच्छता, संपन्नता और समृद्धि की ओर ले जाता है। श्रोताओं, आज इसी संदर्भ में हम जानकारी दे रहे हैं। सरकार द्वारा पेयजल समस्या को दूर करने हेतु शुरू की गई सरकारी योजना हर घर जल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के बारे में। पहले जानकारी हर घर नल योजना के विषय में। श्रोताओं, यह योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को व्यक्तिगत नल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हर घर नल से जल योजना अगस्त 2019 में भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन हर घर जल का क्रियान्वयन कर रही है। जल राज्य का विषय है और इसीलिए घरों तक जल नल से जल पहुंचाने हेतु पाइप से जल आपूर्ति योजनाओं को योजना बनाने और उन्हें लागू करने की प्राथमिकता और जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्य दोनों की है। भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। श्रोताओं, इस योजना के अंतर्गत सरकार ग्रामीण इलाकों के हर घर तक पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना और

हर व्यक्ति को हर दिन कम से कम 55 लीटर पानी देना तथा गंदे पानी से होने वाली बीमारियां जैसे दस्त, पेट दर्द को कम करना और बीमारियों से बचना, साथ ही ग्रामीण महिलाओं को दूर दूर से पानी लाने की परेशानी से मुक्ति दिलाना और उनके समय को बचाना है। और श्रोताओं, जल जीवन मिशन के परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार किसी गांव के सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के बाद योजना का क्रियान्वयन करने वाला विभाग ग्राम पंचायत को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करता है और गांव को JJMIMIS पर हर घर जल के रूप में चिन्हित करता है। इसके बाद ग्राम सभा अपनी बैठक में कार्यपूर्णता रिपोर्ट को पढ़कर सुनाते हुए औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित करके स्वयं को हर घर जल गांव के रूप में प्रमाणित करती है। और श्रोताओं, जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित हर घर नल योजना अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से जमीनी स्तर पर उतर रही है। इस योजना के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को लाभ मिल रहा है। स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल अब सीधे नल कनेक्शन के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। और अब जानकारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के बारे में। श्रोताओं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है। इसे 2019 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना था। इस योजना को ही वर्ष 2019 में पुनर्गठन करके जल जीवन मिशन में समाहित कर लिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना, पानी के स्रोतों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखना और दूषित पानी से प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पानी की आपूर्ति करना, ग्राम पंचायत स्तर पर पानी की गुणवत्ता की जांच करने की क्षमता विकसित करना है। श्रोताओं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में विशेष परियोजना चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत केवल पाइपलाइन बिछाने के बजाय जल स्रोतों को मजबूत करने पर भी बहुत बल दिया गया है। जल योजनाओं को स्थानीय स्तर पर संचालित करने की अवधारणा को बढ़ावा मिला और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से जल जनित रोगों में कमी आई। श्रोताओं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना से पानी लाने में लगने वाला समय बचा, जिससे महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए अधिक समय मिलता है। जीवन स्तर में सुधार हुआ और ग्रामीण विकास को गति मिली। जल संकट कम होने से श्रम, उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिला है। श्रोताओं, आज जब भारत जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण जल सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस योजना के अंतर्गत कुओं, हैंडपंपों और अंततः व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से पानी की उपलब्धता में सुधार कर ग्रामीण स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्राथमिकता के आधार पर पेयजल से जोड़ा गया है। श्रोताओं, ग्रामीण पेयजल योजना के बारे में अधिक जानकारी आधिकारिक जल जीवन मिशन पोर्टल पर देख सकते हैं।

महेंद्र कपूर और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ ही देर बाद युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर। कृषि जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंटवार्ता, दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या व समाधान विषय पर डॉक्टर शिवशंकर कटियार से हिमांशु रंजन की बातचीत। आज शाम 7:32 पर कानून की बात आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज शाम 7:45 पर श्रोता आनंद लेंगे कुलवंत सिंह के गाए शब्द का। संसद समीक्षा रात्रि 8:00, चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में और अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कल सवेरे 6:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान श्रोता सुनेंगे सवेरे 6:30 पर। कर्मवीर सिंह का काव्य पाठ आप सुनेंगे 6:45 पर कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा गर्भवती महिला का आहार समय पर होगा, प्रातः 7:05 पर। कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा अमरूद के बागों में समसामयिक कार्य समय होगा 7:10

लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सुबह 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे नरेंद्र की गाई रागनी। कल दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत। लोक गीतों के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कल दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे रविंद्र वर्मा के गाए जौनसारी लोकगीत संदेश टू सोल्जर्स। कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे कल दिन में 4:00 हमारे दिल्ली केंद्र से। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम का प्रसारण होगा कल शाम 5:00। युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी कल शाम 5:15 पर। इसमें आप सुनेंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा विश्व अंगदान दिवस, साथ ही क्रम होगा गुफ्तगु कार्यक्रम का बस यूं ही मैं यूसुफा की मान्य से बातचीत। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत किसान भाई सुनेंगे शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा फसल बीमा योजना। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे कव्वाली, गायक कलाकार होंगे नुसरत अली और साथी। समय होगा कल शाम 7:32। संसद समीक्षा कल रात 8:00। कंट्री वाइड और इनसाइट्स रात्रि 9:30 पर। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात्रि 10:00। ये तीनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त उज्मा और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, और उज्मा का साथ देने हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी।
0: दोस्तों आज है वेडनेसडे और इस वेडनेसडे की इस प्यारी सी शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मजेदार से और दिल छू जाने वाले सेगमेंट।
1: जी हाँ दोस्तों, आज आप प्रोग्राम में सुनेंगे इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक खास परिचर्चा, जिसका विषय रहेगा नई सोच पुराना आसमां।
0: और इसी के साथ 80वें स्वतंत्रता दिवस के रन अप पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कौमा राम भीम जी के बारे में।
1: लेकिन उज्मा, उससे पहले मैं बता दूं अपने लिसनर्स को, हम बात कर लेते हैं अपने सेगमेंट बूझो तो जाने के बारे में।
0: बिल्कुल,
1: और दोस्तों, हमारा बूझो तो जाने का आज का सवाल जो आपसे रहेगा,
0: वो है सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था।
1: दोस्तों सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय पर हुआ था। और इसका सही जवाब आपको तो पता ही है, देना है हमारे FB पेज के कमेंट सेक्शन में जाकर, आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर। जब तक आप हमें भेजते हैं अपना सही जवाब, तब तक हम आपको लिए चलते हैं
0: 80वें स्वतंत्रता दिवस के रनअप पर विशेष कार्यक्रम मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें आज आप सुनेंगे कौमा राम भीम जी के बारे में। तो चलिए आइए सुनते हैं साथ में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त उज्मा और मेरे साथ हैं हमारे ही साथी सलोनी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं

0: राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रन अप पर विशेष कार्यक्रम और हमारे इस प्रोग्राम का नाम है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अपने लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और जिनकी आवाज आज भी एक खास संदेश के साथ याद की जाती है, जल जंगल जमीन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कोमा राम भीम जी के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने, आज हम बात करेंगे कोमा राम भीम जी के बारे में। अब दोस्तों, हम तो उनके बारे में जानते हैं, लेकिन क्या हमारा आज का जो यूथ है, हमारी जो आज की जनरेशन है, वो आखिर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे कोमा राम भीम जी, उन्हें कितना जानती है? यही जानने के लिए हम आ गए हैं स्टूडियो से बाहर और हम जानेंगे कि हमारा जो यूथ है वो उन्हें कितना जानता है। तो चलो सलोनी, हमारी एक साथी हमें मिल भी गई है, तो सबसे पहले चलो जान लेते हैं उनसे उनका नाम। तो दोस्त, क्या नाम है आपका? रमशा। कैसी हैं आप रमशा, क्या करती हैं आप?
1: स्टूडेंट हूँ।
0: स्टूडेंट है, क्या कर रही हैं?
1: बीएड।
0: बीएड कर रही हैं आप, बीएड की स्टूडेंट है। रमशा, मैं आपके सामने एक नाम लेने जा रही हूँ, आपको बताना होगा कि क्या आपने कभी उनका नाम सुना है या आप उनके बारे में जो भी जानती है वो आप हमें बताएंगी। ठीक है, तैयार है आप?
1: जी।
0: तो रमशा, ये नाम है, तो रमशा, क्या आपने कभी कोमा राम भीम जी का नाम सुना है? क्या आप जानती हैं उनके बारे में?
1: नहीं।
0: नहीं जानती आप? थोड़ा भी नहीं जानती?
1: नहीं।
0: चलिए कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। हम यही जानने स्टूडियो से बाहर आए हैं कि हमारे जो दोस्त हैं वो कोमा राम भीम जी को कितना जानते हैं। तो चलिए आपको इनके बारे में मैं बताती हूँ। कोमा राम भीम जी एक महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और गोंड जनजाति के नेता थे। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1901 को तेलंगाना के आदिलाबाद क्षेत्र के सखेपल्ली गाँव में हुआ था। उन्होंने अपने आसपास के आदिवासी लोगों को कई परेशानियों का सामना करते हुए देखा। जंगल उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन जंगल के इस्तेमाल पर कई तरह के कर और पाबंदियां लगाई गई थी। तो पता है आपको, इसी अन्याय के खिलाफ कोमा राम भीम जी ने आवाज उठाई थी। तो अब आप याद रखेंगी ना कोमा राम भीम जी को?
1: जी बिल्कुल।
0: कैसा लगा इनके बारे में जानकर?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: आपको क्या लगता है, क्या सीखना चाहिए उनसे?
1: इनसे सीखना चाहिए हर कोई, मतलब ऐसे होना चाहिए, और इनसे ये सीखना चाहिए अपने लोगों के लिए आवाज उठाओ,
0: अपने लोगों के लिए आवाज उठाई जाए।
1: जी
0: बिल्कुल। तो रमशा, हमें तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत शुक्रिया।
0: तो सलोनी, अब वक्त हो चला है कि हम अपने अगले साथी की तरफ बढ़े और उनसे जाने उनका नाम। तो दोस्त, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम रूहानी का है।
0: रूहानी का, बड़ा प्यारा सा नाम है आपका। रूहानी का, क्या करती हैं आप?
2: मैं बीए की स्टूडेंट हूँ।
0: बीए की स्टूडेंट है, कौन से ईयर की?
2: फर्स्ट ईयर।
0: फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है रूहानी का। आप इतिहास में रुचि रखती हैं?
2: हाँ, थोड़ी बहुत तो रखती हूँ।
0: तो फिर मैं आपके सामने एक नाम लेने जा रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आप उन्हें कितना जानती है। अगर उनके बारे में कुछ जानती हैं तो बताइएगा, और अगर नहीं जानती है तो भी हमें बताइए, क्योंकि हम यही जानने के लिए स्टूडियो से बाहर आए हैं। ठीक है
2: जी।
0: तो रूहानी का।
2: जी।
0: तो रूहानी का, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी कोमा राम भीम जी का नाम सुना है?
2: नहीं।
0: नहीं सुना? आप तो कह रही थी कि आपको थोड़ी सी रुचि है इतिहास में,
2: पर इनके बारे में तो नहीं सुना कभी।
0: नाम पहले नहीं सुना?
2: नहीं।
0: चलिए कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, और शायद आज के बाद आप इनका नाम कभी नहीं भूलेंगी और हमेशा याद रखेंगी। कोमा राम भीम जी जो थे वो आदिवासी समुदाय के अधिकारियों के लिए संघर्ष करने वाले एक नेता थे। उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश पता है आपको क्या था? जल जंगल और जमीन। इन तीन शब्दों में आदिवासी जीवन की एक पूरी कहानी छिपी है। जल यानी जीवन, जंगल यानी रोजगार और भोजन और संस्कृति, और जमीन यानी घर और अस्तित्व, यानी उनका अपना अस्तित्व। कोमा राम भीम जी चाहते थे कि आदिवासी लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और सम्मान मिले, यानी जो जंगल है, वो जो उनका घर है, उन पर उनका अधिकार रहे, किसी और बाहर वाले का ना हो। यानी जो जंगल है उनमें जो है ये बाहर के रूल्स ना चले, जो वहाँ के संसाधन है उन पर उनका पूरा हक हो। तो रूहानी का जी, अब आप हमें बताइए कि उनके बारे में आपको जानकर आपको उनका कौन सा संदेश सबसे अच्छा लगा?
2: जल जंगल जमीन।
0: आपको उनका ये संदेश सबसे अच्छा लगा, जल जंगल और जमीन?
2: जी।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा था सुनने में, जब मैंने पहली बार इनके बारे में पढ़ा था तो मुझे भी वाकई बहुत अच्छा लगा था। वैसे रूहानी का जी, आपको यही क्यों अच्छा लगा?
2: मुझे लगता है कि ये उनके लोगों के अधिकार के बात करता है।
0: मतलब आपको लगता है कि ये जो संदेश है ये उनके लोगों के अधिकार के बारे में बात करता है?
2: जी
0: बिल्कुल, और वाकई ऐसा है भी। रूहानी का जी, अगर आपको एक ही शब्द में उनके बारे में कुछ बोलना हो तो आप क्या कहेंगी?
2: बहुत ही बहादुर।
0: वाकई बहादुर तो वो खैर थे। तो रूहानी का जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो सलोनी, अब चलते हैं अपने तीसरे साथी के पास और सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। तो क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम अनु है।

0: जंगल और जमीन का नारा सुना है, ये संदेश सुना है आपने कभी?
1: जी हाँ, सुना तो है, थोड़ा बहुत याद है मुझे, मैंने सुना
0: आ
1: है।
0: क्या आप बता सकती हैं किनका है ये, अगर आपने सुना है तो?
1: नहीं, मुझे नाम तो नहीं पता ये
0: अगर
1: किनका
0: मैं
1: है।
0: आपको ऑप्शन दूं तो आप बता देंगी?
1: जी हाँ, ऑप्शन से शायद बता सकती हूँ मैं।
0: चलिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या फिर कोमाराम भीम।
1: शायद कोमाराम भी हो, इन्होंने
0: बिल्कुल,
1: दिया है।
0: आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये जो संदेश है, ये जो नारा है, ये संदेश उन्हीं का है, कोमाराम भीम जी का। तो आप और क्या जानती हैं कोमाराम भीम जी के बारे में? तो आप इनके बारे में अगर कुछ जानती हैं तो क्या आप हमें बता सकती हैं?
1: हाँ, मैंने ये सुना है कि मतलब इन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी जो थी वो जंगल में गुजारी है अपने दोस्तों के साथ, और
0: बिल्कुल
1: अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा साथ दिया है इन्होंने।
0: जी, दोस्त उनके जो साथी थे उनका,
1: जी, अपने साथियों के साथ वो हमेशा खड़े रहते थे किसी भी
0: बिल्कुल
1: परेशानी में।
0: हाँ जी बिल्कुल, वो अपने साथियों के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते थे।
1: जी
0: और कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में?
1: जी मुझे तो बस इतना ही पता था, बस वो बहुत ज्यादा बहादुर और निडर थे।
0: बिल्कुल वाकई। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो निडर थे और संघर्ष से नहीं डरते थे। कोमाराम भीम जी जो थे वो वाकई बहुत संघर्ष वाले थे। कोमाराम भीम जी बहुत ही बहादुर थे। कहा जाता है
1: जी
0: कि लगभग 12 गांव के आदिवासी उनके साथ आ गए थे जब उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई शुरू की थी।
1: जी
0: तो लगभग 12 गांव के लोग जो थे, आदिवासी थे, उनके साथ मिल गए थे, उनकी लड़ाई में खड़े हो गए थे। इसके बाद उन्होंने निजाम शाह के खिलाफ संघर्ष किया था। उन्होंने जंगलों में रहकर अपने साथियों के साथ गुरीले तरीके से मुकाबला किया था। उन्होंने जंगल में रहकर अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो निजाम शाह के खिलाफ संघर्ष किया था। उनका उद्देश्य सिर्फ लड़ाई करना ही नहीं था, वो चाहते थे कि आदिवासी लोग अपने जंगल और जमीन पर एक समान, एक साथ अपना जीवन जी सके। आपको क्या लगता है किसी भी संघर्ष में एकता कितनी जरूरी है?
1: संघर्ष तो कोई सा भी हो, सभी लोगों को एक साथ खड़े रहना चाहिए, और एकता सबसे ज्यादा जरूरी होती है ग्रुप, एक ग्रुप बना के रखने के लिए, किसी भी संघर्ष को जीतने के लिए।
0: बिल्कुल, यूनिटी बहुत ही जरूरी होती है, चाहे वो फिर एक छोटा सा गेम ही क्यों ना हो।
1: जी जी
0: ये
1: बिल्कुल,
0: तो फिर भी बहुत
1: ये
0: बड़ी
1: तो
0: लड़ाई
1: बहुत
0: थी,
1: बड़ी लड़ाई थी।
0: बिल्कुल अपने लोगों के अधिकार के लिए। और
1: जी
0: यहीं से ही अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते पहले उन्होंने अपने समुदाय के लिए लड़ा, अपने लोगों के लिए लड़ा, और उन्होंने अब हमारे देश को आजाद करने के लिए पूरे देश के जो वासी थे, हमारे देश के वासी थे, लोग थे, उनके लिए लड़ाई शुरू की,
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो अनु, कैसा लगा आपको इनके बारे में हमें कुछ बताकर और थोड़ा और जानकर?
1: मुझे इनके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा बताया भी है मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इनके बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम है, और भी पता होना चाहिए। आज हम जैसे यंगेस्ट को मतलब पता होना चाहिए अपने हिस्ट्री के, जो इतने अच्छे लोग गुजरे हैं उनके बारे में
0: बिल्कुल,
1: हमें जरूर जानना
0: हमारे जो
1: चाहिए।
0: फ्रीडम फाइटर जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, जिनकी वजह से आज हम कहीं भी किसी भी देश के कोने में किसी भी हिस्से में आजादी से, स्वतंत्रता से घूम सकते हैं,
1: जी
0: उन लोगों
1: बिल्कुल।
0: को जब हम याद करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है।
1: जी।
0: तो दोस्तों, आज की हमारी बातचीत से हमने जाना कि कोमाराम भीम कौन थे। कोमाराम भीम एक महान आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी और गौंड जनजाति के नेता थे। उन्होंने निजाम शाह के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने आदिवासी लोगों को एकजुट किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश था जल जंगल जमीन। वो चाहते थे कि जिन जंगलों और जमीन पर आदिवासी पीढ़ियों से रहते आए हैं, उन पर उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा हो। उन्होंने जंगल में रहकर अपने साथियों के साथ संघर्ष किया और 27 अक्टूबर 1940 को जोंडे घाट के जंगलों में संघर्ष करते हुए वे शहीद हो गए। और 27 अक्टूबर 1940 को जोंडे घाट के जंगलों में संघर्ष करते हुए वो शहीद हो गए। लेकिन दोस्तों, कोमाराम भीम की कहानी उनकी शहादत के साथ खत्म नहीं हुई। आज भी उनका नाम हमें साहस, एकता और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। और यही तो हमारे कार्यक्रम मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का मकसद है, उन महान लोगों को याद करना जिन्होंने भारत के इतिहास और समाज को अपने संघर्ष और योगदान से आकार दिया। आज हमने जाना कोमाराम भीम जी को। कल फिर मिलेंगे एक और स्वतंत्रता सेनानी के साथ, एक नई कहानी लेकर, एक नए संघर्ष को जानने के लिए। तब तक सुनते रहिए मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 80वें स्वतंत्रता दिवस के रन अप पर विशेष कार्यक्रम।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो

0: गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: यार मोनू, एक बात बता।
3: हाँ सोनू, बोल। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है तू? ना मुझसे पूछ लिया कर, तेरे मन में जो भी सवाल आया करे।
5: भाई देख, तुझे पता है सावन चल रहा है और लड़कियां व्रत भी रख रही हैं।
3: हाँ बिल्कुल रख रही हैं।
5: भाई चल, लड़कियों का तो ठीक है कि वो अच्छा वर मांगने के लिए व्रत रखती हैं सावन का, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई यार सोनू।
3: और वो क्या है?
5: ये शादीशुदा औरतें क्या करना चाहती हैं व्रत रखकर?
3: अरे भाई, भगवान से शिकायत करती हैं कि हे भगवान, क्या मांगा था और क्या दे दिया।
4: यहाँ मजा आ गया।
6: वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है आप जोश और जुनून से भरपूर होंगे, क्योंकि आज का दिन है उन लोगों के नाम जिनके पास ऊर्जा भी है, सपने भी है और कुछ नया करने का जज्बा भी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे की।
3: बिल्कुल, और ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर युवाओं के नाम एक पूरा दिन क्यों?
6: वो इसलिए उज्मा, क्योंकि सिर्फ देश का भविष्य ही नहीं है हमारा युवा, युवा आज का वर्तमान भी है। आज का यूथ नई सोच रखता है, सवाल पूछता है, बदलाव चाहता है और अपनी मेहनत से समाज में कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है।
3: और युवा होना सिर्फ उम्र की बात नहीं है दोस्तों, युवा होने का मतलब है नई चीज सीखने की चाह, मुश्किलों से लड़ने का हौसला और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश।
6: चाहे बात शिक्षा की हो, विज्ञान की, खेल की, कला की या फिर हो समाज सेवा की, युवाओं की भागीदारी हर जगह दिखाई देती है।
3: लेकिन सलोनी, आज के युवा के सामने चुनौतियां भी तो कम नहीं है ना?
6: उज्मा ये बात भी सही है। पढ़ाई का दबाव, रोजगार की चिंता, सही अवसरों की कमी और सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को दूसरों की तुलना में कम समझना, ये भी एक दबाव ही है। और ये सब युवाओं के सामने बहुत चुनौतियां देखने को मिलती।
3: बिल्कुल, वाकई चुनौती खड़ा करता है। और शायद इसलिए आज के युवा दिवस का एक बड़ा संदेश है, अपनी परेशानी को अपनी कमजोरी मत बनने दो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और जहां जरूरत हो मदद मांगने से भी बिल्कुल मत हिचकिचाओ।
6: और हमेशा याद रखो, बदलाव लाने के लिए उम्र बड़ी नहीं होनी चाहिए, बदलाव लाने के लिए जरूरत है बड़ी सोच की। एक छोटा सा काम भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है दोस्तों।
3: तो इस युवा दिवस पर खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा दोस्तों, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ और अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूँ?
6: क्योंकि देश बनता है उसके नागरिकों से, और जब देश के युवा जागरूक, जिम्मेदार, मेहनती होंगे तभी देश की तरक्की की रफ्तार भी तेज होगी।
3: तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आपको ले चलते हैं एक परिचर्चा की ओर।
6: नई सोच पुराना आसमान, विश्व युवा दिवस पर एक विशेष परिचर्चा आपके लिए।
3: बिल्कुल, जिसमें प्रतिभागी हैं उज्मा, सलोनी, प्रमोद सिंह, मोनिका सैनी, श्रेया विश्वास, कुमुद सिंगल, मीनाक्षी, कुशलेंद्र कुमार, विश्वास द्विवेदी,
6: और जिसका संचालन किया है शुमायला और रुमान परवीन ने।
7: वो कहते हैं तुम्हें अनुभव की कमी है, हम कहते हैं हमारे इरादों में कमी नहीं। उन्होंने जो रास्ते बनाए हम उनका सम्मान करते हैं, मगर अपनी मंजिल का रास्ता हम खुद तय करते हैं।
8: दोस्तों, वक्त बदलता है, दौर बदलता है और उसके साथ बदलती है सोच, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती, सपने, उम्मीदें और एक बेहतर कल की चाह। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके अपने दोस्त रुमान परवीन,
7: और दोस्तों रुमान के साथ हाजिर हूं मैं शुमायला। आप सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमारी विशेष परिचर्चा नई सोच पुराना आसमान में। आज का विषय सिर्फ दो पीढ़ियों की तुलना करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि अलग अलग अनुभव और अलग अलग सोच मिलकर समाज को कैसे आगे ले जा सकते हैं।
8: हमारे साथ मौजूद हैं दो विशेष टीमें, एक और है वरिष्ठ पीढ़ी जिनके पास वर्षों का अनुभव और जीवन की सीख है,
7: और इसी

0: किस बात पर गर्व है? आपको क्या लगता है कि आपकी पीढ़ी समाज में क्या-क्या बदलाव ला रही है? युवा टीम में से जो भी साथी जवाब देना चाहे वो आगे आ जाए।
1: युवा टीम से मैं जवाब देना चाहूंगी। हमें इस बात पर गर्व है कि हम सही को सही और गलत को गलत बोलना जानते हैं। हम केवल जो पुरानी बातें चली हुई आ रही हैं या पुरानी सोच चली हुई आ रही हैं उनको मानने से बचते हैं, बल्कि सही को सही और गलत बोलने से नहीं डरते हैं। और इसी के साथ साथ हम बदलाव की बात करें तो ये जो पीढ़ी है वो केवल नौकरी के ही पीछे नहीं भाग रही है, बल्कि अपना स्टार्टअप या बोले हम के खेल के क्षेत्र में या अलग क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रही है। और रही बात गर्व की, तो हमें गर्व इस बात पर है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन दूसरों का सम्मान हमेशा ध्यान में रखकर।
2: चलिए सलोनी, बहुत खूब। और अब यही सवाल हमारा रहेगा हमारी आज की वरिष्ठ टीम से भी, तो आपको क्या लगता है?
3: जहाँ तक सोच की बात है, सोच तो सभी के पास होती है, चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे वो वरिष्ठ हो। जिंदगी चलाने के लिए अनुभव बहुत जरूरी होते हैं, और अनुभव की भी दोनों ही पीढ़ियों को बराबर जरूरत है। लेकिन इसके बीच में हम ये कह सकते हैं कि जो नई तकनीक है, नए बदलाव आए हैं, वो कहीं ना कहीं वो हमारी पीढ़ी और युवा पीढ़ी के बीच में एक अंतर पैदा कर चुके हैं। जैसे कि आज की तकनीक वो हमें बदलाव की ओर या बढ़ावा देती है, हमें जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए नई सोच उत्पन्न करने के लिए। और हमारी पीढ़ी जो थी वो कहीं ना कहीं वो तकनीक की दृष्टि से थोड़ा पीछे थी, लेकिन अनुभव में हम आगे थे।
4: जी बिल्कुल, ये बात आपने विश्वास जी एकदम सही कही है। और देखिए, इस बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो अभी सोच की बात आई है कि हमारी सोच और युवा पीढ़ी की सोच, जब अभी हमारे एक युवा साथी ने बताया कि हमें अपनी उस बात पर गर्व है कि हम अपना फैसला खुद लेते हैं, ठीक है, हमें अपना फैसला खुद लेना चाहिए, लेकिन अपने बुजुर्गों के अनुभवों को भी हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए। उनके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं, वो एक नई सीख के साथ में जो अब तक उन्होंने इकट्ठा किया है उसको अपने बच्चों तक वो पहुंचाना चाहते हैं, युवा पीढ़ी तक वो पहुंचाना चाहते हैं। तो उस युवा को ये भी सोचना चाहिए कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके जो अनुभव हैं उसके आधार पर भी अगर हम किसी भी काम को करके आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा है।
3: बिल्कुल सही, यानी कि तकनीक और अनुभव दोनों को मिला के चलें तो हम ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी। तो यहाँ मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे युवा टीम ने बताया उन्हें किस चीज पर गर्व है, तो आपकी पीढ़ी किस चीज पर गर्व महसूस करती है?
5: इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगी कि हमारी पीढ़ी वास्तव में इस चीज पर गर्व करती है कि हमने अपनी पुरानी पीढ़ी के अनुभव को भी अपनाया, साथ ही हम नए युग से भी जुड़े, हमने पुराने अनुभव को भी अपने लिए इस्तेमाल किया और साथ ही नई पीढ़ी की जो तकनीक है उसको भी अपनाकर सीखते हुए हम नए युग के साथ भी जुड़ रहे हैं। और सीखने में हिचक नहीं है, हमारी पीढ़ी सीख करके आगे बढ़ रही है, हमें इस चीज का गर्व है।
2: बहुत सुंदर विचार।
6: जैसे कि बात आई कि हमें उनको गर्व है अनुभव पे, कि वो अनुभव के साथ साथ टेक्निक्स भी सीखते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी जो आज का यूथ है वो अनुभव सीखता है, वो अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनता है, बातें सुनता है, और उसको ये रियलाइज होता है कि जो चीजें उनके पास नहीं थी, जो रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे, वो आज हमारे पास है, तो हम उनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड वे बैड वे वो अलग पॉइंट हो जाता है। लेकिन हम मानते हैं कि हमें इस बात पे गर्व इसलिए होता है कि हम दोनों चीज को सोच के चलते हैं, जो पहले के लोग नहीं कर पाए वो आज के लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इनोवेशन एंड टेक्निक दोनों सोच के चलता है।
4: बिल्कुल, देखिए फ्यूचर की तो सोचनी ही चाहिए, हम लोगों ने भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। और देखिए जहां तक आज नई टेक्निक की बात आई है तो टेक्निक में भी अब हम बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और गर्व हमें इस बात पर भी है कि जो टेक्निक उस जमाने में नहीं थी वो आज आ गई है, उसको हम अपने बच्चों से भी सीख रहे हैं, बच्चे हमें बता रहे हैं कि इस चीज को हमें ऐसे करना चाहिए। अगर हमें फोन को भी चलाने वाली बात है, उसमें कोई नई एप्लीकेशन आई है, नई कोई जानकारी लेनी है, तो अगर बुजुर्ग नहीं जान रहे तो बच्चे उसको बता रहे हैं। देखिए ये एक दूसरे का सामंजस्य तो बनाकर हमें रखना ही पड़ता है। ठीक है, उस जमाने में जो है साधनों की कमी थी, अब साधन बढ़ते चले जा रहे हैं तो चुनौतियां भी बढ़ती चली जा रही हैं।
7: और जैसे जैसे साधन बढ़ते चले जा रहे हैं तो मैं ये देखती हूँ कि हमारी आज की युवा पीढ़ी में पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, जो कि हमारी पीढ़ी में बहुत ज़्यादा भर भर के था। हम थे तो हम अपने माँ बाप का, अपने बड़े बूढ़ों का बहुत सम्मान करते थे। हाँ, आज की पीढ़ी भी सम्मान करती है, लेकिन उस लेवल पर उसका जो पेशेंस है वो कम

0: होता चला जा रहा है।
1: मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेशेंस की बात आए तो अगर हम वैसे ही पेशेंस रखे जैसे पहले के लोगों में था, तो शायद जितनी रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं वो हम नहीं बढ़ पाएंगे।
2: बिल्कुल। और एक बात और है, आप कह रहे हैं कि जो आज की जनरेशन है उसमें पेशेंस नहीं है, लेकिन क्या आप ही की जनरेशन ने हमें इंस्टेंट टेक्नोलॉजी और इंस्टेंट सर्विस की जो दुनिया है वो आप ही लोगों से हमें प्रोवाइड नहीं हुई है?
0: देखिए, टेक्नोलॉजी की ये बात है कि हमेशा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे तो हो सकता है इससे और दुगनी तेजी से आगे बढ़ें।
3: हाँ, यदि बात करें जैसे इन्होंने बताया कि पेशेंस थोड़ी सी इसमें कमी आई है, थोड़े से जो हमारे बुजुर्गों के अनुभव हैं उन्हें जो है हम लोग लेते हैं, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है थोड़ी सी स्वतंत्र विचारों की है, वो केवल अपने मन की करती है, जहाँ तक है बड़ों की, जैसे हम लोग थे बड़ों के आदेश के बिना या बड़ों की राय के बिना कोई कदम नहीं उठा पाते थे, लेकिन आज थोड़ी सी आज़ादी मिली है आज की युवा पीढ़ी को।
1: अब मैं इस बात पर अपनी बात भी एक ऐड करना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला हमारी पीढ़ी को आज़ादी मिली है, और रही बात बुजुर्गों की कि हम बुजुर्गों की बात नहीं सुनते, और आप उसको ज़्यादा अच्छे से सुन पाते थे और उस पर अपील भी कर पाते थे। तो आज़ादी की बात यह है कि पहले ज़माने में जितना हम जानते हैं, हमारी पीढ़ी जानती है, तो लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, तो वो बात मुझे नहीं लगता इस हद तक सही होती थी कि बुजुर्गों की बात मानकर लड़कियों को घर में बिठा दिया जाता था और शादी भी जल्दी कर दी जाती थी, तो बहुत ज्यादा गलत था उस पीढ़ी के लिए।
3: जैसा आप कह रहे हैं, कुछ परिवारों में जहाँ पर अशिक्षा थी, अशिक्षित लोग थे, तो वहां पर मैं कह सकती हूँ, लेकिन मैं जो हूँ अपनी बात कहूँ तो मैं एक शिक्षित परिवार से हूँ, और 87 में मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री और उसके बाद एमए, बीएड और पीएचडी वगैरह सब करी थी शादी से पहले ही, ये क्योंकि एक शिक्षित परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो मुझे पूरी पढ़ने के लिए छूट दी गई थी, और शादी भी ये नहीं था कि मुझे शादी के बंधन में बांध दिया गया, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तब उन्होंने मेरी राय पूछ कर ही जो है शादी का प्रस्ताव रखा।
0: देखिए, इस चीज को पेशेंस और शिक्षा को हम एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे परिवार का सहयोगी है कि हमें आगे बढ़ाया गया। हाँ, इस बात को कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी लड़कियों की शिक्षा में कभी भी अपना योगदान नहीं देती थी, कहती थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उनके लिए सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, बहुत शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
4: मीनाक्षी जी, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। उस समय में क्या होता था कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास में सुविधाओं की कमी होती थी, हमारे पास में वो स्कूल आसपास में नहीं हुआ करते थे, अब तो हर 3 किलोमीटर पर, हर 2 किलोमीटर पर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, यहाँ तक कि इंटर स्कूल है, और अब हायर एजुकेशन के लिए भी जगह जगह पर बहुत सारे स्कूल बनाए गए हैं। तो जिस समय हमारे पास में साधनों की कमी थी, तो उस समय गांव के व्यक्ति अपनी बेटी को बाहर भेजने के लिए वो थोड़ा सा हिचकिचाते थे उसकी सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन अब क्या है, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी आई है, जो समय बदला है, जो सुविधाएं हमें मिली हैं, सरकार ने जो हमें सुविधाएं दी हैं, अब हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, अब तो हमारे घर के पास ही स्कूल है, तो अब कोई ऐसी बेटी नहीं है जो शिक्षा से वंचित रह गई हो, शिक्षा सभी को मिल रही है और बेटियां आगे बढ़ भी रही हैं, हम बुजुर्ग ही हैं जो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को आगे भेज रहे हैं।
5: मैं यहाँ पर कुछ चीज कहना चाहूंगी, जैसे अर्चना जी ने कहा कि इनको पढ़ने के लिए छूट दी गई थी, मुझे लगता है अगर युवाओं की बात करें तो उन्हें इस शब्द से नफरत है, हमें कोई छूट क्यों दी जाए या युवाओं को कोई छूट क्यों दी जाए, ये बेसिक राइट है, कोई हमें क्यों अलाउ करे कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये हमारा बेसिक राइट है।
6: वही बात मैंने बोली कि हमें इस बात पर गर्व है कि हम सही को सही और गलत को गलत बोलना जानते हैं, जो भी गलत परंपराएं चली आ रही हों, चाहे वो बाल विवाह हो या लड़कियों को पढ़ाना ना हो, हमने उनको गलत बोला है, और ये भी ध्यान रखा है कि हमारे बड़े बुजुर्गों की जो मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, लेकिन उसके चक्कर में हमारे सपने दम ना तोड़ दें, इसलिए हमने सही को सही और गलत को गलत रखकर अपने सपनों को आगे बढ़ाया है।
1: बहुत सुंदर विचार शुमाइला। मुझे लगता है कि राउंड वन में जो चर्चा हमने सुनी है उसमें मुझे लगता है कि सारा दोष परिस्थितियों का है।
5: बिल्कुल,
1: जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से सोचती है, वहीं जो हमारी वरिष्ठ टीम की बात करें तो वो अपनी सिचुएशंस और अपने सरकमस्टांसेस की तरह सोचती थी।
5: बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे कि बात हुई है टेक्नोलॉजी की, तकनीक की और एआई की, तो आइए अब सवाल इसी से रिलेटेड पूछ लेते हैं।
1: बिल्कुल, आपको बता दें दोस्तों कि हमारा राउंड टू तकनीक वरदान या चुनौती शुरू हो चुका है।
5: जी हाँ, और सवाल ये है कि क्या तकनीक ने जीवन आसान

0: बनाया है या फिर रिश्तों को थोड़ा दूर भी कर दिया?
1: युवा टीम, पहले आप जवाब दीजिए।
2: देखिए, ये सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी एडवांसमेंट आई है। आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो, किसी को वीडियो कॉल, कोई कितनी भी दूर क्यों ना हो आप उसे वीडियो कॉल कर लो, आप उसका हाल जान सकते हो, आप उसे पूछ सकते हो कि खाना खाया नहीं खाया, जो कि पेरेंट्स करते ही हैं अपने बच्चों को कॉल करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निक्स जो आई है, टेक्नोलॉजी जो आई है, वो सवाल था कि रिश्तों को क्लोज कर रही है या दूर कर रही है, तो वो नहीं है। वो ऑब्वियसली बात है कि आप जो भी आपका रिलेशन है उसे क्लोज ही हुए हो आप।
3: जैसा कि शुमाइला आपने बोला कि ये हमारे रिश्तों को दूर कर रही हैं या पास ला रही हैं, मैं श्रेया की बात से भी एग्री करती हूँ। हम अगर आज से पुराने टाइम में देखें तो आज जैसे लोग अपने घरों से दूर रहते हैं जॉब के सिलसिले में या किसी भी वजह से, जरूरी होता भी है कि हमें अगर खाना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा, तो उस टाइम पर भी लोग रहते थे बाहर और इस टाइम पर भी रहते थे। तो बात ये नहीं है कि मोबाइल से दूरियां आई हैं या क्लोजनेस आई है, वो है कि अगर दिल में प्यार है, हमारे दिल में अपनापन है, तो हम इस देश से दूसरे देश में भी रहेंगे तो भी हमारा कोई मतलब दूरियां कोई साधन ऐसा नहीं बन सकता कि दूरियां क्रिएट करें। हमारे मन में प्यार और रेस्पेक्ट होना चाहिए, इसमें नहीं कि हम पास हैं तो ही हम क्लोज होंगे। हम अगर समुंदर पार भी हैं तो जिनके लिए प्यार है वो प्यार बना ही रहेगा।
1: बहुत खूबसूरत सोच सलोनी। तो वरिष्ठ टीम, अगर आपको आज के युवाओं को डिजिटल दुनिया के लिए एक सलाह देनी हो तो वो क्या दोगे?
4: आप तकनीक का इस्तेमाल करिए, लेकिन बड़ों के अनुभव को साथ लेकर अगर चलेंगे तो प्रगति निश्चित है।
5: देखिए, इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो तकनीक आई है ये हमारे लिए वरदान है, चाहे वो युवा पीढ़ी हो या बुजुर्गों की बात हम करें, उनके लिए ये वरदान है। वरदान इसलिए ये साबित हो रही है क्योंकि हमारे देश का जो विकास है वो दिनों दिन नई तकनीक के आने से बढ़ता चला जा रहा है, और हम चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हम अगर बात कर लें तो हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसीलिए हम कहेंगे कि जो भी तकनीक आई है वो हमारे लिए सभी के लिए वरदान है। अगर हम उस तकनीक को नहीं जानते तो हम अपने बच्चों से सीख सकते हैं, बच्चे इस तकनीक को

0: को साथ मिलकर करना होगा।
1: बिल्कुल,
0: साथ चलेंगे तभी विकास हो पाएगा।
1: वैसे रुमान हम किसी एक पीढ़ी को तरजीह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सब अपने अपने जो परिस्थितियां, तुमने बात की थी परिस्थितियां और सर्कमस्टेंसेस की, तो वहां वो बिल्कुल ठीक बैठते हैं। बात चल रही है दोस्तों टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी कैसे युवा पीढ़ी यूज कर रही है और किस तरह से जो हमारी वरिष्ठ टीम है, वरिष्ठ पीढ़ी है, उनके अनुभव उसमें साझा हो रहे हैं। तो रुक करते हैं राउंड थ्री की ओर।
2: राउंड थ्री रहेगा सफलता किसे कहेंगे। आज सफलता की परिभाषा आखिर क्या है? तो दोस्तों हमारा पहला सवाल रहेगा हमारे युवा पीढ़ी से, क्या सफलता सिर्फ अच्छी नौकरी और अच्छी कमाई है या कुछ और?
3: सफलता अच्छी नौकरी है, अच्छी कमाई तो है ही, मतलब अगर इंसान सेटल्ड होगा तभी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। लेकिन अगर किसी की खुशी किसी और काम में, और अगर वो मतलब सफलता के लिए उसे सेक्रीफाइस कर रहा है, तो फिर वो खुश नहीं है। फिर चाहे वो कितना भी अच्छा अर्न कर ले या फिर लाइफ में कितना भी ग्रो करे, अगर वो खुश नहीं है तो वो अंबानी भी बन जाए पर वो खुश नहीं है,
1: फिर उसको सक्सेसफुल इंसान भी नहीं,
3: नहीं कहा जा सकता।
4: मेरे पास एग्जांपल है कि जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है कि अगर सचिन तेंदुलकर गाना गाता और लता मंगेशकर क्रिकेट खेलती तो वो सफल नहीं हो, वो सक्सेसफुल नहीं कह सकते थे उन्हें,
1: वो शायद पॉसिबल भी नहीं होता श्रेया, क्योंकि उनका जो जहन था वो किसी और चीज में ही था।
4: That is what youth is all about. Youth जानता है कि उसको क्या करना है, वो अपने इंटरेस्ट, अपनी जो जिसको पैशन को फॉलो करना जानता है। जो पहले के लोग थे उनको सेटलमेंट चाहिए था, उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए और क्या कहते हैं उनका लाइफ सेटल हो जाए, घर मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, एग्जैक्टली। बट आज लोग जो यूथ है वो अपना पैशन फॉलो करना जानता है, उसको ये है कि सिर्फ 9 to 5 जॉब में वो सिमट के नहीं रहना चाहता।
5: तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, युवा को आगे बढ़ना चाहिए, युवा जानता है कि मैं किस क्षेत्र में आगे जा रहा हूं। लेकिन इस बात को भी युवा को नहीं भूलना चाहिए कि उसके मम्मी पापा ने उसको इस लायक बनाया है, उसको पढ़ाई कराई है, उसको एक अच्छी एजुकेशन दिलाई है, उसको ये सोचकर दिलाई है कि मेरा बच्चा कुछ बनेगा। बनने से मतलब ये है कि हमारा बच्चा अगर कुछ सफल हो जाता है लाइफ में, लाइफ नौकरी लगेगी सफलता मिलेगी बहुत अच्छी बात है, कोई बिजनेस करेगा सफलता मिलेगी बहुत अच्छी बात है, उसके मम्मी पापा को भी ये पता होता है कि मेरे बच्चे के अंदर कौन से गुण है, मेरा बच्चा क्या कर सकता है, जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं थोपी जाती। माँ बाप भी ये सोचते हैं कि बच्चा मेरा अगर इस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है, साहित्य के क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसको वहीं भेजा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, नौकरी पाना, बिजनेस करना, ये एक सफलता तो है, पर अच्छे संस्कार मिलना ये भी बहुत बड़ी सफलता है।
2: सर, प्रमोद सर की बात पे मैं एक बात एड ऑन करना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा जो हमारा युवा सफर करता है वो एक्सपेक्टेशन से करता है। पेरेंट्स उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो काम वो ना कर सके वो उनकी उनकी जो आगे वाली पीढ़ी है, जो युवा है, वो करे, और वहां पर लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो नहीं कर पाता। इसीलिए हमने अभी नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें देखा कितने बच्चों ने सुसाइड किया, कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को ही पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने किया।
1: और मुझे लगता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, शायद पेरेंट्स भी नहीं जान सकते। हाँ, वो हमें एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट अल्टीमेटली जो हमें करना होता है वो हम ही जानते हैं।
5: कुछ सारे पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को पहचानते हैं, अपने बच्चों के अंदर वो उसके अंदर क्या चीज है वो जानते हैं, बच्चे को उसी क्षेत्र में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहीं उसको एक अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं। देखिए, एक्सेप्ट तो इसलिए करना पड़ता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो आगे बढ़ें। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन बच्चे को भी चाहिए कि मैं वो सारे काम करूं जो मेरे, जिससे माँ बाप का नाम भी रोशन हो और कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि हमें समाज में नीचे देखना पड़े।
2: पेरेंट्स को ऐसा क्यों लगता है कि अगर बच्चा अपने मन का कुछ करेगा तो उससे पेरेंट्स को नीचा देखना पड़ेगा?
6: बिल्कुल रुमान, मैं आपके इस सवाल से सहमत हूँ। जैसा कि आपने बोला कि बच्चा गलत ही करेगा, ऐसा आप मान लेते हैं, और सर ने भी बोला था कि बच्चों में संस्कार की कमी आई है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं? पेरेंट्स से मिलते हैं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पर बिलीव रखना होगा कि हमने जो अपने बच्चों,
7: नई जनरेशन जैसे युवा पीढ़ी है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है अग्रणी हो रही है या प्रयासरत है, नए नए खोज कर रही है, तो ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ तक संस्कारों की बात है, वो युवा पीढ़ी को अपने बुजुर्गों से ही मिलते हैं। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों से ये संस्कार जो लेती रहती है या और आगे भी लेती रहेगी, इन्हीं से युवा पीढ़ी संस्कारवान होगी।
6: जी बिल्कुल, हमें भी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे पेरेंट्स हम पर विश्वास करें कि

0: हमने जो अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं वो उन्हीं को फॉलो करके हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगे, कुछ गलत काम नहीं करेंगे।
1: दोस्तों रुक करते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की ओर, जहां हमारा सवाल रहेगा कि अगर एक दूसरे से सीखने की बारी आए तो आप क्या सीखेंगे। तो पहला सवाल हमारी युवा टीम से, अगर आपको
2: पहले पढ़ने के लिए जाती थी या संघर्ष किसी भी क्षेत्र में करती थी तो वो वास्तव में वो जीवन था, वो कैसा जीवन था। अभी जैसे आप उसको कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हम लैंप की रोशनी में पढ़े हैं, कई जगह तो ऐसा भी हुआ होगा कि लैंप भी उनको नहीं मिला होगा तो वो सड़क की रोशनी में जाकर, जो सड़क में जो स्ट्रीट लाइट होती है उसकी लाइट में जाकर पढ़े हैं, नदियां पार करके गए। बात वही आ जाती है, उस समय संसाधन बहुत कम थे। आज हमारे पास में संसाधनों की कमी नहीं है, आज हमारे पास लाइट की कमी नहीं है, आज हमारे पास में अब अगर बिजली नहीं आ रही है ना तो इन्वर्टर हमारे पास में है, इन्वर्टर भी नहीं है तो दूसरा हमारे पास में बैटरी से चलने वाले कुछ ऐसे साधन हमारे पास में है, उसको लगाकर हम पढ़ रहे हैं। तो जब सारी सुख सुविधाएं हमारे पास में हैं तो फिर हमें आगे बढ़ना ही होगा।
0: मैं भी अपने वरिष्ठों से यही सीखना चाहूंगी कि चीजों को बैलेंस कर कैसे किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुझे सीखने की जरूरत है तो यही है कि बुजुर्गों से हमें बैलेंस करने की जो सीख है वो लेनी चाहिए, क्योंकि वो चीजों को ऐसे बैलेंस करके चलते हैं कि शायद किसी को दुख ना हो और अपना भी काम हो जाए। और रही बात अनुभव की जो बोली थी, हमारे बुजुर्गों के पास अगर 25 साल का एक्सपीरियंस है तो अगर हम उनका साथ ले लें तो शायद हमारे पास 26 साल का एक्सपीरियंस हो जाए और हम मिलकर चलें तो ये पीढ़ी और आगे बढ़े।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सलोनी, जिंदगी की शायद यही खूबसूरती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जिंदगी भर हम सीखते रहते हैं।
3: और अब यही सवाल हमारी वरिष्ठ टीम से कि अगर आपको युवा पीढ़ी से कोई एक बात अपनानी हो तो वो क्या बात होगी।
2: सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अगर बच्चे किसी नई चीज को हमें बता रहे हैं तो उसको सीखना हमारा फर्ज बनता है कि हमारा बच्चा अगर ये काम हमें बता रहा है, ये चीज हमें सिखा रहा है तो उसको हमें सीख लेना चाहिए।
1: और बिल्कुल यही,
4: तभी हम इन लोगों से या अपनी नई युवा पीढ़ी से सभी जुड़ पाएंगे जबकि हम उनके अकॉर्डिंग चल सके, थोड़ा सा वो हमारी ओर चले, थोड़ा हम उनकी ओर चले और इस तरह सामंजस्य बिठाकर अपने समाज को एक नई दिशा दें।
5: हाँ कुमुद जी ने बिल्कुल कहा कि ये जो जनरेशन गैप आ रहा है इसमें हम लोगों को अपना तालमेल बिठाना पड़ेगा, तभी जो है हमारी जिंदगी बच्चों, ये जो है युवा पीढ़ी है, ये प्रगति के पथ पर आगे बढ़ पाएगी।
6: ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें हमें ही आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को आती है, तो जो भी मुझे या हमें इनसे सीखने को मिलेगा तो हम ज़रूर सीखेंगे।
7: बिल्कुल, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं और उनसे सीखें।
4: हाँ मीनाक्षी बिल्कुल सही कहा आपने कि हम और युवा पीढ़ी मिलकर एक नए समाज का निर्माण करें, एक नए भारत का निर्माण करें। भारत की जो प्रतिष्ठा अभी है देश विदेश में, जो सम्मान हमने कमाया है, उस सम्मान को और आगे ले जाकर भारत को विश्व का नंबर एक देश बनने के लिए हम लोग अग्रसर हों और इसी सोच के साथ हम सभी आगे बढ़ें, मिलकर आगे बढ़ें।
3: बिल्कुल शमाइला, आज की चर्चा ने एक बात साफ कर दी कि पीढ़ियां अलग हो सकती हैं लेकिन सपनों की मंजिल एक ही होती है।
1: नई सोच तभी मजबूत होती है जब उसे अनुभव का सहारा मिले और अनुभव तभी आगे बढ़ता है जब वो नई सोच को अपनाने का साहस रखे।
3: दोस्तों यही है नई सोच पुराना आसमान, जहां विचार अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, एक बेहतर समाज, एक बेहतर भारत।
1: तो आप सभी को
3: अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक
8: शुभकामनाएं।
9: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
10: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
9: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
11: और डोज में क्या है?
10: डोज में है मजा। जी हाँ मजा आ गया
11: यार। चुन्नू कभी कभी ना दिल करता है सब कुछ बेच बाज के ना कहीं चला जाऊं।
12: क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया तेरी जिंदगी में?
11: भाई सब कुछ बेकार ही चल रहा है।
12: अच्छा तो फिर क्या करने का मन है तेरा?
11: भाई मेरा तो मन कर रहा है सब कुछ बेच बाज के इंडिया से बाहर चला जाऊं बस।
12: तो बेच दे फिर, किसका इंतजार देख रहा है?
11: भाई उसमें भी एक दिक्कत है ना।
12: क्या?
11: बेचने के लिए कुछ है भी तो नहीं।
10: यहाँ मजा आ गया।
0: दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं हमारे सेगमेंट कहानी के उस पार की ओर, जहाँ आज आप सुनेंगे जहाँ आसमां खत्म नहीं होता का एपिसोड 3।
13: स्टेशन धीरे धीरे दूर होता गया और प्लेटफॉर्म पर खड़ी माँ आखिरी पल तक हाथ हिलाती रही। मीरा ने चेहरा खिड़की से हटा लिया क्योंकि कुछ बिछड़ना आंखों से देखा नहीं जाता। जिस शहर में वो

0: जी, वो इतना बड़ा था कि वहां हर कोई किसी ना किसी जल्दी में था। भीड़ बहुत थी, मगर किसी के पास किसी का नाम याद रखने का समय ही नहीं था। लोग एक दूसरे से टकराते और बिना माफी मांगे आगे बढ़ जाते। उसे लगा जैसे इस शहर में इंसानों से ज्यादा उनकी भागती हुई जिंदगियां रहती हैं। एक छोटे से किराए के कमरे में उसने अपनी नई दुनिया बसाई। एक लोहे का बिस्तर, पुरानी सी मेज और एक खिड़की, जिसके बाहर आसमान नहीं सामने की इमारत की दीवार दिखाई देती थी। उसी रात उसे पहली बार समझ आया कि घर की पहचान उसकी दीवारों से नहीं, उसकी आवाजों से होती है। और ये कमरा शांत नहीं था, ये अकेला था। कुछ ही दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। वो नौकरी उसके सपनों जैसी नहीं थी, लेकिन दोस्तों ज़रूरतें सपनों से कभी सलाह नहीं लेती। सुबह भीड़ भरी बस, दिन भर काम और शाम तक चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे उसने धीरे धीरे पहनना सीख लिया था। ऑफिस के लोग उसके नाम से ज़्यादा उसकी गलतियों को जानते थे। छोटी सी भूल पर डांट पड़ती और वो हर बार सिर्फ जी कहकर चुप हो जाती। रात को कमरे में लौटकर वो अक्सर बिना बत्ती जलाए बिस्तर पर बैठ जाती। कई बार खाना बनाने तक की हिम्मत नहीं होती थी और खुद से कहती थी, कल से सब ठीक होगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। सैलरी मिलते ही ज्यादातर पैसे किराए, खर्चे और घर भेजने में चले जाते। कभी किसी किताब पर नजर ठहरती भी तो वो चुपचाप उसे वापस रख देती। दोस्तों, कुछ इच्छाएं बहुत महंगी नहीं होती, फिर भी उन्हें पूरा करना आसान नहीं होता। एक दिन उसने माँ को फोन किया, वही तीन सवाल, खाना खा लिया, थकती तो नहीं, सब ठीक है ना, और हर बार उसका वही झूठा जवाब, हाँ। दोनों जानती थी कि उन जवाबों में एक भी सच नहीं था, लेकिन कुछ रिश्ते सच बोलकर नहीं, एक दूसरे को बचाकर जीते हैं। बरसात के दिनों में एक शाम वो बिना रुके भीगते हुए कमरे तक चली आई। उसे लगा कि बारिश आंसुओं से ज्यादा ईमानदार होती है, क्योंकि उसे छिपाना नहीं पड़ता। उसी रात उसने पहली बार अपनी नई डायरी खोली और लिखा, आज शहर में आए 3 महीने हो गए हैं, यहाँ किसी को मेरा नाम नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं एक दिन मैं खुद ही अपना नाम भूल ना जाऊं। उसी शाम माँ का एक छोटा सा संदेश आया, मीरा अगर बहुत थक गई हो तो घर आ जाना, घर के दरवाजे लौटने वालों से कभी सवाल नहीं पूछते। मीरा देर तक उस संदेश को देखती रही। उसने कोई जवाब नहीं लिखा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार ऐसे आंसू निकले जिनमें हार कम थी और घर की याद ज्यादा। उसी पल उसके अंदर एक सवाल जन्मा, क्या कभी कभी लौट आना भी आगे बढ़ने का हिस्सा हो सकता है? उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसे इसी सवालों का जवाब ढूंढना होगा।
1: दोस्तों, हमारे आज का सवाल, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, जिसका आंसर है लॉर्ड विलियम बैटिंग। और उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी सलोनी
2: और उज्मा को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारी राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के 2 मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी 4 मॉड्यूल पूरे किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं को वैश्विक बाजार में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
3: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया हिमांशु रंजन की राम राम। और सुनाइए किसान भाइयों, कैसे हाल चाल हैं आपके? भैया देखो, हाल चाल तो ठीक होंगे और भैया आपकी खेती किसानी भी अच्छी चल रही होगी। और इस समय हमारे किसान भाई अपनी खरीफ फसलों की भैया देखभाल कर रहे होंगे। और भैया अगर खरीफ फसलों की बात करें तो हमारे किसान भाइयों के इस समय जो भैया मुख्य फसल है धान्य की, भैया वो है धान की फसल, तो उसकी देखभाल हमारे किसान भाई सही से कर रहे होंगे। और धान की बात करें तो भैया हमारी फसल लगभग 20 से 30 दिन की हो गई होगी, तो धान की रोपाई के 20 से 30 दिन बाद अधिक उपज देने वाली प्रजातियों में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि भैया 65 किलोग्राम यूरिया तथा सुगंधित प्रजातियों में 25 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 55 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की इतनी ही मात्रा की दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग रोपाई के लगभग 50 से 55 दिन बाद हमारे किसान भाइयों को करनी चाहिए। ध्यान रहे कि भैया टॉप ड्रेसिंग से पूर्व खरपतवार हमें अपने खेतों से निकाल देने चाहिए तथा टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक पानी ना खड़ा हो। साथ ही भैया खैरा रोग की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना या 20 किलोग्राम यूरिया को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर हमारे किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही भैया खेत की लगातार निगरानी बना के रखें। और इससे में भैया एक और बीमारी हमारे खेतों में आती है जिसे कहते हैं भैया बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी कि जीवाणु झुलसा। साथ ही इसके साथ आता है भैया जीवाणुधारी झुलसा रोग, इसका प्रकोप भैया बहुत ज़्यादा हमारे खेत में हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए 15 ग्राम स्टेप्ट्रोसाइक्लिन सल्फेट 90% प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% को 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP के साथ मिलाकर 500 से 7.5 लीटर पानी में घोल बनाकर भैया हमारे किसान भाई प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। एक बात का हमारे किसान भाई यहाँ पर ध्यान रखें कि स्प्रे भैया हमें साफ मौसम होने की दशा में ही करना चाहिए, तो इस बात का हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे। और भैया ये तो बात हुई धान के संबंध में, और भैया अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, वो भी भैया बहुत ज़रूरी है, वो है भैया पशुओं का चारा प्रबंधन। भैया बिल्कुल बेहद ज़रूरी है क्योंकि बरसात का ये मौसम चल रहा है, ऐसे समय में भैया पशु की देखभाल और चारा प्रबंधन पर विशेष हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। साथ ही हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं को केवल भरपूर चारा देने के बजाय संतुलित साफ और पौष्टिक आहार देना जरूरी होता है। बरसात में खेतों में भैया ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, ग्वार, नेपियर घास तथा अन्य हरे चारे उपलब्ध रहते हैं। हरा चारा पशुओं के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन उसे खेत से काटकर तुरंत बहुत अधिक मात्रा में हमें खिलाना, अपने पशु को भैया हम खिलाते हैं तो भैया इससे हमें बचना चाहिए। विशेष रूप से अत्यधिक कोमल और भैया जो हमारी हरे पत्तेदार वाली चारा है भैया उसे देने से हमें अपने पशु को भैया बचना चाहिए, क्योंकि इससे अपच हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, पेट फूलने जैसी समस्या हो सकती है। तो हरे चारे को काटने के बाद कुछ समय तक भैया उसको सुखाना चाहिए, साफ स्थान पर रखना चाहिए, फिर हमें अपने पशु को खिलाना चाहिए। किसान भाई इस समय पशुओं के आहार की बात करें तो भैया हम तो यही कहेंगे कि हरे चारे के साथ सूखा चारा जरूर हमें शामिल करना चाहिए अपने पशु के लिए, जैसे भैया भूसा है, सूखी ज्वार है, बाजरा है, उसकी कड़वी है या अन्य सूखा चारा पशु के पाचन तंत्र को आवश्यक रेशा उपलब्ध कराता है। केवल हरा चारा देने के बजाय हमें हरे चारे और सूखे चारे का संतुलित मिश्रण देना भैया जरूरी रहता है, या यूं कह दें कि भैया ये अच्छा रहता है। साथ ही एक बात का और हमें ध्यान रखना चाहिए कि अचानक पशु के आहार में हरे चारे की मात्रा बहुत अधिक नहीं बढ़ानी चाहिए। यदि पशु लंबे समय से सूखा चारा खा रहा है तो हरे चारे की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं, जिससे भैया हमारे पशु प्रभावित भी नहीं होगा और भैया हमारे पशु को हरा चारा मिलने लग जाएगा। दुधारू पशु के लिए केवल चारा पर्याप्त नहीं होता,
दूध देने वाले पशु को उनकी दूध उत्पादन क्षमता और शरीर की स्थिति के अनुसार संतुलित दाना भी देना चाहिए। दाने में हमारे किसान भाई सोच रहे होंगे कि भाई दाने में क्या खिलाएं, तो भैया अनाज, चोकर, खली तथा आवश्यकता के अनुसार खनिज मिश्रण का उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। अधिक दूध देने वाले पशु को अधिक पोषक आहार की जरूरत होती है भैया, जबकि कम दूध देने वाले पशु को उसी अनुपात में दाना हमें देना चाहिए। एक साथ बहुत अधिक दाना देने के बजाय इसे 2 या 3 बार में बांटकर हमारे पशु को अगर हम देंगे तो भैया बहुत अच्छा रहेगा। दाने की मात्रा निर्धारित करने के लिए स्थानीय पशु चिकित्सक या पशु पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेना भी जरूरी होता है। बरसात के मौसम में चारे के साथ खनिज मिश्रण और नमक की आवश्यकता को भी हमारे किसान भाइयों को नज़रअंदाज भैया नहीं करना चाहिए। खनिजों की कमी होने पर पशुओं में कमजोरी, दूध उत्पादन में कमी और प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही किसान भाई बरसात के दौरान जब हरा चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तब अतिरिक्त चारे को भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। और हमारे किसान भाई जान नहीं है कि वह कैसे सुरक्षित करते हैं, तो हमारे किसान भाई इसका साइलेज बना सकते हैं, जो कि भैया आने वाले समय में जब भैया अत्यधिक बरसात होती है तो हमारे किसान भाई

0: रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
6: अभी हमारे किसान भाइयों ने सुने कुछ ही जरूरी संदेश, और भैया चलते हैं फिर से खेती किसानी की। और किसान भाइयों, हम सब खेती तो करते ही हैं, और खेती की किसानी के साथ साथ भैया हम बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में भैया हमें पता होता है, और भैया साथ ही खेती किसानी के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। तो हमारे किसान भाई जानते हैं कि भैया एक ऐसी ही सुविधा है जिसको भैया हम EKCC के नाम से जानते हैं, यानी कि भैया इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड, इसको ई किसान क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो भैया ये किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा को डिजिटल और आसान तरीके से उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के समय बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, सिंचाई, कृषि मशीनरी तथा अन्य कृषि जरूरतों के लिए समय पर बैंक से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। किसान भाइयों को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि EKCC कोई मुफ्त आर्थिक सहायता या सब्सिडी नहीं है भैया, यह बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधा है। किसान को बैंक से स्वीकृत सीमा के अनुसार पैसा मिलता है और बाद में निर्धारित नियमों के अनुसार उसे वापस करना होता है। मान लीजिए किसी किसान को गेहूं की बुआई के समय बीज, उर्वरक, सिंचाई और मजदूरी के लिए लगभग 80,000 रुपये की जरूरत है, लेकिन उस समय उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यदि उसके पास KCC की स्वीकृत ऋण सीमा है तो वह अपनी जरूरत के अनुसार उस सीमा के भीतर बैंक से धन का उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार खरीफ फसल में धान, गन्ना, बाजरा, मक्का आदि के लिए कृषि कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए KCC उपयोगी हो सकता है। KCC का उपयोग केवल फसल बोने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि फसल उत्पादन से जुड़े खर्च, कटाई के बाद के खर्च, कृषि उपज के विपणन तथा कृषि गतिविधियों से जुड़ी कुछ अन्य जरूरतों के लिए भी इसकी जो सुविधा है वो किसानों को मिल सकती है। इसके अलावा भैया जो पात्र पशुपालक हैं या मत्स्य किसान हैं उनको भी भैया KCC के माध्यम से कार्यशील पूंजी की सुविधा दी जा सकती है। किसान भाई इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसके लिए भैया एक उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 एकड़ जमीन है और आप उसमें धान की खेती करते हैं। धान की रोपाई से पहले आपको बीज, नर्सरी, खाद, दवा, मजदूरी और सिंचाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। ऐसी स्थिति में KCC के माध्यम से स्वीकृत सीमा के अंदर ऋण का इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं। फसल तैयार होने और बेचने के बाद किसान उस राशि को बैंक में जमा कर सकते हैं। ऋण की वास्तविक सीमा और उपयोग की शर्तें बैंक द्वारा किसान की फसल, क्षेत्र, भूमि और निर्धारित मानकों के आधार पर तय की जाती है। EKCC की खासियत यह है कि किसान को बैंकिंग प्रक्रिया में डिजिटल सुविधा मिल जाती है। हालांकि डिजिटल आवेदन या प्रक्रिया उपलब्ध है या नहीं, यह संबंधित बैंक पर निर्भर करता है। किसानों को किसी भी जो अनाधिकृत बैंक है, एजेंट है, उसके बजाय भैया सीधे बैंक की आधिकारिक शाखा या अधिकृत डिजिटल माध्यम से आवेदन

0: अपना चाहिए। केसीसी के लिए अपनी पात्रता जानने के लिए किसान अपने नज़दीकी बैंक की शाखा में जा सकते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और पात्र सहकारी बैंक केसीसी सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। किसान भाई वहां जाकर पूछ सकते हैं कि उनके नाम पर पहले से केसीसी है या नहीं। यदि नहीं है तो भैया नया केसीसी बनाने के लिए क्या प्रक्रिया है। साथ ही भैया खेती करने वाले व्यक्तिगत किसान, इनके साथ साथ भैया जो किसान भाई संयुक्त रूप से खेती करते हैं तथा जो पात्र किराएदार हैं, पट्टेदार हैं या बटाईदार हैं, इन लोगों को भी भैया केसीसी के लिए ये पात्र होता हो सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित बैंक की आवश्यक शर्तें पूरी करते हों। इसलिए जिन किसान भाइयों के पास अपनी जमीन नहीं है लेकिन वे वास्तव में खेती करते हैं, उन्हें भी अपने बैंक से जो पात्रता है उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। केसीसी बनवाने के लिए किसानों को सामान्यतः अपनी पहचान, बैंक खाते, खेती या भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज बैंकों में भैया दिखाने पड़ते हैं। दस्तावेजों की सटीक सूची किसान की स्थिति और बैंक के नियम के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले बैंक से आवश्यक दस्तावेजों की सूची जरूर ले लें। किसान भाई केसीसी का इस्तेमाल करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जितनी जरूरत हो उतना ही ऋण लें और समय पर भुगतान कर दें। समय पर भुगतान करने से किसान को लागू सरकारी ब्याज सहायता, जिसको भैया प्रोत्साहन का लाभ भी मिल सकता है, और भविष्य में बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने में भी आसानी हो सकती है। साथ ही भैया एक बात का और हमें ध्यान रखना है, यह समझना जरूरी है कि केसीसी और पीएम किसान की ए केवाईसी जो है वो अलग अलग है। पीएम किसान की ई केवाईसी किसान की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया है, जबकि केसीसी खेती के लिए बैंक ऋण सुविधा है, इसलिए केवल पीएम किसान की ई केवाईसी कराने के लिए केसीसी अपने आप नहीं बन जाता। उसके लिए भैया हमें बैंक शाखाओं में जाकर अपने जो भी हमने दस्तावेज बताए हैं भैया वो लेकर जाएं, तो आप वहां जाकर पता कर सकते हैं कि भैया आपकी केसीसी पहले से है या अगर आपको नई बनवानी है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों ये तो बात हुई ई केसीसी पर। उम्मीद है भैया आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भैया अब खेती किसानी के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और भैया अब समय हो गया है आपको एक जानकारी सुनवाने का, जिसका हमारा विषय है दुधारू पशु में बांझपन की समस्या व समाधान। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिव शंकर कटियार, तो आइए सुनते हैं उनसे फोन पर की गई ये बातचीत। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर शिव शंकर कटियार जी, जो कि पूर्व सह प्राध्यापक हैं पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग आरएसएम महाविद्यालय धामपुर में, और आज आपसे बातचीत का हमारा विषय है दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या व समाधान। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो सर जैसे कि आज का हमारा विषय है दुधारू पशु में बांझपन की समस्या व समाधान विषय पर, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बांझपन क्या है।
1: ये देखिए, जैसा कि आपका आज का टॉपिक है दुधारू पशुओं में बांझपन,
0: जी
1: तो ये बांझपन आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या है। हम बहुत अच्छा नस्ल पशु का चुनाव करते हैं, अच्छा सा उनको खिलाते पिलाते हैं और अच्छे समय पे हम उसको उम्मीद करते हैं कि वो उत्पादन करेगा, चाहे वो बच्चा पैदा करे चाहे वो दूध दे। परंतु यदि पशु बांझ हो गया, ये बांझ का मतलब है उसको बच्चा पैदा करने की क्षमता खो देना।
0: जी
1: तो ये दोनों तरीके के पशु में होता है। नर पशु में ये नपुंसकता आती है कि जो उसका जननांग द्रव्य होता है, वीर्य जिसे कहते हैं, उसमें वो किसी को गर्भित नहीं कर सकता है, वो उसकी क्षमता खो देता है, इसीलिए उसको कहते हैं नपुंसकता।
0: जी
1: और जो हमारे मादा पशु हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी जितने भी मादा पशु हैं, इनका है कि जब सांड गर्भित करेगा तभी वो गर्भ धारण करेंगे और तभी बच्चे पैदा करेंगे। तो उनमें सांड भी बहुत अच्छा है मगर उनमें भी क्षमता खो जाती है, तो वो ना तो गर्भ धारण कर पाते हैं और ना बच्चा पैदा कर पाते हैं, और ये अवस्था लंबे समय तक चलती रहती है। तो उसी को हम कहते हैं कि ये बांझ हो गया,
0: जी
1: बच्चा पैदा ना कर पाना बांझ कहलाता है। तो ये आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या है। हमारा बहुत अच्छा पशु है जो बहुत

0: कीमती भी है, हम उसको खिला पिला रहे हैं और वो जब अगली संतान पैदा नहीं कर पाती तो हमारे लिए वो किसी काम का नहीं रह जाता है, और
1: जी
0: एक हमारा अच्छा कीमती पशु बिल्कुल बेकार हो जाता है, और हमारी मेहनत भी खराब हो जाती है, हमारा समय भी जाता है, धन की भी बर्बाद होती है और निराशा भी आ सकती है। तो ये जो बांझपन है ये ज्यादातर भैंस वैंस के पशुओं में अधिक प्रभावित करता है, गाय को इतना कम करता है। तो ये जो पशु होते हैं इसमें चाहे दोनों तरीके से समस्या पैदा हो सकती है, चाहे हम ये नहीं है कि दो तरीके से हम गर्भधारण कराते हैं, एक तो हम प्राकृतिक कराते हैं जिसमें हम नर मादा को मिलाते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं कृत्रिम गर्भाधान जिसे कहते हैं, तो वो भी चाहे करवाएं तो किसी भी तरीके से करवाने पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और
1: जी
0: उसका अल्टीमेटम गर्भ नहीं ठहरता है। तो ये जो समस्या है आज बांझपन की, इसका सही अगर हम शब्दों में अगर वर्णन करें तो इसको असंसेचनता का नाम देना चाहिए कि जिसमें सेचन होता ही नहीं है।
1: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि किस प्रकार से हम अपने पशु को पहचान सकते हैं कि
0: जी
1: हमारा पशु बांझ हो गया है।
0: जी
1: सर आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि बांझपन की समस्या क्या है और इसे किसी और नाम से भी जाना जा सकता है क्या?
0: जी जी इसके बहुत सारे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं इसको समझने के लिए, जैसे ये तो बांझपन तो एक अमुख है, हमने कहा कि असंसेचनता इसका नाम होना चाहिए कि सेचन की क्षमता चाहे नर हो या मादा हो खत्म हो जाती है, तो इसके अन्य नाम इसको बंधता भी कहते हैं, अनुर्वरता भी कहते हैं, विसंक्रमणता भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको स्टरिलिटी कहते हैं।
1: जी
0: तो इन नामों से ये ज्यादातर प्रचलित है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसको जाना जाता है।
1: जी जी बिल्कुल सर,
0: जी
1: आपने बहुत अच्छा बताया कि हम इसे
0: जी
1: किसी और नाम से भी कैसे
0: जाना
1: जान सकते हैं।
0: जी जी
1: सर आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि बांझपन की क्या एक ही अवस्था होती है या के भी कई और प्रकार होते हैं?
0: देखिए बांझपन कोई रोग नहीं है, बांझपन एक व्याधि है, एक समस्या है, और ये समस्या क्या होता है कि हम अगर इसका ध्यान ना दें तो ये पूर्णकालिक हो जाती है और हमें अल्टीमेट फिर हमारा पशु जो चाहे जितना कई लाख का लाए हो उसकी कीमत कुछ भी नहीं रह जाती है कि उसकी उर्वरता खत्म हो गई। मिट्टी की उर्वरता अगर खत्म हो जाती क्या उसमें आप कोई उत्पादन कर सकेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये समस्या के तौर पर देखा जाए तो ये दो तरीके की बांझपन पशुओं में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, एक तो स्थायी होती है।
1: जी
0: स्थायी का मतलब होता है कि अगर पशु बांझ हो गया तो हम फिर उसको कुछ भी करें, और इसका कारण है हमने अनदेखी की, सही समय पर उसकी देखभाल नहीं की, कुछ ऐसे कारण है जो धीरे धीरे चलते रहे और पशु में उसकी जो जननांग है जो उसको प्रजनन जनन करने के अंग है वो प्रभावित हो जाते हैं और उसमें स्थायी रूप से उसका कोई इलाज नहीं, इसको कहते हैं स्थायी बांझपन।
1: जी
0: कुछ बांझपन ऐसी स्थितियां होती हैं कि हमें बीच में पता चल जाता है तो हम उसको अभी पूरी तरीके से बांझ नहीं हुआ है, चाहे उसकी हार्मोनल स्थिति हो, चाहे उसकी एनाटॉमिकल स्थिति हो, चाहे उसकी मैनेजरियल, मगर हमने उसको बीच में समझ लिया तो समझने के बाद हमने उसका उपाय किया और दोबारा फिर पशु बच्चा देने लग गया, फिर उसको गर्भ धारण करने लग गया, तो उसको कहते हैं अस्थायी बांझपन। जी
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा सर, जैसे हम दुधारू पशुओं की बात कर रहे हैं तो क्या दुधारू पशुओं में ये ज्यादा नुकसान पहुंचाता है?
0: दुधारू पशुओं में हमारा सीधा मतलब होता है हमारे देश में जो पशु पालता है किसान उसका मुख्य कारण होता है कि दूध प्राप्त करना।
1: जी
0: बच्चा तो उसको गिफ्ट में मिलता है, तो दुधारू पशुओं में ये सबसे ज्यादा बांझपन का मतलब है, जब वो बच्चे ही नहीं देगा तो दुधारू पशु प्रभावित होगा ही।
1: जी
0: तो दुधारू पशु एक बार आपने एक बांध ब्याया, दो बांध ब्याया, फिर उसने ब्याना बंद कर दिया तो दूध मिलना बंद हो जाता है। तो इसका प्रभाव खास तौर से सीधी समस्या से मतलब है, एक तो गर्भ धारण की समस्या पैदा हो जाती है और दूसरी संतानोत्पत्ति की समस्या पैदा हो जाती है। अब दूध तो जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तभी तो दुग्ध उत्पादन होगा, तभी तो हमें बच्चा मिलेगा, और जब बच्चा मिलेगा तो उसकी जनरेशन बढ़ेगी, हमारा जो हर्ड है जो पशु झुंड है ये जो संख्या हम खरीद के पूरी थोड़ी कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रतिशत जो हमारे पशु एक निश्चित समय पर बच्चा पैदा करते हैं उससे हमारा झुंड। तो दुधारू पशुओं को तो सबसे ज्यादा नुकसान है, हमारा दुधारू पशु हम लाए हैं वो बिल्कुल जीरो पहुंच जाता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया। आगे हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि यदि हमारा पशु कोई

0: बांझपन की समस्या से ग्रसित हो गया है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे उसका निदान करेंगे?
1: देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि जैसे कि फर्टिलाइजेशन अगर हो गया, निषेचन हो गया, तो उसमें एक बदलाव हो जाता है, एक ओवरी में कार्पस ल्यूटियम बन जाती है और कार्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करती है। किसके अंदर? पेट में बच्चा कब से कब कैसे रुकेगा जो बाहर ना निकलने पाए। इस्ट्रोजन का लेवल खत्म हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये कार्पस ल्यूटियम फाल्स हो जाती है, असत्य, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और कार्पस ल्यूटियम बन जाती है, तो इसको धोखा हो जाता है। आपको पशु बिल्कुल आपको ये लगा गाभिन हो गया, और अगर ये कार्पस ल्यूटियम नहीं हटवाई तो कार्पस ल्यूटियम में इसमें कोई इलाज नहीं करना होता है। हम उसके हाथ डाल के उसको जो हस्त विधि है उसमें हम कार्पस ल्यूटियम को मसल देते हैं, तो वो पूरी तरीके नष्ट हो जाती है और गाय में फिर गर्मी में आ जाती है। तो ये कार्पस ल्यूटियम जो स्थायी कार्पस ल्यूटियम अगर बन जाए तो इसकी जांच जरूर समय समय पर करवाना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: दूसरा, अगर कोई सिस्ट बन जाता है, ओवरी में बन सकता है, गर्भाशय में बन सकता है, गर्भाशय ग्रीवा में बन सकता है, सर्वेक्स में बन सकता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है वहां पर बन सकता है, जो डक्ट होती है जिसके अंदर स्पर्म मिलता है जाके, तो
0: जी
1: वहां पर सिस्ट है, तो इसको समय समय पर अगर रसौली या कोई आपको गांठ दिखाई देती है उसको जांच करवाएं और उसको खत्म करवाते रहें। पशुओं में योनि शोथ भी हो जाता है, टीबी की तमाम बीमारी होती है तो उसको योनि शोथ होता है, गर्भाशय शोथ होता है, गर्भाशय ग्रीवा शोथ होता है। गर्भाशय ग्रीवा का मतलब है कि जो गर्भाशय और जो वजाइना होती है उसके बीच में एक अंग होता है, इसको कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। तो
0: जी
1: उसके अंदर अगर ग्रोथ हो गई या सिस्ट बन गई तो फिर उसका मुंह ना खुलेगा ना बंद होगा, तो वो कुछ समय के लिए खुलता है, जैसे ही गर्भ धारण कर लेता है बंद हो जाता है, और जैसे ही प्रसव हो जाता है फिर हीट साइकिल आने लगती है, वो बंद हो जाता है। अब पता लगा कि परमानेंट बन गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, उसकी जांच करवाएं और अगर जो उसमें सिस्ट बनी हुई अगर वो हटा दी गई तो पशु फिर गर्भ धारण करने लगेगा।
0: जी
1: तो कभी कभी गर्भाशय में तनाव हो जाता है तो उसका तनाव सूजन हो जाती है, इस पे भी जांच करें, और कभी कभी ओवरी बहुत छोटी हो जाती है तो समय समय पर उसकी जांच करवाएं। इसका निश्चित एज के हिसाब से उसका साइज होना चाहिए, ज्यादा फूली हुई भी नहीं होना चाहिए ज्यादा, हर वर्ग के पशुओं में अलग अलग ओवरी का साइज होता है, जितने वंश के पशु हो तो औसत जितने हैं उसी हिसाब से रहना चाहिए। तो योनि में कभी कभी क्या होता है, योनि हर समय फूली रहेगी तो उसका सही तरीके से ना तो मैटिंग होगी, उसको प्रॉब्लम रहेगी, तो ये छोटी छोटी जाते। दूसरी चीज है उसका जो सिक्रीशन होता है योनि का, उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, तो इसकी भी जांच करानी चाहिए। वो बिल्कुल साधारण सी चीजें हैं, तो एक निश्चित अम्लत्व की मात्रा होनी चाहिए। अगर उसमें ज्यादा एसिडिटी है उसी समय आपने अगर सर्विस करा दी तो वो जो पीएच है तो पीएच एक निश्चित पीएच पर ही स्पर्म रहता है, अन्यथा फिर उसको दिक्कत होती है। तो वो अगर एसिड है तो वो संक्रमण ज्यादा करेगी, उसमें बदबू आएगी और समस्याएं पैदा करती, तो उसकी एसिडिटी की जांच करवा समय समय पर। पूरे जनन अंग में कहीं रसौली तो नहीं, चाहे वो अंडाशय में हो, चाहे वो गर्भाशय में हो, चाहे गर्भाशय ग्रीवा में हो, चाहे वो जो गर्भनाल हो उसमें अंडा जिससे आता है वहां पर जो वाहिनी होती है उसमें भी नहीं होना चाहिए, ये जांच करवाना चाहिए। दूसरा एक और चीज है, भग शोथ भी पैदा हो जाता है, तो योनि शोथ भी इसको कहते हैं। तो ये समय समय पर आप ध्यान देंगे, अगर ये चीजें विकार पैदा नहीं है तो पशु का जनन अंग सही समय पे काम करेगा, सही समय पे गर्भ धारण करेगा।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बताया कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई अपने पशु को पहचान सकते हैं और उसका निदान कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो बांझपन की समस्या है, इसकी रोकथाम और उपचार के क्या क्या उपाय हमारे किसान भाई कर सकते हैं जिससे इससे बचा जा सके?
1: देखिए, हमने अभी जितना भी बात हुई तो उसमें बहुत सारे पहलुओं पे हमने प्रकाश डाला है। तो कहते हैं कि चिकित्सा की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, रोकथाम सबसे अच्छी प्रक्रिया है, उसमें धन की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है, और जो

0: है, आप पे निर्भर है, तो
1: जी
0: अच्छा प्रबंध होना चाहिए। संतुलित आहार, आहार का मतलब है हम कुछ भी खिला देते हैं वो पर्याप्त नहीं है, तो आहार का मतलब है संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब है जितनी शरीर को जरूरत है, जितनी आवश्यकता है वो पूरा करे। तो पशुओं को संतुलित आहार, अगर गर्भिणी है, गर्भ धारण कर चुकी है, तो जो गर्भ धारण का जो वो राशन है, जिसको कि गर्भ की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, अवश्य खिलाए, मगर लोग नहीं करते हैं तो नहीं होते हैं, बच्चे कमजोर होगा, सही से प्रसव नहीं होगा, बच्चे गिर जाएगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी, क्योंकि अभी तो वो माँ के शरीर से लेता है और हम माँ के शरीर में डाल रहे हैं, तो संतुलित आहार अवश्य खिलाए।
1: जी
0: दूसरा, हार्मोन की जांच कराए, अगर सही समय पर गर्मी में नहीं आ रही है, सही समय पर गाभिन नहीं हो रही है, तो उसके हार्मोन्स में कोई कमी है तो हार्मोन्स की जांच हो जाती है, उसको करवाए। पशु के व्यवहार में निगरानी रख, पशु का हमारा जो व्यवहार होता है वो सब कुछ बताता है, सब कुछ प्रदर्शित करता है, मगर हम ध्यान नहीं देते। गर्मी के लक्षण आ गए, हमारे पास समय नहीं है ले जाना, नहीं है तो नर सांड नहीं है आसपास, हम लेके गए, घूमते रहे, वापस आ गए, तो समय बर्बाद हो जाता है और पशु भी बर्बाद हो जाता है। तो
1: जी
0: व्यवहार में निगरानी रखें, कि अभी हमने बताया कि तीन स्टेज होती है, और हमें उसको गर्भ धारण चाहे कृत्रिम कराए चाहे प्राकृतिक कराए, मेट स्ट्रेस अवस्था में ही कराए, डाई में चला गया तो आप भले ही गाभिन करवा के लाए, वो गर्भ धारण नहीं करेगी। तो जननेन्द्रीय रोगों से बचाएं पशुओं में, जहां आसपास फर्श साफ होना चाहिए, किसी के सांड से नहीं मिलाना चाहिए, नहीं सांड जननेन्द्रिय रोग से ग्रसित है, वो आपके गाय पे बैठ पे वो चढ़ गया और उसने एक रोग फैला दिया उसको, तो पूरा जनन अंग उसके खराब हो जाते हैं। अगर कृत्रिम गर्भाधान कराएं तो सही दक्ष और सही जगह पे कराएं, क्योंकि उसमें जो यंत्र उपकरण प्रयोग किए जाते हैं उनका स्टेलाइजेशन सही हो, उसका यूज सही हो, सीमन कैसा डाला जाता है उसकी जांच के डाला जा रहा, मृत सीमन डाल देंगे गर्भ धारण कहाँ से होगा, तो
1: जी
0: जान लें वो वाइटल है, सक्रिय है कि नहीं है, तो जांच कर उपरांत ही उसको पर्याप्त मात्रा में डलवाएं। तो सबसे ज्यादा यंत्र उपकरणों से होता है, लोग साफ सफाई नहीं करते हैं और जननेन्द्रिय रोग लगा देते हैं और गर्भाधान नहीं होता है, बच्चा नहीं होते है। तो जिस सांड से मिलाए उसको सही तरीके से जननेन्द्रिय रोगों की जांच करवाते रहें, ऐसा नहीं है गाय की जांच करवाए भैंस की, जिससे सांड मिलवाते उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, उसको कौन कौन सा रोग, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे सांडों के रोग पता चल जाते हैं। दूसरा, हमें पशु का इतिहास जरूर जान लेना चाहिए, इतिहास होता है जो पेशेंट हिस्ट्री या पशु का इतिहास, कि वो उसने कभी भी असाधारण प्रसव तो नहीं हुआ है, जेर तो नहीं गिरी है, या गर्भपात तो नहीं है, या अनियमित रिथमती तो नहीं हो जाती, पता लगा कि 21 दिन के 2 बार हो गई, हमें कंफ्यूज हो गया, हम सही काम नहीं, योनि से कोई सही तरीके का श्राप तो नहीं निकल रहा है, तो ये सब उपाय करना चाहिए। और यदि ये इसका सामंजस्य गंदगी से हो गया तो इसको जननेन्द्रिय रोग पैदा हो जाते हैं, ममाद पड़ जाता, बहुत सारी समस्याएं होती हैं।
1: जी,
0: वीर
1: बिल्कुल
0: की जांच मैंने बताया, वीर में कितने शुक्राणु हैं, अब पता लगा कितने मृत हैं, कितने जिंदा हैं, कितने उसमें सक्रिय हैं, कितने निष्क्रिय, कुछ शुक्राणु ऐसे हैं कि वो अबनॉर्मल है, पता लगा कि एक हेड और एक टेल होना चाहिए, पता लगा उसके 2 हेड हैं, तो वो एबनॉर्मल होते हैं, अगर ऐसे वीर में ज्यादा है तो बिल्कुल फर्टिलाइजेशन, तो बार बार हम अगर ऐसे गर्भित कराते हैं इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं और रिजल्ट भी अच्छे नहीं होते। हमें समय समय पर अपने पशु को पशु चिकित्सक से जरूर परामर्श लेना चाहिए, दिखाना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, पशु चिकित्सक एक बार में देख के आपको सारी समस्याओं का निदान बता सकते हैं, आपको केवल उपाय करने हैं, उपाय अमल में लाने, तो
1: बिल्कुल
0: ये नहीं है कि आप पशु के हम खुद ही डॉक्टर हो गए, खुद ही समझ नहीं पा रहे, कोई गंभीर समस्या है, उसके जनन अंग में सूजन है, कोई समस्या है कि बच्चा देर से जेर देर से नहीं, तो हम डॉक्टर से परामर्श जरूरी, तो
1: बिल्कुल
0: अगर हम ये सारे उपाय अपनाएंगे तो आपका पशु समय से गर्भ धारण करेगा, निश्चित समय गर्भकाल के बाद वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगा। अगर
1: बिल्कुल
0: ये नहीं, तो अगर बार बार करते तो बांझपन का शिकार हो गया, तो हमारा कीमती पशु भी बेकार हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बताया आपने कि किसान भाई किस प्रकार से इसकी रोकथाम और उपचार कर सकते हैं। तो
0: जी
1: डॉक्टर साहब, आज आपने दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या व समाधान विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, किसान भाइयों को भी नमस्कार।
2: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे जानकारी जिसका विषय था दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या व समाधान। और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शिव शंकर कटियार। देखिए किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी

जानकारी आपको दी, और उम्मीद है कि भैया आप अपने पशु की अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से साफ सफाई पर ध्यान रखेंगे, और भैया जब हमारा पशु स्वस्थ होगा तो भैया उसे कोई भी समस्या नहीं आएगी, और भैया हम जब हमारा पशु स्वस्थ होगा तो भैया हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा, और भैया जब उत्पादन मिलता है तो भैया दिल हमारा खुश होता है, प्रसन्न होता है। और भैया शाम का भी समय हो रहा है और हमारे किसान भाई इंतजार कर रहे होंगे गीत संगीत का, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं वीर सिंह की गाई ये प्यारी सी रागनी।

सिंह शर्मा व साथियों की आवाज़ में प्यारी सी रागनी सुनी, और उम्मीद है कि भैया आपका मनोरंजन हो गया होगा। और भैया देखो, अब घड़ी भी इस ओर इशारा कर रही है कि भैया और बातचीत की इजाज़त नहीं दे रही है। तो उठाइए कागज़ और कलम और लिखिए हमारे कार्यक्रम का पता। पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन है भैया 2467-63। साथ ही भैया एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। नंबर है 9457-07-82-88। तो अब भैया अपने भैया हिमांशु रंजन को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता। आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियां। वार्ताकार हैं डॉक्टर नेहा चौहान।
1: आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक विषय है। यद्यपि आज महिलाएं शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल और व्यापार जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, फिर भी उनके सशक्तिकरण के सामने अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण के सामने मौजूद चुनौतियां केवल सामाजिक या आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मानसिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और कानून स्तर पर भी गहराई से जुड़ी हुई है। आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है, परंतु इसके समक्ष चुनौतियां भी निरंतर समय के साथ बदल रही हैं। मानसिक उत्पीड़न और भावनात्मक दबाव जैसे महिलाओं को अक्सर परिवार और समाज की अपेक्षाओं का भारी दबाव झेलना पड़ता है। उनके निर्णय को गंभीरता से ना लेना, उनकी उपलब्धियां को कम आंकना तथा निरंतर आलोचना करना उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। जैसे कि ग्रामीण शहरी असमानता की अगर हम बात करें, तो शहरी क्षेत्र में महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण सशक्तिकरण की गति धीमी रहती है। निर्णय लेने की अस्वतंत्रता का अभाव भी कई परिवारों में महिलाओं को अपने करियर, विवाह, मातृत्व या जीवन शैली से जुड़े निर्णय स्वयं लेने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। यह उनकी व्यक्तिगत पहचान और आत्मनिर्भरता को सीमित करता है। अगर हम बात करें असंगठित क्षेत्र में शोषण की, तो घरेलू कामगार, खेत मजदूर या छोटे उद्योगों में कार्यरत महिलाओं को उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा नहीं मिलती। स्वास्थ्य और पोषण में अपेक्षा कर अगर हम देखें, तो कई परिवारों में महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती। कुपोषण, एनीमिया और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उनके समग्र विकास में बाधा बनती हैं। आधुनिक युग को विकास, शिक्षा, तकनीक और समानता का युग माना जाता है। महिलाओं ने शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, व्यवसाय और राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके बावजूद वास्तविक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को अभी भी कई सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आधुनिकता के बावजूद समाज में कई हिस्सों में पुरुष प्रधान सोच अभी भी मौजूद है। महिलाओं को परिवार और समाज में पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। उनके निर्णय लेने के अधिकार सीमित होते हैं। कामकाजी महिलाओं को घर और नौकरी दोनों की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। घरेलू कार्यों में सहयोग की कमी के कारण उन्हें मानसिक और शारीरिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। समान कार्य

करने के बावजूद महिलाओं को कई क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। उच्च पदों पर भी महिलाओं की संख्या कम है, जिसे ग्लास सीलिंग की समस्या कहा जाता है। कई परिवारों में महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता नहीं दी जाती। मातृ स्वास्थ्य, एनीमिया और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उनके विकास को प्रभावित करती है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बाल विवाह अभी भी एक गंभीर समस्या है। कम उम्र में विवाह और मातृत्व महिलाओं की शिक्षा और करियर को बाधित करता है। अगर हम देखें आज के युग में कि विज्ञापनों और मनोरंजन माध्यमों में महिलाओं को अक्सर वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इससे समाज में उनके प्रति गलत धारणाएं बनती हैं और आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कानूनी जागरूकता की अगर हम बात करें तो महिलाओं में अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनकी जानकारी और उनका सही उपयोग के अभाव में महिलाएं उनका लाभ नहीं उठा पाती। गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा के कारण कई महिलाएं मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और यौन शोषण का भी शिकार हो जाती हैं। परिवार, समाज और संस्थागत स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। इससे उनकी नेतृत्व क्षमता विकसित नहीं हो पाती। अगर देखा जाए तो ग्रामीण शहरी असमानता, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सीमित साधन ही उपलब्ध होते हैं। समाज में महिलाओं से आदर्श बेटी, एक पत्नी और माँ बनने की अपेक्षा की जाती है। इन पारंपरिक भूमिकाओं के कारण उनके व्यक्तिगत सपनों और महत्वाकांक्षाओं को अक्सर दबा दिया जाता है। कई परिवारों और समुदायों में महिलाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सुरक्षित परिवहन की कमी और सामाजिक नियंत्रण उनके शिक्षा और रोजगार के अवसरों को सीमित करते हैं। कई महिलाएं बैंकिंग, निवेश, बीमा और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी से वंचित रहती हैं। इससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद वित्तीय निर्णयों में पीछे रह जाती हैं। कुछ पेशों को पुरुषों का क्षेत्र और कुछ को महिलाओं का क्षेत्र माना जाता है। यह सोच महिलाओं की करियर पसंद और पेशेवर विकास को भी सीमित करती है। महिलाओं के लिए अनेक सरकारी योजनाएं और कानून बनाए गए हैं, लेकिन जागरूकता, पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में उनका लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाता। शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को लंबी कार्य अवधि, यात्रा का तनाव, महंगी जीवन शैली और बच्चों की देखभाल जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अविवाहित, तलाकशुदा या अकेले रहने वाली महिलाओं को घर किराए पर लेने, सामाजिक स्वीकृति और सुरक्षा से जुड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यौन हिंसा, उत्पीड़न या भेदभाव के अनुभव महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक भागीदारी को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। आपदाओं की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे जल संकट और पर्यावरणीय समस्याएं का प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वे पानी, ईंधन और भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाती हैं। जाति, वर्ग, धर्म, विकलांगता और भौगोलिक स्थिति के आधार पर महिलाओं को कई स्तरों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका सशक्तिकरण और कठिन हो जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की पहुंच कम होती है, विशेषकर ग्रामीण और गरीब परिवारों में महिलाओं को तकनीकी संसाधन प्राथमिकता से नहीं दिए जाते। कई महिलाएं स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट का सही उपयोग नहीं करना जानती। तकनीकी प्रशिक्षण और जागरूकता के अभाव में वे ऑनलाइन सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाती हैं। महिलाओं को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, साइबर स्कॉटिंग, फेक प्रोफाइल, अश्लील संदेश और ऑनलाइन ब्लैकमेल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे वे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में असुरक्षित महसूस करती हैं। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट डेटा की लागत कई महिलाओं के लिए वहन करना कठिन होता है। आर्थिक निर्भरता भी तकनीकी संसाधनों तक उनकी पहुंच को सीमित करती है। कुछ परिवारों और समुदायों के इंटरनेट और सोशल मीडिया

0: उपयोग को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, जिससे उनकी डिजिटल स्वतंत्रता बाधित होती है। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई और डिजिटल लेन देन के दौरान धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड का खतरा रहता है। जानकारी के अभाव में महिलाएं आसानी से इसका शिकार हो जाती हैं। आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है, जिससे तकनीकी नेतृत्व में लैंगिक असमानता बनी रहती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिकांश सामग्री अंग्रेजी या सीमित भाषाओं में उपलब्ध होती है। स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री की कमी महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग, फोटोमॉर्फिंग और पहचान चोरी जैसी समस्याएं महिलाओं के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती है।
1: कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत श्रोता सुन रहे थे वार्ता। आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियां। वार्ताकार थी डॉक्टर नेहा चौहान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:55 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। प्रस्तुत है फिल्म चुपके चुपके का एक गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और धुन तैयार की है SD बर्मन ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म कोयला का एक गीत जिसे आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति ने। गीत को लिखा है राजेश रोशन ने और संगीत दिया है इंदिवर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म कोयला में कविता कृष्णमूर्ति को, जिसे लिखा था इंदिवर ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत, जिसे आवाज दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने। शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मुकेश और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:10 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समूह स्वर में ये देशगान।

समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के विषय में। आज शाम 7:32 पर कानून की बात आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:45 पर श्रोता आनंद लेंगे कुलवंत सिंह के गाए शब्दों का। संसद समीक्षा रात्रि 8:00, चर्चा का विषय है रात्रि 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 श्रोता सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत नौसेना की नौकायन परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा का हिस्सा रही महिला अधिकारी विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी, लेफ्टिनेंट कमांडर यमुना नाइकॉम से विशेष बातचीत। समय याद रखिएगा रात्रि 10:00। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। और अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कल सवेरे 6:05 पर श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान श्रोता सुनेंगे सवेरे 6:30 पर। करमवीर सिंह का काव्य पाठ आप सुनेंगे 6:45 पर कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा गर्भवती महिला का आहार। समय होगा प्रातः 7:05। कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा अमरूद के बागों में समसामयिक कार्य। समय होगा 7:10 पर। जानकारी और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुबह 7:31 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सुबह 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे नरेंद्र की गाई रागनी। कल दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कल दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे रविंद्र वर्मा के गाए जौनसारी लोकगीत। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे 4 हमारे दिल्ली केंद्र से। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम का प्रसारण होगा कल शाम 5। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत कल शाम 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे कव्वाली। गायक कलाकार होंगे नुसरत अली और साथी। समय होगा कल शाम 7:32। संसद समीक्षा कल रात्रि 8। कंट्रीवाइड और इनसाइट्स रात्रि

0: 9:30 पर संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात्रि 10 बजे। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को बायो एनर्जी राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर को मिला 1st स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया पुरस्कृत। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के व्यवस्था संचालन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभव का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम 3 नाम की सूची तैयार करेगी, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: कल से शुरू हुई प्रक्रिया के दौरान 18 आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय चयन समिति ने कल पहले दिन करीब 10 आवेदकों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें रिटायर IAS अधिकारी दिनेश चंद्र, रिटायर IPS अधिकारी राजेश पांडे भी शामिल रहे। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभवों का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम 3 नाम की सूची तैयार करेगी। ये नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
5: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी की राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो के दूसरे दिन आज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाही ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते प्रदेश में 17 मिलियन टन कृषि अपशिष्ट की क्षमता है, जो ऊर्जा परिवर्तन और नए निवेश का सबसे बड़ा आधार बनेगी।
7: देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगले दिनों में, जैसा आज ही आपके अपने प्रेजेंटेशन में आया कि कंप्रेस्ड बायो गैस

0: में भी हम देश में सर्वाधिक उत्पादन कर, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की तस्वीर।
1: कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा भी शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 8 सितंबर से लगातार 3 दिन करने का निर्णय लिया है। जस्टिस एवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने कहा कि अभ्यर्थी लंबे समय से दुविधा की स्थिति में हैं, उनके भविष्य को लंबे समय तक अधर में नहीं रखा जा सकता। कल मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि वह इस मामले से जुड़ी सूची तैयार करें जिसमें यह सुनिश्चित हो कि किन किन पक्षों को इस मामले पर सुना जाना है। लोकसभा ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक विचार विमर्श के लिए विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग में गोरखपुर जिले का बांस गांव विकास खंड 1 चुना गया है। यह जानकारी नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में दी गई है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोरखपुर को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी मिली है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का जोर समावेशी विकास के जरिए नागरिकों के जीवन में सुगमता और गुणवत्ता की वृद्धि और समग्र रूप में जीवन स्तर के सुधार पर होता है। इसके अंतर्गत 5 थीम स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत ढांचा और सामाजिक विकास के कुल 39 संकेतकों पर संबंधित आकांक्षी ब्लॉकों का मूल्यांकन किया जाता है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत प्रदेश के कई जिलों में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम मुख्यालय से गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल ने साइकिल रैली का आयोजन किया। वहीं बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल, अमरोहा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मन में राष्ट्रीयता और एकता की भावना को मजबूत करना।
2: तिरंगा यात्रा आज जो पूरे प्रदेश में देश में निकाली जा रही है, ये हमारे उन तमाम जो जिनकी बलिदानी हुई है स्वतंत्रता सेनानियों की याद में उनको नमन का दिन है। और ये तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है बल्कि एकता, समृद्धि और विकास, 140 करोड़ लोगों का संबल है।
1: हापुड़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को 2.5 लाख झंडे बनाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव अनवरपुर के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हेमलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अभियान के लिए आभार जताया है।
3: हमारे SSG अधिकारियों ने हमें 10,000 झंडे का टारगेट दिया था बनाने के लिए, हमने वो लक्ष्य पूरा किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ कार्य करने को मिला महिलाओं के लिए। और पहले गांव में महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, हम SSG से जुड़े तो हमें बाहर जाने का अवसर मिला और हम बहुत खुश हैं इस चीज।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। राज्यपाल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।
4: नशा किसी भी युवक की शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। यह व्यक्ति से उसका विवेक, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, परिवार का विश्वास और जीवन का उद्देश्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र की युवा शक्ति को सुरक्षित रखने का जन आंदोलन है।

0: 16वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए उत्तर प्रदेश की महिला हॉकी टीम का चयन कर लिया गया है। टीम का कप्तान वंदना पटेल को बनाया गया है। प्रदेश में कल से एक बार फिर मॉनसून सक्रिय होगा, जिससे 18 अगस्त तक राज्य में व्यापक बारिश की संभावना है। उधर पहाड़ों पर लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण फरुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। जिलाधिकारी अंकुर लाठर ने बताया कि प्रशासन ने सभी इंतजाम किए हैं।
1: दिलीप की मड़ैया में कटान की शिकायत थी, तो वहाँ कटान हुआ था। 25 जो मकान है वो भी बह गए थे, तो उन सभी को राहत धनराशि भी दी जा रही है 1,20,000, और उन लोगों को पट्टा भी दिया जा रहा है। और शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है, क्योंकि गांव में बच्चे हैं, स्कूल से बिल्कुल संपर्क मार्ग टूट गया है, तो कल से वहीं पे टीचर्स जाके बच्चों को पढ़ाएंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को बायो एनर्जी राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर को मिला पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया पुरस्कृत। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक विषय पर दी गई जानकारी। जानकारी दे रहे हैं डीएन श्रीवास्तव और इनसे बातचीत की है अतिश कुमार श्रीवास्तव ने।
2: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, हाल में देखा होगा आपने कि परीक्षाओं में पेपर आउट होने की समस्या बहुत विकराल रूप ले गई, तो इसी विषय में सभी को चिंता हुई। सब पूरे देश में कि छात्रों ने बहुत आंदोलन किया, उसमें बहुत से बाहरी लोगों का भी सपोर्ट मिला। तो इसी विषय पे कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस 2024 में एक एक्ट पास किया गया था, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हुई, सरकार ने कुछ कार्य किया है, तो इसी विषय पर अधिक जानकारी करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है डीएन श्रीवास्तव जी को, जो कि अवकाश प्राप्त जज रहे हैं और एक लंबा अनुभव रहा है इनका जुडिशरी में। तो श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: श्रोताओं नमस्कार।
2: तो श्रीवास्तव जी, क्या आप उपयुक्त समझते हैं कि श्रोताओं को बताना चाहिए, क्या श्रोताओं को जानना चाहिए इस विषय में?
3: श्रोताओं को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि इस देश में युवाओं का भविष्य प्रतियोगी परीक्षाओं से सीधे सीधे जुड़ा रहता है, और प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन हो, या अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के एग्ज़ाम हो, या अन्य विभागों की परीक्षाएं हो, इन परीक्षाओं में नकल की, पेपर लीक की जो समस्या उत्पन्न होती थी, उनको कैसे रोका जाए, प्रशासनिक स्तर पर कैसे रोका जाए, ऐसा कोई केंद्रित कानून नहीं था और समस्याएं बढ़ती जा रही थी। पेपर लीक से छात्रों में आक्रोश होता था, प्रतिभाओं का हनन होता था, कोचिंग माफियाओं का प्रभाव बढ़ रहा था
2: जी,
3: वो अनियंत्रित

0: पूरे देश में नीट यूजी कराने का निर्णय लिया गया। पहले ये मेडिकल की परीक्षाएं हर राज्य अपने अपने राज्यों में कराती थी
1: जी,
0: और उनके अलग अलग व्यवस्था थी। जैसे उत्तर प्रदेश में CPMT का एग्जाम होता था। जब केंद्र स्तर पर सभी मिला करके परीक्षा कराई गई
1: जी,
0: तो इसमें तमाम खामियां प्रकाश में आई, क्योंकि इसमें जो चक्र है परीक्षाओं के लिए कि पहले प्रश्न पत्र तैयार करना, उनको प्रिंट करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनको सेंटर तक पहुंचाना, सेंटर पर गलत लोग ना प्रवेश कर जाएं,
1: उसकी सुरक्षा व्यवस्था,
0: उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखना, फिर उसके बाद जो शीट तैयार होती है जिसके आधार पर परिणाम घोषित होता है उसकी शुचिता बनी रहे, इसको सुनिश्चित करना, इन सब में खामियां आई। और एक बार जब पेपर लीक हुआ तो पूरे देश में आक्रोश फैल गया।
1: जब ये सर ये इतने स्तर हैं कि किसी स्तर पर पेपर लीक होने की व्यवस्था की जा सकती है?
0: हाँ, किसी स्तर पर पेपर लीक होने की संभावना रहती है। और इस प्रकरण में क्या हुआ कि जहां से पेपर बना वह पेपर वहीं से लीक हो गया,
1: या प्रिंट हुआ वहां से लीक हुआ,
0: वहां से भी लीक हो, पेपर जहां से बना वहां से भी लीक हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी लीक हो सकता है, सेंटर पर पहुंचने के पहले उसको लीक किया जा सकता है। तो इन सब को रोकने के लिए पहला कदम तो सरकार ने उठाया कि दंड को बढ़ाया। जैसे पहले 3 साल था, नए कानून में 5 साल की सजा की गई, मैक्सिमम 10 साल की बढ़ाया गया।
1: अच्छा।
0: पहले फाइन 10 लाख था, उसको 50 लाख किया गया। संगठित अपराध जो होते हैं उसके लिए मिनिमम 7 साल किया गया और फाइन 10 करोड़ किया गया। परीक्षा आयोजन कराने में 8 साल तक रोक लगी सेवा प्रदाताओं को
1: जी,
0: उसके बाद उनको 5 से 10 वर्ष की सजा, 5 करोड़ जुर्माने का प्राविधान किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का निर्णय लिया गया, जो चार्जशीट आने के 3 माह के अंदर ट्रायल पूरा कर दें। विशेष लोक अभियोजक के नियुक्ति की व्यवस्था की गई, STF या केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। ये कानून 2 वर्ष पूर्व पारित अधिनियम को संशोधित करने के लिए बनाया गया। इसमें जुर्माना बढ़ाया गया, पेपर लीक दोषियों पर सख्त सजा का प्राविधान किया गया है, और ये विश्वास पैदा करने की छात्रों में कोशिश की गई कि आपकी परीक्षाएं लीक नहीं होंगी, फुल प्रूफ होंगी, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सके।
1: तो श्रीवास्तव जी, तो बात हो गई कानून के संशोधन की, पास हो गया है, तो लेकिन ये जो लीक होने की व्यवस्था है इसमें क्या कदम उठा सकती सरकार, या क्या व्यवस्था की जा सकती है कि ये ऐसा हो ही ना, या इस पर रोक लग सके?
0: देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना होगा कि पेपर सेट करने वाले सुयोग्य और सत्यनिष्ठ संपन्न हो
1: जी,
0: उनका कोचिंग उद्योग से कोई संबंध ना हो। फिर पेपर सेट होने के बाद से परीक्षा होने तक वे कड़ी निगरानी में रहें, और पेपर बनने से लेकर वितरण तक का काम संघ लोक सेवा आयोग जैसी किसी विश्वसनीय संस्था के हाथ में हो। इसके साथ ही एक बहुत आवश्यक ये कदम है कि अभ्यर्थियों को तथ्यात्मक ज्ञान की परख की जगह अब उनका समाधान बुद्धि और मौलिक विचार शक्ति को अधिक परखने के हिसाब से बनाया जाना चाहिए,
1: रीजनिंग उसमें हो।
0: हाँ, रीजनिंग हो, क्योंकि भारत ने प्रतियोगी परीक्षाएं और उनकी शुचिता और पारदर्शिता गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। पिछले वर्षों में भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में पेपर लीक, साल्वर गैंग, इम्पर्सोनेशन, भर्ती व्यवस्था में धोखाधड़ी, नकल कराने, संगठित गिरोह की घटनाएं घटित हुई, और आज का भारत बेहतर शिक्षा, विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था

0: और रटंत आधारित परीक्षा तंत्र से मुक्ति चाहता है।
1: जी जी अवश्य।
0: और विदेशों में जो व्यवस्था है उन पर हमको जरूर विचार करना चाहिए। जैसे इसमें अभी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कुलपति बी गोपाल राव ने कुछ अच्छे सुझाव दिए।
1: जी, क्या
0: उनका कहना था कि डिजिटल प्रश्न बैंक, दो मौके और द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली इसका एकमात्र विकल्प है। उनका कहना है कि 6 माह के अंदर 50,000 सवालों का प्रश्न बैंक तैयार किया जा सकता है और साल के भीतर एक ऐसी ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली विकसित की जा सकती है जो पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। उनके अनुसार 23 लाख परीक्षार्थियों 15 भाषाओं 5,000 सेटर्स की विशाल व्यवस्था में पेपर पेन वाली परीक्षा प्रणाली लीक प्रूफ होना असंभव है।
1: जी।
0: इसके लिए जेई एडवांस की तरह ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अनिवार्य है। नीट परीक्षा के लिए कम से कम 10 लाख डिजिटल प्रश्न बैंक की आवश्यकता है, लेकिन अगले साल के लिए 50,000 सवाल का बैंक भी पर्याप्त होगा। 97 के बाद जेई एडवांस का पेपर कभी लीक नहीं हुआ। तो सुझाव उन्होंने दिया कि नीट को भी दो हिस्सों में बांटा जाए। पहला एनटीए नीट, ये मेन एग्जाम कराए, और नीट एडवांस की परीक्षाएं एम्स जैसी संस्थाओं द्वारा कराया जाए।
1: अच्छा, एजेंसी बदल दी जाए।
0: बदल दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां रटे हुए ज्ञान के बजाय अभ्यर्थी का निर्णय क्षमता का मूल्यांकन होता है। तो भारत में ये सबसे महत्वपूर्ण सुझाव आया, लेकिन हालांकि वो कठिन है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। क्या सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को एडेप्टिव बनाया जाए?
1: तो श्रीवास्तव जी, इतनी लंबी बातें की हैं आपने, बहुत कुछ बताया है अब विदेशों में क्या हो रहा है, तो लेकिन जो व्यवस्था होगी उसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज और पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी हमें विचार करना होगा।
0: हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल आपका है, क्योंकि जब कोई पेपर लीक की घटना होती है तो की जांच बहुत आवश्यक होती है, और जांच साइंटिफिक तरीके से हो, प्रभावी तरीके से हो, तो ही जांच का प्रतिफल प्राप्त होता है और वास्तविक दोषी पकड़े जाते हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए आवश्यक है कि वो ऐसी जांच करे जिसमें कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को न फंसाया जाए जिसका कोई रोल ना हो।
1: जी, जी।
0: लेकिन जिसने परीक्षा को दूषित करने का प्रयास किया है वो किसी भी प्रकार से न बचने पाए, और जांच को एक समय सीमा के अंदर पूर्ण किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, स्पेशल टास्क फोर्स जो बनाई जाए उसके द्वारा ये जांच कराई जाए, और जब इसके ट्रायल हो तो मुकदमे में जो विलंब होता है वो प्राथमिकता के आधार पर इनको फास्ट ट्रैक करके इसका ट्रायल पूर्ण किया जाए और दोषी को सजा दिया जाए। तो कम से कम एक भय उत्पन्न होगा कि नकल कराने और नकल में लिप्त होने से
1: तुरंत सजा मिल जाएगी,
0: तुरंत सजा मिलेगी, और वो उसका एक डिटरेंट इफेक्ट होगा समाज में,
1: और गहराई तक जांच करनी पड़ेगी।
0: गहराई तक जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रश्न पत्रों से लेकर जैसा मैंने बताया कि इतने लेयर होते हैं और हर लेयर में ये नकल माफिया अपना प्रवेश करने की कोशिश करते हैं।
1: तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है?
0: एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस की ये भूमिका होती होगी कि जो भी जहां पर कमी पाई जाती है उसको प्रशासनिक स्तर पर दुरुस्त किया जाए, सेंटर पर विजिलेंस बढ़ाया जाए, इन्विजिलेशन में भी पुलिस जो है कंट्रोल करे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पुलिस को प्रशासन को देखना पड़ेगा कि पेपर का ट्रांसपोर्टेशन सही हो रहा है, पेपर की सिक्योरिटी सही हो रही है। तो ये हर स्तर पर अलर्टनेस की जरूरत है।
1: तो श्रीवास्तव जी, घड़ी इशारा कर रही है कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो और लंबा विषय है इस पर, तो जितनी लंबी बातचीत करें हम उतना कम होगा। तो आप स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक विषय पर की गई बातचीत। जानकारी दे रहे थे अवकाश प्राप्त जज डीएन श्रीवास्तव और भेंट करता थे अतिश कुमार श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कार्यक्रम कानून की बात अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कुलवंत सिंह के गाए शब्द।

0: कुलवंत सिंह के गाए शब्द के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात के 8 बज रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं है। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सोलता देव, डीएमके सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, डॉक्टर एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि यह कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राय, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसी

एम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, IUML के हारिस बीरन, UPPL के रवंगवरा नारजारी और DMK सदस्य LK सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थीं। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और FCRA विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि

0: विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने FCRA विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। DMK नेता TR बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी और DMK सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। RSP के NK प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके के इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है। विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं। 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृह मंत्री इस पर जवाब दें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाश

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। प्रस्तुत है फिल्म बलमा का ये गीत, जिसे आवाज दी है आशा भोंसले और कुमार शानू ने। शब्द रचना की है समीर ने और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। आइए अब सुनते हैं फिल्म हे रांझा कहेगी, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, गीत को लिखा है कैफी आजमी ने और संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

कार्यक्रम के अंत में पेश है फिल्म तेरे नाम का ये गीत। युगल आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत संध्या यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चांदनी के कुछ नगमे। श्रोताओं, फिल्म चांदनी 14 सितंबर 1979 को रिलीज हुई। फिल्म चांदनी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित एक क्लासिक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी। 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 27.2 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना मुख्य भूमिकाएं में थे।

अंत में एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। यश चोपड़ा की पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। चांदनी की बम्पर सफलता ने उन्हें और उनके प्रोडक्शन हाउस को नया जीवन दान दिया था।

फिल्म चांदनी के गीत ब्लॉकबस्टर रहे, जैसे मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं और शीर्षक गीत चांदनी ओ मेरी चांदनी आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इसका एल्बम उस दशक के सबसे ज्यादा बिकने वाले संगीत में से था। और श्रोताओं, यश चोपड़ा के बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा ने इसी फिल्म से बतौर सहायक निर्देशक और सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था।

并不介意从。

0: श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी के गाए इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
3: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति जी महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
2: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
4: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

0: को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
2: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
3: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।

0: है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहाँ पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते।

0: as low pressure forms over Bay of Bengal. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट ने इमदाद बाहमी शोबे के लिए सरमाए की फराहमी और इसके फरोग से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है। केरला रियासत का नाम बदलकर केरलम रखने से मुतालिक बिल को भी मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुशरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक से मुतालिक मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक मुरासला तहरीर किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आलमी सतह पर तरक्की की खातिर ब्रिक्स मुल्कों की मईशतों में और ज्यादा प्राइवेट सरमाए पर जोर दिया है। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की तनाजुर में उड़ीसा और गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल के बाद हिस्सों में अगले दो दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। और नाइजीरिया में दौलत मुश्तरका चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत की फेंसिंग टीम ने सोने के 3 तमगों समेत 5 तमगे जीते। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूर कर लिया। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। इमदाद बाहमी के महकमे के वजीर ममलकत मुरलीधर मोहन ने यह बिल पेश किया, जिसका मकसद कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन से मुतालिक 1962 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है। मजकूरा बिल के तहत कॉरपोरेशन को सनती सामान के शोबे में भी अपनी सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत होगी। मजकूरा बिल की रूह से रियासती सरकारों को कॉरपोरेशन से सरमाया हासिल करके इमदाद बाहमी के फरोग में शामिल किसी भी इदारे को देने की इजाजत होगी। इसके अलावा ये कॉरपोरेशन इमदाद बाहमी की तरक्की में शामिल किसी भी इदारे या इमदाद बाहमी से मुतालिक किसी भी सोसाइटी को बराह रास्त कर्जे और ग्रांट भी फराहम कर सकती है। लोकसभा ने कानों और मादनियात के फरोग और इन्हें मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। आज दूसरी बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब से पहर 3 बजे ऐवान की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो कोयले और कानों के महकमे के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कानों और मादनियात के फरोग और उन्हें मुंजबित करने से मुतालिक 1957 के एक्ट में मजीद तरमीम की खातिर बिल पेश किया। मजकूरा बिल का मकसद भारत के कानकनी शोबे को और ज्यादा मुअसर सरमायाकारी के लिए साजगार और अहम मादनियात की मुल्क की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए तैयार करना है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के सपुर्द करने के लिए मंजूरी दे दी है। मजकूरा बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक 2010 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को और ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना है। उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने यह बिल वसीतर सलाह मशवरे के लिए JPC के पास भेजने के लिए लोकसभा में एक तहरीक पेश की। JPC दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होगी। इस कमेटी में लोकसभा के 21 अरकान होंगे जिन्हें स्पीकर मौसूफ नामजद करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा से 10 अरकान भी हैं, इसमें शामिल होंगे जिन्हें चेयरमैन नामजद करेंगे। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मौसम सरमा के इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन ऐवान में पेश कर देगी। इधर राज्यसभा ने भी गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर वखोज की खातिर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने 10 अरकान को नामजद करने की तहरीक मंजूर कर ली है। पार्लियामेंट ने केरला के नाम को तब्दील करने से मुतालिक बिल 2026 को भी मंजूर कर लिया है। राज्यसभा ने आज इसकी मंजूरी दी। लोकसभा ने कल इस बिल को पास किया था। मजकूरा बिल का मकसद आईन के पहले शेड्यूल में रियासत केरला का नाम तब्दील करके केरलम करना है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने कहा कि केरला कानून साज असम्बली ने 2024 में एक करारदाद मंजूर करके मरकज से रियासत का नाम तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा कि यह दरख्वास्त इसलिए की गई क्योंकि मलयालम जबान में रियासत का नाम केरलम है, जबकि आईन में इसे केरला तहरीर किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।

अपने इम्तिहान के नतीजे देख सकते हैं जो इस तरह है results.digilocker.gov.in। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के रियासी जिला इंतजामिया ने

0: के जज्बे को और ज्यादा फरोग दिया जा सके। इस रैली से दरियाए चिनाब के दिलकश पस मंजर में शान से तिरंगा लहराने के साथ हुब्बुल वतनी के जज्बे का जश्न मनाने का एक मुनफरिद और पुरजोश वसीला फराहम हुआ। उधर छत्तीसगढ़ में कबाइलियों की अक्सरियत वाले बस्तर खित्ते में भी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया, जो कभी मावनवाजों के तशद्दुद से सबसे ज्यादा मुतासिर रहता था। इस तिरंगा यात्रा में नायब वजीर आला विजय शर्मा के हमराह बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: तिरंगा यात्रा आज नारायणपुर से अमन, इतिहाद और मुल्क की तामीर के पैगाम के साथ शुरू हुई। मुख्तलिफ बिरादरियों के नुमाइंदों ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला और वजीर दाखिला विजय शर्मा की क्यादत में ये तिरंगा यात्रा बस्तर के दूर दराज कबायली इलाके से गुजरी, जिनमें वो इलाके भी शामिल हैं जहां माजी में मावनवाजों के बड़े वाकयात पेश आए। तीन रोजा यात्रा 14 अगस्त को बीजापुर जिले की करेगुट्टा पहाड़ी पर इख्तिताम पजीर होगी, जहां कौमी परचम लहराया जाएगा। नायब वजीर आला विजय शर्मा ने कहा कि तिरंगा यात्रा का मकसद मुल्क और दुनिया को ये पैगाम देना है कि इन इलाकों में अब माओनवाजों की सोरिश खत्म हो चुकी है। विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: भारतीय रेलवे ने शिमाल मशरकी रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन के 660 रूट किलोमीटर पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त की मंजूरी दे दी है, जिस पर 295 करोड़ रुपए की लागत आने का तखमीना लगाया गया है। रेलवे की वजारत ने बताया है कि शिमाल मशरकी रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन के बालान सेक्शन इसके दायरे में आएंगे। कवच निजाम के चौथे मरहले से मुतालिका रेल सेक्शनों पर सेफ्टी का बुनियादी ढांचा मजीद मुस्तहकम हो सकेगा। कवच निजाम मुल्क में ही तैयार किया गया अज खुद काम करने वाला एक ऐसा तहफुजाती निजाम है, जिसका मकसद रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त की लगातार निगरानी के जरिए रेलगाड़ियों के आपस में टकराने के हादसों की रोकथाम करना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में सूरत हाल अब भी कशीदा है। वहां मुजाहिरीन पाकिस्तानी फोर्सेस के जेर साए निशाना बनाकर की गई हलाकतों और बेकसूर अफराद को लापता किए जाने और सप्लाई निजाम में रुकावटों के तनाजुर में कराए गए हालिया मुतनाजा इंतखाबात पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 12 घंटे के दौरान शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की पेशगोई की है, जिसके जेर असर कल उड़ीसा और गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कहा है कि कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कराईकल, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार जजायर, केरला, गोवा और राजस्थान में भी तेज बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी इस महीने की 15 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। नाइजीरिया के शहर लागोस में जारी दौलत मुशरका फेंसिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारतीय फेंसिंग टीम ने मुख्तलिफ सीनियर इनफरादी मुकाबलों में सोने के 3, चांदी और कांसे का 1-1 तमगा जीता। भारत के तमगों की मजमू तादाद अब 29 हो गई है, जिनमें सोने का 8, चांदी के 7 और कांसे के 14 तमगे शामिल हैं। भारत ने सीनियर खवातीन के फाइल मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने और चांदी के दोनों तमगे हासिल किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने इमदाद बाहमी शोबे के लिए सरमाए की फराहमी और इसके फरोग से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है। केरला रियासत का नाम बदलकर केरलम रखने से मुतालिक बिल को भी मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुनजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुशरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक से मुतालिक मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक मुरासला तहरीर किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आलमी सतह पर तरक्की की खातिर ब्रिक्स मुल्कों की मईशतों में और ज्यादा प्राइवेट सरमाए पर जोर दिया है। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की तनाजुर में उड़ीसा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल के बाद हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार। जब किसी शहर की एक गली में वर्कशॉप का शटर उठता है, जब किसी गांव में एक छोटा कारखाना शुरू होता है, तो सिर्फ मशीनें नहीं चलती, देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चलती है। देश की जीडीपी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी और करोड़ों हाथों को रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर का कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या हो जब एक छोटा उद्यमी काम करने के बाद अपनी मेहनत के पैसे के लिए वर्षों इंतजार करे? क्या हो जब उसे कानूनी दांवपेच या कागजी कार्यवाही में लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़े? इन्हीं अड़चनों को जड़ से समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। क्या है इसके प्रावधान, या फिर यूं कहें कि क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा और एमएसएमई सेक्टर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं एमएसएमई मंत्रालय में सचिव भरत खेड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: नमस्कार।
1: यहीं से शुरुआत करते हैं। 2006 में एमएसएमई एक्ट बना, 20 वर्ष यानी 2 दशक बीत गए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि 20 वर्षों के बाद अमेंडमेंट बिल की जरूरत क्यों पड़ी?
2: आनंद जी, 2006 में जैसे आपने बताया, सबसे पहले ये एक्ट बना था एमएसएमई क्षेत्र के लिए, और इन 20 वर्षों में कई ऐसे चेंजेस आए जिसके लिए ये आवश्यक हो गया था कि हम इस एक्ट में संशोधन करें। और 20 वर्षों बाद जब संशोधन होता है तो वो बड़ा स्वाभाविक है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किए जाते हैं, और इस पीरियड में टेक्नोलॉजी का भी बहुत स्वीपिंग चेंजेस आए, और उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोविजंस थे जो कि रिडंडेंट और ऑब्सोलीट लगने लगे, और हमें जरूरत लगी कि आज के युग के साथ उनको भी आगे बढ़ाया जाए। और कुछ चुनौतियां रही हमारे एमएसएमई क्षेत्र में जो हम अनुभव कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों में, उनसे भी निपटारा करने के लिए ये जरूरी हो गया था कि हम एक्ट के प्रोविजंस के अंदर प्रावधानों में अमेंडमेंट करें। इसी के चलते ये चेंजेस इस बार लाए गए हैं, और जैसे आपने कहा, 3 अगस्त को राज्यसभा से और 7 अगस्त को लोकसभा से हमारा एमएसएमई बिल पारित हुआ है।
1: कई सारी चुनौतियों के समाधान को खोजने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। एक एक करके अगर आपसे समझना चाहें तो मध्यस्थता के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है कि अगर कोई भी समस्या होती है तो पहले मध्यस्थता में उसे भेजा जाएगा, जिसे मीडिएशन भी कहते हैं, और 90 दिन एक समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर्स के पास अभी भी हजारों की समस्याएं पेंडिंग है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या राज्यों के साथ मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कोई एक कार्यप्रणाली बनाई जा रही है जिससे 90 दिनों की समय सीमा के अंदर उस मामले को निपटारा किया जा सके?
2: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र के अंदर पेमेंट्स का डिले होना एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। छोटे सप्लायर्स हैं जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम श्रेणी के सप्लायर्स हैं, और उनके लिए लिक्विडिटी बहुत क्रिटिकल रहती है। उनके लिए वर्किंग कैपिटल समय से उपलब्ध हो ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से वो खरीदारी करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि पेमेंट्स में विलंब हो जाता है। इसी के चलते प्रावधान पहले एक्ट में किया गया था कि डिलेड पेमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। हालांकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के भी प्रावधान थे, लेकिन ये देखने में आ रहा था, पिछले वर्षों में अनुभव ये किया जा रहा था कि इसमें उसके बावजूद, इन प्रावधानों के बावजूद विलंब हो रहा था। तो इस नए संशोधन के अंदर एक तो ये तय किया गया है कि हर चीज की अपनी समय सीमा हो, और उस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले प्रयास ये हो कि जो सप्लायर है और जो ऑर्डर प्लेस करता है, उन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल नेगोशिएशन और डिस्कशन से भी मामला सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है छोटे सप्लायर के ऊपर, उनका भी बड़ा लंबे समय तक एक रिश्ता बन जाता है आपस में, तो वो चाहते भी नहीं कि कोई डिस्प्यूट हो, और प्रयास भी सबसे पहले यही होता है कि उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर वो निपटारा नहीं हो पाता और किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है, तो मीडिएशन के लिए समय निर्धारित किया गया कि वो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाए, और अगर मीडिएशन में भी उसका

0: ODR पोर्टल है हमारा, जो पिछले साल हमने लॉन्च भी किया था, उसमें हमारा जो सेलर और परचेजर दोनों उस पर रहेंगे और पहले प्रयास करेंगे कि आपसी बातचीत से हो जाए, नहीं होगा तो उसी के माध्यम से मीडिएशन के लिए जाएगा और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी। अपने घर के एंटरप्राइज के कंफर्ट में बैठ करके कहीं फिजिकली दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो पाएगी और आर्बिट्रेशन का काम भी ऑटोमेटिकली वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ इस समय सीमा को निर्धारित करने से इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में और आसानी होगी और जो पेमेंट्स समय से नहीं हो रही थी वो समय से होने लगेंगी, डिलेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे।
1: थोड़ी चर्चा अगर ट्रेड्स की कर लें इस बिल पर, ट्रेड्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, उसको बहुत अहमियत दी गई है। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए हम बता दें कि मान जाइए कि आपने ये साथ आपकी डील हुई, वो डील 25 करोड़ रुपए की है। ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने वहां पर अपनी इनवॉइस जेनरेट की, किसी दूसरी कंपनी को लगता है कि वो 24 करोड़ रुपए आपको अभी तत्काल दे सकती है, बायर के पैसे 2 सालों के बाद आएंगे तो उसको 25 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन हमने अपना पैसा लगाया है तो हम 24 करोड़ में अगर सेटल होना चाहें तो वो हम सेटल हो सकते हैं। ये ट्रेड्स की खासियत है इनवॉइस सेटलमेंट के लिए। इसको कैसे प्रभावी बनाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से?
0: देखिए, ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, सप्लायर के लिए, परचेजर के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तीनों के लिए। और जैसे आपने बड़े सरल रूप से बताया, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है 2017 में RBI ने शुरुआत की थी और शुरुआती दौर में इस पे ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती थी। रादर मैं ये कहूंगा 2021-22 में भी हम तकरीबन 40,000 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, जो पिछले वर्ष में 2025-26 में बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज हमारी ऑनबोर्ड कर रही हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। इस नए संशोधन के अंदर जितने हमारे केंद्रीय उपक्रम हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि जितने भी MSME से संबंधित पेमेंट्स हैं उनको ट्रेड्स के माध्यम से इनवॉइसेस को वहां पर रेज किया जाए ताकि उनकी पेमेंट्स ट्रेड्स के माध्यम से की जा सके। तो इसके चलते काफी आराम हमारे MSMEs को मिलेगा, क्योंकि कई बार उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता था, उसके चलते वो आगे रॉ मटेरियल की खरीद नहीं कर पाते।

0: सिर्फ नोटिफिकेशन से चल रहा था उसका एक्ट में प्रावधान किया गया, CPSEs को मैंडेट दिया गया कि वो इस पर ऑनबोर्ड भी हों और इसके माध्यम से करें, और उसके साथ साथ वो उसकी पब्लिक डिस्क्लोजर भी करेंगी कि हमारे इन इन MSME से संबंधित जो इनवॉइसेस थी वो रूट की गई ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पीरियड के दौरान, तो वो भी करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा।
1: यहाँ एक छोटा सा सवाल और उठता है कि बड़े कॉरपोरेट्स घरानों को ट्रेड्स तक लाने के लिए क्या MSME मंत्रालय के पास कोई योजना है या उस पर काम किया जा रहा है?
0: देखिए, जहाँ तक केंद्रीय उपक्रम है उनके लिए तो अब एक्ट में ही प्रावधान हो गया। हमारे 291 इस समय केंद्रीय उपक्रम है और ये सब उपक्रम अब ट्रेड्स के माध्यम से ही करेंगे। जहाँ तक प्राइवेट इंडस्ट्री है, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले उपक्रमों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ट्रेड्स के माध्यम से करें, और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस नए संशोधन के अंदर प्रावधान ये किया गया है कि वो भी चाहें तो अपने स्टेट के जो उपक्रम हैं उनको भी मैंडेटरी कर दें ट्रेड्स के माध्यम से ऑपरेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ पूरा इकोसिस्टम जब इसका बेनिफिट उठाएगा तो हमारे MSMEs के लिए ये व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी और लिक्विडिटी क्रंच जो अक्सर वो फेस करते हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा।
1: एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि कोई भी जो उद्यमी है अगर उसने बायर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन की है और उसके पक्ष में वो निर्णय आता है, लेकिन बायर चूंकि मजबूत होता है, उसके पास आर्थिक ताकतें ज्यादा होती हैं, वो कोर्ट में उस मामले को ले जाता है और फिर वो मामला काफी लंबा खींचता है। जो छोटा उद्यमी है जिसने अपना पैसा लगाया है, जिससे उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वो सैलरी दे पाएगा, जो रॉ मटेरियल्स लाया है उसका भुगतान कर पाएगा, ऐसे में जो कोर्ट में लंबा मामला खींच रहा है, क्या इस बिल में उसके लिए प्रावधान है?
0: इसके लिए भी बड़ा प्रभावी प्रावधान किया गया है। अगर कोई डिक्री या अवार्ड को अपील के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस अवार्डेड राशि का 75% अनिवार्य है कोर्ट के पास जमा करवाना। अब उस राशि में से कोर्ट्स को ये एम्पावर किया गया है कि अवार्डेड अमाउंट का 50% राशि वो उसको तुरंत जारी करवा सकते हैं MSMEs के फेवर में अगर कोई अपील 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है। एक समय सीमा आ गई 6 महीने की, अगर 6 महीने से ज्यादा कोई अपील लंबित रह जाती है तो कोर्ट्स 50% राशि अवार्डेड अमाउंट की उस MSME को तुरंत जारी कर देंगे, ताकि विलंब अगर होता भी है तो भी 50% राशि तो उसको मिली गई फैसला होने तक, बाद में बाकी भी मिल जाएगी। ये नया प्रावधान इस संशोधन में लाया गया है।
1: एक और प्रावधान किया गया है उद्यम पंजीकरण पोर्टल का, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। जो लोग MSME से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से ये सहायक होने वाला है?
0: देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि उद्यम पोर्टल पर या अन्य कहीं पर पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। यही प्रावधान एक्ट में भी किया गया है और उद्यम पोर्टल पर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है इसकी। इसमें उद्यम पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2020 के अंदर और धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन काफी हुई, क्योंकि पहले अक्सर ये देखा जाता था कि एंटरप्राइजेस इनफॉर्मल क्षेत्र में तो कई साल काम करते थे लेकिन फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते थे। शायद इस बात से भी घबराते हों कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा और परेशानी आने लगेगी, तो सरकार ने बड़े प्रयासों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी कम किया। इसके भी चलते प्रेरित हुई एंटरप्राइजेस की हम फॉर्मल रूप से अपना पंजीकरण करवाएं, और मैं ये समझता हूँ इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ वर्षों में। 1.65 करोड़ हमारे एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम में थे आज से 4 साल पहले, और आज हमारी संख्या 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। तो ये तभी संभव हो पाया जब उनको लगा कि ये इससे उनको लाभ मिलेंगे, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसका भी वो लाभ उठा पाएंगे, तो आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। अब चूंकि उद्यम पोर्टल का प्रावधान एक्ट में ही किया गया है तो ये फॉर्मलाइजेशन की हमारी जो कैंपेन है ये और बेहतर रूप से चलेगा और इसमें हम सैचुरेशन प्राप्त करेंगे।
1: आपने अभी कैंपेन का जिक्र किया, ये नए प्रावधान से MSME से जुड़े उद्यमियों को रूबरू कराने के लिए किस तरह के कैंपेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कई सारे मंत्रालय एक्सपोज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार करते हैं, और जहां पर बहुत सारे छोटे बड़े उद्यमियों को मिलाकर विशेषज्ञ उनको बारीकियां समझाते हैं, क्या इस तरह की भी कोई योजना है?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया इससे पहले भी फील्ड में हमारे बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा सभी MSME एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्री के लोगों से, उन्हीं से ये फीडबैक लेकर के उन्हीं के सुझावों के आधार पर ये प्रस्ताव तैयार किया गया। और अब चूंकि बिल पारित हो गया है, आने वाले समय में हम MSMEs के साथ डायरेक्टली एंगेज करके उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करेंगे।

0: ने अभी तकरीबन 5 करोड़ मैसेजेस एक ही दिन में सभी एमएसएमईज को डायरेक्टली भी भेजे हैं, ईमेल्स भी भेज रहे हैं, और एसोसिएशन के माध्यम से भी हम उन तक ये सारे प्रावधान जो नए हैं उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो पूरा इसका लाभ उठा सके।
1: सचिव साहब, एक और यहाँ पर एक जो पेंच समझ में आता है वो ये है कि जो रिकवरी का मामला है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी राज्यों की होती है। ऐसे में एमएसएमई मंत्रालय राज्यों के साथ किस तरीके का संगठनात्मक समन्वय की स्थिति बना रहा है जिससे रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सके?
0: देखिए, समन्वय तो इसमें हमेशा राज्यों के साथ रहता ही है, लेकिन इस संशोधन के अंदर एक एक्ट में भी प्रावधान किया गया है, अगर कोई सेटलमेंट होता है मीडिएशन के आधार पर या आर्बिट्रेशन के बाद कोई अवार्ड होता है तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी घोषित किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने नॉर्मली जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होते हैं उनको अधिसूचित किया गया होता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर करने के लिए। वो प्रावधान भी पहली बार इस एक्ट में किया गया है ताकि कोई अमाउंट अगर ड्यू है तो वो अनरिकवर्ड ना रह जाए, उसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए ये भी प्रावधान किया गया है। और ये हमें राज्यों से ही फीडबैक भी आया, राज्य सरकारों से, और मैं ये समझता हूँ ये जो प्रावधान है ये आने वाले समय में और प्रभावी रूप से काम कर पाएगा।
1: एक और इसमें व्यवहारिक बदलाव किया गया है। पहले अगर कोई उद्यमी जो है वो छोटी मोटी गलती कर देता था या चूक कर देता था उसके लिए जेल या जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन इसमें उसको हटाकर वार्निंग की व्यवस्था की गई है। क्या इससे वो जो इंस्पेक्टर राज वाला कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त करके एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस देने की सोच है?
0: देखिए, डीक्रिमिनलाइजेशन और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर पूरी केंद्र सरकार में आप देख ही रहे हैं सभी एक्ट्स के अंदर बदलाव लाया जा रहा है। हमारा जो ये एक्ट है इसमें जेल का प्रावधान तो खैर नहीं था, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस जरूर था क्योंकि उसमें कन्विक्शन बेस्ड पेनल्टी थी कि कोर्ट के माध्यम से कन्विक्शन होगा और फिर उस पर पेनल्टी लगेगी। उसको अब सरल कर दिया गया है, उसमें ग्रेडेड फाइन, जो ग्रेडेड पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसका डिसीजन लिया जा सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पहले कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, किसी कारणवश नासमझी की वजह से कोई लैप्स होता है तो पहले इंस्टेंस पर वार्निंग देने का प्रावधान है, दूसरे इंस्टेंस पर पेनल्टी लगेगी वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 1,000 से 50,000 के बीच में, और अगर उसके बाद भी वो करता है तो पेनल्टी का अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन कन्विक्शन के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए हमने डेवलपमेंट कमिश्नर को एडजुडिकेट करने के लिए अधिकृत किया है, और अगर उसमें भी अगर कोई अपील करना चाहे तो वो सचिव के पास अपील भी कर सकता है, उसके भी लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये ट्रस्ट के आधार पर काम करने के लिए बनाया गया है।
1: एक और व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि जब भरोसा दिया जा रहा है, और आपने शुरू में भी कहा कि चूंकि 20 वर्षों में तकनीक बहुत बदल गई इसलिए इस संशोधन बिल की जरूरत आन पड़ी, आज का जमाना एआई का जमाना है, क्या इस बिल में तकनीक को लेकर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे समस्याओं को सुलझाने को लेकर भी कोई प्रावधान है या कोई चर्चा है?
0: देखिए, जो हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पोर्टल है वो नया पोर्टल बना, बहुत ही रोबस्ट है, और उसमें सारा जो प्रक्रिया है वो उस पोर्टल के माध्यम से हो रही है। उसमें एआई भी मदद करेगा ड्राफ्ट करने में भी, कि आपने कोई डिस्प्यूट है उसको ड्राफ्ट करना है वो भी एआई भी मदद करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मीडिएशन के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी, जो कि मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के अच्छे यूजेज को दर्शाता है। और जो एमएससीएससीज हैं हमारी, जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स है, उनके कार्य में भी और ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि वो भी अपने पुराने फैसलों का अध्ययन कर पाएंगे, सब तरह के केसेस का एक साथ निपटारा करना भी उनके लिए सरल हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पोर्टल के अंदर किया जा रहा है, उसके साथ ही जो उद्यम पोर्टल है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया है। आज हम बड़ी सरल रूप से बता पाते हैं कि हमारे कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने मीडियम हैं, किस सेक्टर में कितने हैं, किस राज्य में, किस जिले में, कितने महिलाओं के हैं, ये सारी जो सेग्रीगेशन है, ये सारा जो एनालिसिस है ये हम कुछ सेकेंड्स के अंदर कर पाते हैं, और ये एनालिसिस हमें मदद करता है नीतियां निर्धारित करने में, नई योजनाओं को प्लान करने में। तो मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीजें और सरल होती जा रही।
1: आकाशवाणी से युवाओं का एक बड़ा वर्ग हमेशा से जुड़ा रहा है, उनके जहन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि अब तक बहुत सारे हाथों को रोजगार देने का काम किया है एमएसएमई ने, क्या इस नए बिल से रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है?
0: देखिए, हमारे देश में एमएसएमई का रोजगार में बड़ा महत्व

0: महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र गिना जाता है रोजगार के टर्म्स में, तकरीबन 38 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में हमारे एमएसएमई जो हैं ग्लोबल वैल्यू चेन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये तभी संभव है जब उनमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, उनमें इनोवेशन रहेगी। तो नवाचार में सबसे ज्यादा योगदान युवा पीढ़ी का रहता है। हमारी एमएसएमई चैंपियंस योजना के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम इनोवेशन के लिए हमारी युवा पीढ़ी को इंसेंटिवाइज करें, उनको प्रेरित करें और वो अपनी क्वालिटी को भी इंश्योर कर पाएं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएं और अलग अलग प्रोडक्ट चेन के अंदर किस प्रकार से वो एक इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाएं, टीयर टू और टीयर थ्री वेंडर से बढ़ करके पूरी वैल्यू चेन संभाल पाएं और स्केल अप करें अपने एंटरप्राइज को। आज भी हमारे एमएसएमई क्षेत्र में 98% माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। तो हमारा प्रयास है फॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्केलिंग अप करें, माइक्रो बढ़ करके स्मॉल बने, स्मॉल बढ़ करके मीडियम बने, मीडियम के बाद लार्ज एंटरप्राइजेस बने। तो ये स्केलिंग करने में इनोवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और मैं ये समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत इसमें रुचि भी रखती है। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान रहता था, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढे वो खुद रोजगार देने के लिए तैयार है और स्कूल कॉलेज के अंदर ही प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से अपना एंटरप्राइज खोलें और लोगों को रोजगार दे पाए।
1: आपने अभी बात की एक सपने की, उस आपकी बात में एक सपना छिपा था कि छोटे से बड़े स्तर तक अपने कारोबार को लेकर जाने की। आपने बात की कि ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट की अहमियत को बनाने की, लेकिन इसमें एक जो बड़ी भूमिका है वो आपके स्किल सेट की होती है, कौशल विकास की होती है। क्या एमएसएमई जो दूर दराज के छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहां के उद्यमियों को स्किल बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर काम कर रहा है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्किल अपग्रेडेशन है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है खासतौर पे युवाओं के लिए और हमारे मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं हैं इसको लेकर के। एक तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, हमारे 55 टेक्नोलॉजी सेंटर्स देश भर में बन रहे हैं और इसमें से 35 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, कुछ बाकी अभी बन रहे हैं। इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन दिया जाता है और हाल ही में इसमें ऐड की गई हैं रोबोटिक्स, AI, IoT, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज जिसमें हमारे सक्षम बन रहे हैं युवा। उसके साथ ही साथ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट योजना भी है जिसके माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है पूरे देश भर के अंदर और हम दूसरे जो मंत्रालय हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है उनके साथ कन्वर्जेंस करके भी हम कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देते हैं।
1: इस बिल में क्लासिफिकेशंस की भी थोड़ी चर्चा है, इस बारे में भी बताएं।
0: देखिए, पहले क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर अंतर रखा जाता था और अब वो खत्म हो गया 2020 के अंदर जब हमने कहा कि चाहे वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में लगा हो या सर्विसेज में कार्यरत हो उसके क्राइटेरिया सिमिलर होंगे और उसी से ट्विन क्राइटेरिया लाया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आधार रहता था, अब कितना निवेश किया गया प्लांट एंड मशीनरी में और कितनी उसकी टर्नओवर है, इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन की जाती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम के अंदर। तो अब इसको बकायदा एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया क्योंकि ये पहले सरकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से तो किया गया था लेकिन अब ये एक्ट का हिस्सा बन चुका है कि ये ट्विन क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लासिफिकेशन की जाएगी। उसकी सीमा कितनी होगी वो समय समय पर सरकार निर्धारित करती रहेगी। जैसे आप जानते हैं 2025 के अंदर पिछले वर्ष ही इसकी जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया था। आज के समय में 125 करोड़ तक के निवेश और 500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो एमएसएमई क्षेत्र को डिफाइन करता है। तो इसमें पिछले वर्ष ही बढ़ोतरी की गई थी तो मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में और ज्यादा एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे डेफिनेशन में बदलाव आने के कारण।
1: सचिव साहब, कोई अगर बैंक से लोन लेता है एमएसएमई के तहत, लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अगर वो 6 महीने या निर्धारित समय में वो वापस नहीं कर पाता है तो जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई है इस बिल में उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है, उसमें भी कोई जोड़ घटाव किया गया है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर?
0: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और क्रेडिट इन्फ्यूजन इस क्षेत्र में काफी बढ़ा भी है। 2014 में तकरीबन 10 लाख करोड़ का क्रेडिट था इस क्षेत्र को जो आज के समय में तकरीबन 38 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है और ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी को बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जब बैकिंग मिली बैंक्स को तो उनका भी विश्वास और बेहतर हो गया और बैंक्स ने यह भी अनुभव किया कि

0: नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार गिरते आए हैं इस क्षेत्र के अंदर. हमारा परसेप्शन पहले ही रहता था कि जो छोटा उद्योग है वो शायद डिफॉल्ट करेगा, लोन वापस नहीं कर पाएगा. लेकिन फॉर्चुनेटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई पिछले वर्षों में, और ये जब बैंकों ने अनुभव किया तो वो और ज्यादा प्रेरित हुए क्रेडिट बढ़ाने के लिए. तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट का आने वाले समय में और ज्यादा भूमिका बढ़ेगी और बैंक्स जो हैं प्रेरित होंगे और बेहतर रूप से क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे उद्यमियों को.
1: एक थोड़ा अलग सा सवाल जहन में आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में जीआई टैग्स भी मिले हैं. बहुत सारे शहरों की अपनी खासियत है, जैसे हम बनारस की बात करें तो वहाँ बनारसी साड़ियों की खासियत है, कहीं का दाल काफी फेमस है, कहीं के मसाले बहुत फेमस हैं. क्या मंत्रालय का कोई यूनिट उन छोटे शहरों में जहाँ कुछ विशेष चीजें बनती हैं वहां पर किसी को सिलेक्ट करता है, या वहां कोई कैंप का आयोजन करता है कि यहाँ की ये खासियत, अगर आप इसको लेकर कुछ करना चाहते हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात है, वोकल फॉर लोकल की भी बात है, अगर आप इसको लेकर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो मंत्रालय आपको विशेष योगदान देगा या आपको सपोर्ट करेगा?
0: देखिए, DPIIT जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और GI टैग को भी प्रमोट किया जा रहा है. तो GI टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना आवेदन करने के लिए और GI सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगर MSMEs सामने आते हैं तो उसमें हम लोग भी अपने MSME चैंपियंस स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव प्रदान करते हैं. और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ वर्षों में, बिकॉज कुछ साल पहले तक शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम GIs थे, लेकिन पिछले सालों में आज हम करीब 800 के करीब GIs ऑलरेडी देश में रजिस्टर्ड हैं. और आने वाले समय में भी हमने MSME चैंपियन स्कीम में ये प्रावधान रखा है कि GI लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लगभग 100% इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं अपने मंत्रालय के माध्यम से.
1: ये जो बिल आया है, क्या इसमें कोई नेशनल डैशबोर्ड बनाने की भी कोई पहल की गई है, जिससे कि रियल टाइम जो लोकेशन है मामलों के निपटान की, उसको लेकर कोई प्रावधान है जो कि आसानी से बायर भी देख सके, उद्यमी भी देख सके?
0: देखिए, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल के बारे में बताया, ये एक ऐसा पोर्टल रहेगा जो कि देश भर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल रहेगा. तो इसमें बायर और सेलर दोनों रहेंगे और साथ ही साथ MSESC भी इसमें ऑपरेट करेंगे. तो मैं ये समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें काफी कमी आने की संभावना है, ये हमारी सोच है.
1: 2047 भारत विकसित भारत बने, ये सपना प्रधानमंत्री का है और हर भारतीय चाहता है कि जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तो एक विकसित भारत का निर्माण हो सके. ये जो बिल है और MSME, चूंकि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि 30% GDP में उसके हिस्सेदारी 30% से थोड़ी ज्यादा ही है, क्या लगता है इस बिल के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
0: देखिए, मैं ये समझता हूँ विकसित भारत 2047 के संदर्भ में MSME क्षेत्र की भूमिका और अधिक बढ़ेगी आने वाले सालों में. आपने सही कहा कि आज के समय में भी GDP में 31% हमारा योगदान है और निर्यात में 48% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है. आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन 40% GDP का बन जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी हम 60% के करीब पहुंचेंगे. तो इन प्रयासों को ध्यान में रखकर, इस विजन को ध्यान में रखकर के ही हम अपनी योजनाओं को भी और बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत हैं. आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो MSMEs हैं वो स्केल अप करें और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकें, और उसके लिए हम उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों, बेहतर गुणवत्ता के हों, तभी वो ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच पाएंगे, उसमें भी उनको हम सहायता प्रदान करेंगे. और साथ ही जो प्रोसेसेस हैं वो सस्टेनेबल हो, कम लागत के हों, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों, उसकी ओर भी हमारी कुछ स्कीम्स हैं MSME चैंपियंस के तहत जिसको अब हम और आगे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करें.
1: आपको बहुत सारे छोटे उद्यमी या फिर मध्यम उद्यमी सुन रहे हैं या वैसे युवा भी सुन रहे हैं जो भविष्य में MSME से जुड़ना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे उन्हें आप?
0: देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये क्षेत्र और आगे बढ़े, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं वो ये विजन रखें कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, स्केल अप करें. और जो युवा सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ करके भविष्य में क्या करना है, वो बजाय इसके कि नौकरियां ढूंढने, बेहतर है कि अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इनोवेशन लेकर के आए और प्रयास करें और रोजगार प्रदान करें, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढने, रोजगार प्रदान करें. तो मैं तो यही कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से.
1: ये नया भारत है, नए भारत में नई संभावनाएं होती हैं और उन संभावनाओं को संभव बनाना जीवन की भी सच्चाई है और साथ ही साथ सरकार का भी दायित्व बन जाता है. सरकार ने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और खासकर ऐसे MSME क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए इस बिल में

0: कई प्रावधान किए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की हमारे साथ भरत खेड़ा ने, और उम्मीद है कि एमएसएमई क्षेत्र आने वाले वर्षों में और तरक्की करेगा। भरत जी, आकाशवाणी में बात करने के लिए और विस्तार से इस अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद आनंद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है।

0: 9289-094-0044।
1: चर्चा का विषय है।
2: शेष बातचीत।

0: ये आकाशवाणी है। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण हैं जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। और जब इन मूल्यों में नारी शक्ति का अदम्य साहस और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जुड़ जाता है तो एक प्रेरक गाथा बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेरक गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे IASV त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की। तो ये अभियान कैसा रहा, क्या चुनौतियां रही, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का, तो सबसे पहले जब आपको एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड
3: कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या? टू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे, तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखना है कि ये चीज क्या होती है।
1: विभा जी और वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं, तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफर करना था। तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला?
4: तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है। पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए। रही बात वही एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है। और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है
1: जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ। प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया, या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
2: एक्चुअली ये जो एक्सपीडिशन है, इसकी प्रिपरेशंस 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई है, तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपीडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश। तो इनिशियली इट वॉज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे और हम 42 टोटल थे फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, जिन्होंने 3 फेजेज ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कम्प्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था, बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए। तो एक्चुअली बिकॉज इट इज अ मैसिव थिंग, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड, तो इनिशियल फियर तो रहता ही है।
1: आपसे जाना चाहूंगी विभा जी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
3: देखिए, अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी, हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था। इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक, शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो। तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है,

0: यस, वो काफी हद तक हमारे काम आई, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है। लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई। जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना, दौड़ना, रस्सी चढ़ना, पुशअप, पुलअप, मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रांग बनाया गया कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना आए। फिर दूसरा, ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो, आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। फिर रही बात, हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी, तो इसका मतलब हमें बोट क्या होती है, कैसे चलाते हैं, हवा को कैसे पढ़ते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, समुद्र में अगर दूसरे शिप्स हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये एक एक चीज हमें पढ़ाई गई। और उसके बाद टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ टीम आप वहां पे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई।
1: जी स्क्वाड्रन लीडर वैशाली, आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें, लेकिन जो सबसे जरूरी होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको, तो मेंटल ट्रेनिंग भी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपीडिशन में?
2: Being from a defense background or wearing a uniform itself, be it army, navy or air force, mentally strong होने की हमें already training दी जाती है, तो यहाँ पे भी वही चीज काम आई। थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कि endurance और stamina की महीनों महीनों तक कुछ ना दिखना, कोई color ना दिखना, कोई पक्षी ना दिखना, इंसान ना दिखना, और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी, और उसकी बात पूरे 1-1.5 दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके। तो वो चीज ट्रेनिंग करते करते, सेलिंग करते करते बढ़ाई गई। अकेलापन फील होना, उसकी जो फाइट होती है वो हमने सेलिंग करते करते ही सीखी। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील की था, बाकी सेम।
1: मेजर प्राजक्ता, आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी, मेंटल ट्रेनिंग भी, फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने एक ना आत्मविश्वास बनाए रखना, नहीं हम कर लेंगे, तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी?
3: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज जब उठ रहे हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम, ऐसा नहीं था। बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे, रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन इतना फटीग है हम में। एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, इनफैक्ट पहले भी, बिफोर फ्लैग ऑफ हुआ हमारा, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं। बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था, एक ही गोल था, सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू। इवन अगर आप एक दिन मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो आई नो कि बाकी हैं हु विल लिफ्ट मी अप।
1: टीम वर्क काम आई इस पूरे एक्सपेडिशन में। विंग कमांडर विभा जी, जैसे उन्होंने कहा कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, और हम सभी के जहन में ये है कि आप लोग एक शिप में गए हैं, बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी, तो क्या वाकई में ऐसा था या आपको और भी कई इसको लेकर भी, उठने जागने सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
0: जनरली हम फोर्सेस में तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है, हमें एक अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, बिकॉज शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहाँ आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है, हमने कहा कोई कुक नहीं होता है। हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी में हमारी पूरी दुनिया थी। और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज्यादा जगह है। और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी है, तो जब समुद्र की लहरें या विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है। तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना, खाना, पीना, जागना, कुछ भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है। एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था। धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है, और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रह के सीखा।
1: जैसे खाने

0: के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं, तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
1: फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसा नहीं कि खाना बनाना चाहता है, वो उनका पैशन था. तो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट, मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा. तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा. प्राजक्ता जी ने बोट में समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और हम
0: दिन बन गया,
1: दिन महीने बन गए.
0: ये है, मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे सी सिकनेस की बात की, तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया? तो कोई वहां पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
2: हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है, उसमें जो तबीयत खराब होती है, और इट इज योर मंथली साइकिल. दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड, एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर, एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है हु इज ट्रेन्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना. वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था, वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं. शी यूज टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है. प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए.
0: तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
3: तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे. उसमें से एक, मतलब एवरी डे देयर वाज अ मदर ऑफ द बोट, तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे. बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब 2-2 ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी, तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी. एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज इन समथिंग, वी ऑल नो एवरीथिंग. तो हमको सब चीज में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है. तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था, इट वाज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए.
0: तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ मालूम था, किसी तरह की दिक्कत ना आए.
3: यस.
0: तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था, तो आप किन किन जगहों से गुजरी, कहाँ कहाँ से गए?
1: देखिए, जब हम सरकम नेविगेशन की बात करते हैं, तो सरकम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं. उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था. तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था. ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल, फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन न्यूजीलैंड में. लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया, और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे. तो लकीली हमने एक पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहां पे हमने हॉल्ट लिया. वो अनप्लान्ड था, बट वहां पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ. न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है. उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में. फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में. केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है, जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए. तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे ही आके खत्म हुआ.
0: विभा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने 2 बार इक्वेटर को पार किया, सदर, एक बार सदर्न हेमिस्फेयर, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी आपने, बहुत ह्यूमिड भी, गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा. तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुख दुखी चल रही थी?
1: अभी भी जैसे हम आए हैं, कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो एक साल सेलिंग करके आ गए, बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है. हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं.

0: हुआ। हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था, लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम दो दो लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में गए थे, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे, और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, सेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज। जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे। और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी, हमारा सेल फट गया था, तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी, और हुक्स हमने जब ग्लव्स से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था 3 ग्लव्स से। हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन्न, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन्न हो जाए। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है, तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन्स पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नंब हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम,
1: मतलब एक तो पानी की लहरें, हवा, और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
2: नहीं नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों हफ्तों बारिश हो रही थी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके, आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय पिला देता है। ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो तो आप देखोगे क्या? तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि बारिश का पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही है। तो आप मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था।
1: तब मेजर प्राजक्ता, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी?
3: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुंचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते।
0: एक्सट्रीम देखा है हमने, एक्सट्रीम मतलब 0 हवा भी देखी है, जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया, और हमने 60 knots ऑफ विंड मतलब ऑलमोस्ट 100+ किलोमीटर पर आर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी, और एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हम हमारे हाथ जम गए।
3: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल लिस्टिंग। सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया, इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे। आई हैव सर्वड इन 3rd stage हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है। आई हैव सर्वड इन लद्दाख, वहां पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू व्हाट वी विटनेस्ड हियर। एंड एक्सट्रीम गर्मी का

0: बताऊं, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे।
1: आप बताएं एज पाउडर लीडर वैशाली की, बट नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, तो बीइंग अ वुमेन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड?
2: मैं फ्रैंकली ये बताना चाहूंगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है। जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज हमने करी है। हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि अब मैं पीरियड्स में कैसे करूंगी, मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटेलिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटेलिटी, ऑब्वियसली इट बी इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल। इट इज जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी।
1: विंग कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप थल सेना से हैं, तो वहां का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपेडिशन में काम आया हो?
3: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने हमें काफी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है। इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी। पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं, तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है।
1: तो जैसे इतने चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्राजक्ता? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
0: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे, एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्लीट ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था, एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ खराब हो गया उसका रिपोर्टिंग होती थी, एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना। एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5-5 मिनट या 10-10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए। बट ऐसे भी बहुत बार दिन हुए कि नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड बात नहीं हो पा रही है। तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे, बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया है, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी, तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ कॉल।
1: तो आपने विशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ, आपका मन किया मैं बताऊं?
2: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। What happens on the boat stays on the boat.
1: तो strong लेडी, मतलब ये है नारी शक्ति आज की नारी है, जो अपने एक्सपीरियंस को अपने साहस को साथ लेके हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले चलना जानती है। टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलती है। मतलब आपका पड़ाव भी था, जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं जिसको, 4 देशों में रुका, तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
3: देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट्स लिए थे, जैसे हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीजों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे। अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन 4 कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहां पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपनी लाइफ में फील नहीं किया। जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहां पे जो उनका नेवल बैंड था उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था, और हम सब की आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफशोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत कल्चर है। तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो, और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया, तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज अ

0: वुमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे. तो वो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, ये एक लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे.
1: आपने ये एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज़बम्प्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा. और जैसे विशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए दर्द से और कठिनाई से चुनौतियों का सामना करते हुए, वो आंसू नहीं
2: उसके कभी नहीं.
1: नानी संदेश साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में. लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर, आप बताएं मेजर प्राजक्ता किन किन बातों का ध्यान रखा.
3: सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वाज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज्ड टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं. तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी तो हम उसको क्रश करते थे. अब एंड उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे तो हमारे पास चार बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में. एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहां पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे.
1: तो ये बहुत बड़ा संदेश है मतलब सभी के लिए. जी वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो जरा ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें.
2: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, वेदर खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, वो लगातार चलता रहता था. तो जो मिजरी है ना वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था. लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है वो होती थी. वो मुझे याद है वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हम एक गाना सुन सके. वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर खराब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा.
1: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो.
3: हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे. And this was when we were coming to Mumbai from Cape Town. And morning, I think 5:30, 6 o'clock की बात है. हमें horizon पे sunrise होता हुआ दिख रहा है. And all of a sudden, मेरे को आवाज आती है. बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में. और बहुत ही दूर है ये. क्योंकि एकदम शांत है. हवा भी नहीं चल रही थी उस time पे. तो दूर हमने देखा almost thousands of dolphins. एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले. दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है.
1: सच अ
3: ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस.
1: तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहें.
0: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए.
1: वैशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे.
2: लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स. किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम, यू एक्सपीरियंस दिस. सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरीवन, दे शुड ज्वाइन द फोर्सेस.
1: आप क्या कहना चाहेंगी मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द.
3: I would like to say ki success comes with hard work, perseverance and most importantly not having an ego. This is something which my father used to tell me and this has stayed with me because I have a letter jo unhone meko diya tha and jab maine ye expedition start kiya tha to maine wo letter leke gayi thi and that is what kept me going through this entire thing. Yes.
1: मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपीडिशन. आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं. आप तीनों का धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए.
4: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत. कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं प्रियंका अरोड़ा. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी। नौसेना की नौकायन परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा का हिस्सा रही महिला अधिकारी विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी, लेफ्टिनेंट कमांडर युमनई नाइकाम से विशेष बातचीत। आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। श्रोताओं, अपने विचार आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9457078288। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेणु राजपूत का नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है दिल ने फिर याद किया। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम का जैसे नाम ही है दिल ने फिर याद किया। इस कार्यक्रम के द्वारा हम पुराने जमाने की कुछ बातों को याद करते हैं, अपने उस गुजरे जमाने की जिसे हमने बड़ी सादगी से जिया, और साथ ही याद करते हैं आज के इस आधुनिक युग, या यूं कहिए इस भौतिक युग को, युग में बदलते रिश्तों और व्यवहार को हम इस आधुनिक युग के बीच, इस आधुनिक जमाने के बीच रिश्तों, भावनाओं, संवाद के तरीकों और जीवन शैली के बीच में आए अंतर को।

श्रोताओं, एक मैसेज हमें प्राप्त हुआ है शाही मार्केट स्योहारा जिला बिजनौर से। आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी का ये लिखते हैं, रिश्ता किसी का भी हो, माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता या रिश्तेदारों का रिश्ता, हमेशा रखना चाहिए बड़ों का सम्मान। हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों की इज्जत करनी चाहिए, और जब हम छोटों की इज्जत करेंगे तभी वह हमारी इज्जत करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। इस रिश्ते को सम्मान देना चाहिए, यही मेरा मानना है। ये लिख रहे हैं कि हमें सभी अपने रिश्तों को सम्मान देना चाहिए, तभी हमें सम्मान मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम अपने सभी रिश्तों का सम्मान करते हैं तभी हमें सम्मान मिलता है।

श्रोताओं, अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है ग्राम व पोस्ट बीजना जिला मुरादाबाद से। राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान का ये लिखते हैं, बचपन में मेरा रेडियो से ऐसा लगाव था कि कहीं भी जाता तो इसे बगल में दबाकर ही लेकर जाता था। सोते समय तो रेडियो मेरी चारपाई के नीचे बिल्कुल मेरे कान के पास रखा रहता था। कभी कभी तो मैं रेडियो सीने पर रखकर ही सो जाता था और कार्यक्रम सुनते सुनते ही मुझे नींद आ जाती थी। रेडियो के लिए मेरा यह दीवानापन आज भी वैसा ही है, लेकिन आज की पीढ़ी इसके जादू से अनजान है। जब मैं आज भी अपना रेडियो लेकर बाहर गांव में निकलता हूं तो बच्चे बड़े अचरज से पूछते हैं, अंकल जी यह क्या चीज़ है। उनकी यह मासूमियत देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। मेरे पास आज भी घर पर रेडियो और ऑफिस में न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर रेडियो के कार्यक्रम और ख़बरें सुनना नहीं भूलता। आज के डिजिटल दौर में जहां लोग स्क्रीन से चिपके रहते हैं, वहीं रेडियो मुझे बिना मोबाइल स्क्रीन के असीम सुकून और ज्ञान देता है। बिल्कुल सही कहा आपने, रेडियो सदाबहार है। ये कल भी अच्छा था और आज भी अच्छा है।

श्रोताओं, अगला मैसेज हमें मिला है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनका समस्त डागला परिवार का। ये लिखते हैं, पुरानी यादें तो ऐसी होती हैं क्योंकि पुराने जमाने में जब शादियां होती थी तो पत्तलों में खाना मिलता था और कुल्हड़ में पानी मिलता था। वाह, क्या खाना होता था। बैठकर आराम से सभी खाते थे, भले इतना खाना नहीं होता था पर साधारण सा खाना बहुत अच्छा होता था और उसमें बड़ा आनंद आता था। आजकल तो क्या बस हम हाथ में प्लेट लेकर पकड़ कर खड़े हो जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। अगर किसी बुजुर्ग से खड़े होकर खाना नहीं खाया जाते तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितनी परेशानी होती होगी। बड़ी मुश्किल से वो बेचारे अपना खाना खा पाते हैं। पुराना जमाना वास्तव में बहुत बढ़िया था। वह जमाना तो आज भी याद आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ओल्ड इज गोल्ड। पुराना जमाना वास्तव में बहुत अच्छा था।

अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही का। ये लिखते हैं, एक जमाना था जब छोटी छोटी बातों में भी बड़ी खुशियां मिल जाती थी। न पैसों की चिंता थी, न कल की फिक्र, बस अपने लोग थे, खुलकर हंसते थे और सुकून भरी जिंदगी जीते थे। फिर वक्त बदला, जिम्मेदारियां बढ़ी, कुछ अपने दूर हो गए और मुस्कान के पीछे कई दर्द छिप गए। आज पुरानी तस्वीर देखते हैं तो दिल मुस्कुरा उठता है, लेकिन आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पुराने दिन याद करके आंखें नम हो ही जाती हैं। श्रोताओं, आज की हमारी वर्तमान पीढ़ी भौतिक सुख संपदाओं से युक्त है, जबकि पुरानी पीढ़ी भौतिक सुख न होते हुए भी शांत और सादगी से जीवन व्यतीत करते थे और स्वस्थ लंबा जीवन जीते थे।

0: फिल्म आंखियों के झरोखे में अभी आप सुन रहे थे हेमलता को। हेमलता के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय

0: पांच वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill

रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।